FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:59 होने ही वाले हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: FM 102.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे।

0: यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम ने और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण में हमारी सभा के शेष रहे प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

6:10 पर आप सुन पाएंगे चिंतन भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे 6:15 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार आप सुन पाएंगे 6:45 पर। श्री रामचरित मानस गान कलाकार होंगे रविंद्र सांठे और संगीत सतीश भाटिया का। नमस्कार चूरू कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30। आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। इन समाचार बुलेटिन का रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। गांधी चर्चा आप सुन पाएंगे 8:30 पर। 9:00 आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। देशगान आप सुन पाएंगे 9:10 पर। 9:15 पर आप सुनेंगे साहित्य सुगंध कार्यक्रम में भेंटवार्ता। गिरधारी लाल सेनी ASI पुलिस से ताइक्वांडो खेल पर प्रदीप कुमार की बातचीत। 9:30 पर आप सुनेंगे बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल विहार। 10:00 साथियों आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। 11:00 समय रहेगा कार्यक्रम मन की बात का। इसका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुरबहार आप सुन पाएंगे 12 बजे। माटी के स्वर कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे मीना वर्मा और साथियों की गाई हुई लोक रचनाएं। समय रहेगा 12:30। 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। महिलाएं सुनेंगी अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। समय रहेगा 1:05। मिड डे न्यूज आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 2:00 और उसके बाद दोपहर समाचार का रिले किया जाएगा। इनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा का आगाज होगा और शुरुआत होगी युववाणी कार्यक्रम से। कार्यक्रम विवरण 5:55 पर आप सुनेंगे। 7 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। 8 बजे समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता का। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज एट 9 इनका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। राजस्थानी लोक संगीत आप सुन पाएंगे 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 10 बजे साथियों आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिनका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

इसलिए कि आप ऐसे कमरे में खड़े हैं जो पिछले 100 सालों से बंद है। वहां धूप अंधेरा है, घुप अंधेरा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही आप वहां माचिस की एक छोटी सी तिल्ली जलाते हैं या एक छोटा सा दिया रोशन करते हैं तो क्या होता है? वो 100 सालों का अंधेरा उस एक पल की रोशनी के सामने टिक नहीं पाता और तुरंत गायब हो जाता है। हमारे जीवन में भी एक ऐसा ही अंधेरा होता है, अज्ञानता का, रूढ़ियों का और अशिक्षा का। और इस अंधेरे को दूर करने वाला जो दिया, जो प्रकाश है, उसे हम कहते हैं शिक्षा। जी हाँ, आज के चिंतन का विषय रहेगा शिक्षा, जीवन का सच्चा प्रकाश है।

अक्सर हम जब शिक्षा या एजुकेशन शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में स्कूल, कॉलेज, भारी भरकम बस्ते, मोटी मोटी किताबें, परीक्षाएं और डिग्रियां आने लगती है। लेकिन दोस्तों, क्या शिक्षा सिर्फ इन्हीं चार दीवारी तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। मार्क ट्वेन ने बहुत अच्छी बात कही थी, मैंने अपनी स्कूलिंग को कभी अपनी शिक्षा के रास्ते में नहीं आने दिया। यानी डिग्रियां तो महज रसीदें हैं जो यह बताती है कि आपने पढ़ाई की है, लेकिन आपकी असली शिक्षा तो आपके व्यवहार, आपके चरित्र और आपकी सोच में झलकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को प्राप्त करना जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। सच्ची शिक्षा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बाहर से अपने दिमाग में ठूंस लें। सच्ची शिक्षा तो वह प्रकाश है जो आपके भीतर छिपी अच्छाई, करुणा और समझदारी को बाहर लाने का काम करती है। जरा सोचिए, एक इंसान जिसके पास दुनिया भर की डिग्रियां हैं, लेकिन उसे दूसरों से बात करने का सलीका नहीं पता, उसके मन में महिलाओं, बुजुर्गों या खुद से कमजोर तबके के लिए सम्मान नहीं है, तो क्या आप उसे सही मायनों में एक शिक्षित इंसान मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि सच्ची शिक्षा हमें सिर्फ साक्षर नहीं बनाती बल्कि हमें संवेदनशील बनाती है। यह हमारे अहंकार को तोड़ती है, हमें विनम्र बनाती है। साथियों, जब आप शिक्षित होते हैं तो आप सवाल करना सीखते हैं।

समाज में फैली कुरीतियां, अंधविश्वास, ऊंच नीच का भेदभाव, ये सब उसी अज्ञानता के अंधेरे का हिस्सा है। जब शिक्षा का प्रकाश फैलता है तो यह अंधेरा अपने आप छंटने लगता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने की सबसे बड़ी ताकत रखती है। एक शिक्षित व्यक्ति सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार, समाज और अंततः अपने देश का भविष्य संवारता है। और साथियों, ज्ञान के इस प्रकाश की सबसे खूबसूरत बात क्या है जानते हैं आप? यह कभी बुझता नहीं है। एक बार ये दिया जल गया तो यह आंधी तूफान में भी डटा रहता है। शिक्षा कोई ऐसी मंजिल नहीं है कि आप अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और शिक्षा खत्म हो गई। यह एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। ये जन्म से शुरू होती है और जीवन की आखिरी सांस तक चलती रहती है। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

शर्मा बंधुओं की आवाज में अभी आप सुन रहे थे भक्ति रचनाएं। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीत।

मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा है और संगीत आर डी बर्मन ने दिया है।

येसुदास की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं टूटे खिलौने फिल्म से ये प्यारा सा नगमा। केफी आजमी ने इस गीत को लिखा है और बप्पी लाहिड़ी ने संगीत दिया है।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं शोर फिल्म का गीत। संतोष आनंद ने इस गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में सुनिए प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम कभी कभी। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को

लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत आपने सुना। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हिंदुस्तान की कसम से है, लता मंगेशकर की आवाज है, कैफी आजमी की शब्द रचना और मदन मोहन का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में हिंदुस्तान की कसम फिल्म से गीत पर्वत की उस पार। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की है। नक्श लायलपुरी ने इस गीत को लिखा और खय्याम ने संगीत दिया है।

पर्वत के उस पार इस फिल्म का प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति जो है हम दोनों फिल्म से है, आवाज मोहम्मद रफी की है। साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है और जयदेव ने संगीत दिया है।

अभी आप सुन रहे थे हम दोनों फिल्म से ये प्यारा सा नगमा, और इसी के साथ गीत बहार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान। कलाकार हैं रविंद्र सांठे और संगीत है सतीश भाटिया का। कड़ी है 1 2 पारा।

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, कलाकार रविंद्र साठे और संगीत सतीश भाटिया का था और कड़ी 12वीं थी। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार चूरू में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज हूं आपके साथ आपका दोस्त और हॉस्ट चंद्र प्रकाश बेदी। तो स्वीकार करें नमस्कार।

दोस्तों, 28 जून का दिन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज हम भारत के 90वें प्रधानमंत्री, अद्वितीय राजनेता और विद्वान श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की जयंती मना रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में उनके युगांतरकारी योगदान के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें साल 2024 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। श्रोताओं, जब भी 1991 के उस दौर का जिक्र होता है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था और देश भयंकर आर्थिक संकट में था, तब नरसिम्हा राव जी का नाम सबसे ऊपर आता है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी के साथ मिलकर देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नींव रखी। उन्होंने कड़े और ऐतिहासिक फैसले लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। उन्हें यूं ही भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक नहीं कहा जाता। तो आइए, आज उस महान दूरदर्शी नेता को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत में हमने ये गीत सुना, एक फिर देशभक्ति गीत आपको सुनवा रहे हैं।

साथियों, हम बात कर रहे हैं पामुला पर्ती वेंकट नरसिम्हा राव जी की। श्रोताओं, वे सिर्फ एक मंचीय विराज नेता ही नहीं बल्कि एक ऐसे प्रखर विद्वान थे जिनके बारे में जानकर आज भी हैरानी होती है। क्या आप जानते हैं कि वो लगभग 17 भाषाएं बोलना और लिखना जानते थे। हिंदी, तेलुगु और मराठी जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ उनकी स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और अरबी जैसी विदेशी भाषाओं पर भी गहरी पकड़ थी। साहित्य से उन्हें इतना प्रेम था कि उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वेयिप दगलू का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफण नाम से किया, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी

इतना ही नहीं, आज भारत जो दुनिया भर में अपनी कूटनीति का डंका बजा रहा है, उसकी लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत भी नरसिम्हा राव जी के कार्यकाल में हुई। उनकी इसी राष्ट्रभक्ति और आधुनिक भारत के निर्माण में उनको योगदान करते हुए हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं।

एक साधारण किसान परिवार से निकलकर भारत की प्रधानमंत्री पद तक उनका सफर और उनके द्वारा लिए गए साहसिक फैसले आज भी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: साथियों, हमारे राजस्थान की पहचान हमेशा से इसके गौरवशाली इतिहास, शौर्य और हमारी समृद्ध संस्कृति से रही है। पूरी दुनिया हमें पधारो हमारे देश की मनोहार के लिए जानती है, लेकिन आज का राजस्थान सिर्फ पर्यटन या अपनी विरासत तक सीमित नहीं है। आज का राजस्थान नए भारत के औद्योगिक विकास का एक बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। आज हम चर्चा करेंगे मेक इन इंडिया 2.0 की और जानेंगे कि ये कैसे महत्वाकांक्षी योजना हमारे राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य, यहाँ के युवाओं और हमारी उद्यमियों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। मेक इन इंडिया और राजस्थान की साझेदारी की अगर बात करें तो श्रोताओं, मेक इन इंडिया 1.0 में जहाँ जोर बुनियादी ढांचा खड़ा करने पर था, वहीं 2.0 का विजन उच्च तकनीक, नवाचार और लोकल को ग्लोबल तक बनाने पर है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे यहाँ से गुजरता है। यही बात राजस्थान को मेक इन इंडिया के लिए सबसे आदर्श राज्य बनाती है। आइए देखते हैं कि वो कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राजस्थान इस योजना के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने के लिए तैयार है। नवीनकरणीय ऊर्जा का सिरमौर भी राजस्थान है। आप जानते हैं कि हमारा प्रदेश सौर ऊर्जा के उत्पादन में देश में नंबर एक पर है। मेक इन इंडिया 2.0 के तहत अब हमारा लक्ष्य सिर्फ बिजली बनाना नहीं है, बल्कि सोलर पैनल, बैटरियां और विंड टरबाइन के उपकरणों का निर्माण भी राजस्थान में ही करना है। भड़ला और जैसलमेर जैसे इलाके इस ऊर्जा क्रांति के गवाह बन रहे हैं। राजस्थान खनिजों का भी अजायब घर है। हमारे यहाँ बेशकीमती पत्थर और मिनरल्स हैं। पहले हम कच्चा माल बाहर भेजते थे, लेकिन अब PLI स्कीम और राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के तहत यहीं पर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जा रही है।

साथियों, यह योजना सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं है, यह हमारे राजस्थान के हर उस युवा के लिए है जिसकी आंखों में कुछ अपना शुरू करने का सपना है। अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है तो मेक इन इंडिया 2.0 या स्टार्टअप इंडिया के तहत आसान ऋण, तकनीकी सहायता और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधाएं मौजूद है। राजस्थान अब केवल वीरों की धरती नहीं बल्कि इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर की धरती भी बन रहा है। साथियों, समय आ गया है कि हम अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं, हम अपने प्रदेश में बनाएं, भारत के लिए बनाएं और पूरी दुनिया के लिए हम बनाएं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ हम सब विकास की दौड़ में

सुबह की इस ताजगी भरी हवा और चाय की चुस्कियों के बीच हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हम से हर उस इंसान से जुड़ा है जो घर की दहलीज लांघकर अपने कार्यक्षेत्र यानी ऑफिस या वर्क प्लेस की ओर कदम बढ़ाता है। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय है कार्यक्षेत्र में संयमित रखे अपना व्यवहार। साथियों, हम अपने दिन के 8 से 10 घंटे अपने काम की जगह पर बिताते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हमारा दफ्तर हमारा दूसरा घर होता है और वहाँ काम करने वाले सहकर्मी हमारा दूसरा परिवार। लेकिन जहाँ काम है वहाँ टारगेट है, डेडलाइंस है, और जहाँ पर ये सब है वहाँ थोड़ा तनाव होना भी लाजमी है। ऐसे में कई बार हमारा व्यवहार थोड़ा असंतुलित हो जाता है, तो इसी पर आज हम ढेर सारी बात करने वाले हैं। साथियों, दफ्तर में संयमित व्यवहार का मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है अपनी भावनाओं, खासकर अपने गुस्से और झुंझलाहट पर नियंत्रण रखना। कई बार ऐसा होता है कि बॉस ने कुछ कह दिया या किसी सहकर्मी ने आपका काम का समय पर पूरा नहीं किया, तो हम अपना आपा खोप देते हैं। ऊंची आवाज में बात करना, तीखे

शब्दों का इस्तेमाल करना या किसी का अपमान करना, ये सारी चीज़ें सिर्फ उस सामने वाले इंसान को ही नहीं आहत करती है साथियों, बल्कि आपकी अपनी प्रोफेशनल इमेज यानी आपकी छवि को भी गहरा नुकसान पहुंचाती है। याद रखिए, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका बर्ताव ही आपकी सबसे बड़ी डिग्री है। जब भी तनाव महसूस हो, एक गहरी सांस लें, एक गिलास पानी पिए और रिएक्ट करने की जगह रेस्पॉन्ड करें, यानी तुरंत भड़कने की बजाय सोच समझकर जवाब दीजिए।

और इसी गीत के साथ कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दें आपके रेडियो साथी चंद्र प्रकाश बेदी को। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज का रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और

0: भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सशस्त्र के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सशस्त्र के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
2: Today we have a new national health policy.
3: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
2: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
4: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे, वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
1: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
5: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय

0: व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाग अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकुक पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे जिसमें काफी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमरीका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवलीन, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफरसेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा

0: चंडीगढ़ बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार वाणिज्य विभाग तथा डुपोंट सर्कल बिजनेस इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे, छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदांबी श्रीकांत अमरीकी बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार, आप निरंतर सुन रहे हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में से उद्धृत अंश।

यह किताब पूरी हुई थी। गांधी अध्ययन को समझने में सत्य के प्रयोग को एक प्रमुख दस्तावेज का दर्जा हासिल है, जिसे स्वयं गांधी जी ने कलमबद्ध

श्रोताओं, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई वह पुस्तक है जिसे उनकी आत्मकथा का दर्जा हासिल है। बापू ने यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी थी, हिंदी में इसके अनुवाद कई लेखकों ने किए। यह किताब दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य के प्रयोग का लेखन 20वीं शताब्दी में सत्य, अहिंसा और ईश्वर का मर्म समझने समझाने के विचार से किया।

श्रोताओं, यूं तो गांधी के जीवन पर बहुत से व्यक्तियों का और बहुत सी पुस्तकों का प्रभाव पड़ा, लेकिन अपनी आत्मकथा के चौथे भाग के 18वें अध्याय में खुद गांधी जी ने उस किताब का जिक्र किया है जिसने उन्हें गहरे तक प्रभावित किया। आज हम उसी पुस्तक का जिक्र करेंगे जिसने हमारे राष्ट्रपिता को बहुत गहरे तक प्रभावित किया।

इस अध्याय में बापू लिखते हैं, इस महामारी ने गरीब हिंदुस्तानियों पर मेरे प्रभाव को, मेरे धंधे को और मेरी जिम्मेदारी को बढ़ा दिया। साथ ही यूरोपियों के बीच मेरी बढ़ती हुई कुछ जान पहचान भी इतनी निकट होती गई कि उसके कारण मेरी भी जिम्मेवारी बढ़ने लगी। जिस तरह वेस्ट से मेरी जान पहचान निरामिषहारी भोजन गृह में हुई, उसी तरह पोलाक के विषय में हुआ। एक दिन जिस मेज पर मैं बैठा था, उससे दूसरी मेज पर एक नौजवान भोजन कर रहे थे। उन्होंने मिलने की इच्छा से मुझे अपने नाम का कार्ड भेजा। मैंने उन्हें मेज पर आने के लिए निमंत्रित किया। वे आए। मैं क्रिटिक का उप संपादक हूं। महामारी विषयक आपका पत्र पढ़ने के बाद मुझे आपसे मिलने की बड़ी इच्छा हुई। आज मुझे यह अवसर मिल रहा है। मिस्टर पोलाक की शुद्ध भावना से मैं उनकी ओर आकर्षित हुआ। पहले ही दिन हम एक दूसरे को पहचानने लगे और जीवन विषयक अपने विचारों में हमें बहुत समानता दिखाई पड़ी। उन्हें सादा जीवन पसंद था। एक बार जिस वस्तु को उनकी बुद्धि कबूल कर लेती, उस पर अमल करने की उनकी शक्ति मुझे आश्चर्यजनक मालूम हुई। उन्होंने अपने जीवन में कई परिवर्तन तो एकदम ही कर लिए। इंडियन ओपिनियन का खर्चा बढ़ता जाता था। वेस्ट की पहली ही रिपोर्ट मुझे चौंकाने वाली थी। उन्होंने लिखा, आपने जैसा कहा था वैसा मुनाफा मैं इस काम में नहीं देखता, मुझे तो नुकसान ही नजर आता है। भई खातों की अव्यवस्था है, उगाही बहुत है पर वह बिना सिर पैर की है, बहुत से फेरफार करने होंगे, पर इस रिपोर्ट से आप घबराएं नहीं, मैं सारी बातों को व्यवस्थित बनाने की भरसक कोशिश करूंगा। मुनाफा नहीं है इसके लिए मैं इस काम को छोड़ूंगा नहीं। यदि वेस्ट चाहते तो मुनाफा ना होता देखकर काम छोड़ सकते थे और मैं उन्हें किसी तरह का दोष ना दे सकता था। यही नहीं, बल्कि बिना जांच पड़ताल किए इसे मुनाफे वाला काम बताने का दोष मुझ पर लगाने का उन्हें अधिकार था। इतना सब होने पर भी उन्होंने मुझे कभी कड़वी बात तक नहीं सुनाई। पर मैं मानता हूं कि इस नई जानकारी के कारण वेस्ट की दृष्टि में मेरी गिनती उन लोगों में हुई होगी

जो जल्दी में दूसरों का विश्वास कर लेते हैं। मदन जीत की धारणा के बारे में पूछताछ किए बिना उनकी बात पर भरोसा करके मैंने वेस्ट से मुनाफे की बात कही थी। मेरा ख्याल है कि सार्वजनिक काम करने वाले को ऐसा विश्वास न रखकर वही बात कहनी चाहिए जिसकी उसने स्वयं जांच कर ली हो। सत्य के पुजारी को तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पूरे विश्वास के बिना किसी के मन पर आवश्यकता से अधिक प्रभाव डालना भी सत्य को लांछित करना है।

मुझे ये कहते हुए दुख होता है कि इस तथ्य को जानते हुए भी जल्दी में विश्वास करके काम हाथ में लेने की अपनी प्रकृति को मैं पूरी तरह सुधार नहीं सका। इसमें मैं अपनी शक्ति से अधिक काम करने के लाभ को दोष देखता हूँ। इस लोभ के कारण मुझे जितना बेचैन होना पड़ा है उसकी अपेक्षा मेरे साथियों को कहीं अधिक बेचैन होना पड़ा है। वेस्ट का एक ऐसा पत्र आने से मैं नेटाल के लिए रवाना हुआ। पोलाक तो मेरी सब बातें जानने लगे ही थे। वे मुझे छोड़ने स्टेशन तक आए और यह कहकर, यह रास्ते में पढ़ने योग्य पुस्तक है, आप इसे साथ ले जाइए, आपको पसंद आएगी। उन्होंने रस्किन की अनटू दिस लास्ट पुस्तक मेरे हाथ में रख दी। इस पुस्तक को हाथ में लेने के बाद मैं छोड़ ही नहीं सका। इसने मुझे पकड़ लिया। जोहान्सबर्ग से नेटाल का रास्ता लगभग 24 घंटों का था। ट्रेन शाम को डरबन पहुंचती थी। वहां पहुंचने के बाद मुझे सारी रात नींद न आई। मैंने पुस्तक में सूचित विचारों को अमल में लाने का इरादा किया। इससे पहले मैंने रस्किन की एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी। विद्या अध्ययन के समय में पाठ्य पुस्तकों के बाहर की मेरी पढ़ाई लगभग नहीं के बराबर मानी जाएगी। कर्मभूमि में प्रवेश करने के बाद समय बहुत कम बचता था। आज भी यही कहा जा सकता है, मेरा पुस्तकीय ज्ञान बहुत ही कम है। मैं मानता हूं कि इस अनायास अथवा बरबस पाले गए संयम से मुझे कोई हानि नहीं हुई, बल्कि जो थोड़ी पुस्तकें मैं पढ़ पाया हूं, कहा जा सकता है कि उन्हें मैं ठीक से हजम कर सका हूं। इन पुस्तकों में से जिसने मेरे जीवन में तत्काल महत्व के रचनात्मक परिवर्तन कराए, वह अनटू दिस लास्ट ही कही जा सकती है। बाद में मैंने उसका गुजराती अनुवाद किया और वह सर्वोदय नाम से छपा। मेरा यह विश्वास है कि जो चीज मेरे अंदर गहराई में छिपी पड़ी थी, रस्किन के ग्रंथ रत्न में मैंने उसका प्रतिबिंब देखा और इस कारण उसने मुझ पर अपना साम्राज्य जमाया और मुझसे अमल करवाया। जो मनुष्य हम में सोई हुई उत्तम भावनाओं को जागृत करने की शक्ति रखता है, वह कवि है। सब कवियों का सब लोगों पर समान प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सबके अंदर सारी सद्भावनाएं समान मात्रा में नहीं होती हैं। मैंने सर्वोदय के सिद्धांतों को इस प्रकार समझा है कि सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है। वकील और बाल काटने वालों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का अधिकार सबको एक समान है। सादा मेहनत मजदूरी का किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। पहली बात मैं जानता था, दूसरी को धुंधले रूप में देखता था, तीसरी का मैंने कभी विचार ही नहीं किया था। सर्वोदय ने मुझे दिए की तरह दिखा दिया कि पहली चीज में दूसरी चीजें समाई हुई हैं। सवेरा हुआ और मैं इन सिद्धांतों पर अमल करने के प्रयत्न में लग गया।

श्रोताओं, गांधी चर्चा के आज के इस अंक में हम सुन रहे थे हमारे राष्ट्रपिता की आत्मकथा में उस किताब का जिक्र, जिस किताब ने हमारे बापू के जीवन को बहुत गहरे तक प्रभावित किया। वह पुस्तक थी महान लेखक रस्किन की अनटू दिस लास्ट। सुनते रहिए कार्यक्रम गांधी चर्चा, अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, वाचन स्वर मनीष भारद्वाज के थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह सुरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
0: हम आकाशवाणी

नमस्कार, यह आकाशवाणी चूरू है। श्रोताओं, कई बार हम सोचते हैं कि हम इंसान कितने अजीब हैं ना। हम उस घर को सजाने संवारने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं जिसे हमने खुद बनाया है, लेकिन उस सृष्टि, उस धरती माँ को भूल जाते हैं जिसने हमें बनाया है।

मशहूर शायर निदा फाजली साहब ने क्या खूब कहा है, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। मगर आज हालात ये हैं कि हाँ, ना धूप पहले जैसी निर्मल रही, ना ही घटाएं पहले जैसी निर्दोष। आज का मौसम बदल रहा है। हर बदलाव सिर्फ ठंड और गर्मी का नहीं है, यह बदलाव हमारी लापरवाही का नतीजा है। ग्लोबल वार्मिंग, बेमिसाल बरसात और बेहिसाब गर्मी, यह सब इस बात का सबूत है कि हमारी धरती माँ बीमार है, उसे बुखार है। हम प्रकृति की दौड़ में इतना आगे निकल आए हैं कि हमने पीछे छूट रही धरोहर को देखा ही नहीं। हमने नदियों को गंदा किया, पहाड़ों को काटा, जंगलों को सीमेंट के जंगल में बदल दिया। आज जब हम सांस लेते हैं तो हवा में सरसराहट नहीं, धुआं होता है। जब हम पानी पीते हैं तो उसमें निर्मलता नहीं, केमिकल होते हैं। क्या हम आने वाली पीढ़ी को विरासत में यही देकर जाएंगे? एक ऐसी धरती जहां सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़े। साथियों, हमारी संस्कृति में प्रकृति को माँ कहा गया है, नदियों को माँ माना गया, पेड़ों को देवता माना गया। यह कोई अंधविश्वास नहीं था साथियों, यह हमारे पूर्वजों का प्रकृति के प्रति सम्मान और प्रेम था। उन्हें पता था कि अगर पेड़ हैं तो ही हमारा अस्तित्व है। एक छोटा सा पौधा जब बड़ा होता है तो वह सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देता, वह पंछियों को घर देता है, मुसाफिरों को छाया देता है और अपनी जड़ों से धरती को बांध कर रखता है। हमने उन पेड़ों को ही काट दिया जिन्होंने हमें हमेशा सिर्फ दिया ही दिया है। श्रोताओं, आकाशवाणी चुरू पर आज इस गंभीर बात करने का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, मकसद है सबको जगाना, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। बदलाव हमेशा किसी बड़े आंदोलन से नहीं बल्कि हमारी छोटी सी शुरुआत से होता है। अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें, कपड़े की थैली को अपनाएं, पानी की एक एक बूंद को कीमती समझे और बचाएं, कचरे को यहाँ ना वहां न फेंक कर सही जगह पर डालिए। साथियों सोचिए, अगर देश का हर नागरिक साल में सिर्फ एक पेड़ लगाए और उसकी देखभाल करे तो ये धरती फिर से हरी भरी हो सकती है। चलिए आज इस मंच से, आकाशवाणी के माध्यम से एक वादा करते हैं, एक वादा खुद से, एक वादा अपनी धरती से। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, इस धरती को स्वर्ग बनाओ। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह सुरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: जयपुर अजमेर केंद्र है। इस समय सुबह के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आज रिफाइनरी जाएंगे। पल्स पोलियो रविवार पर आज प्रदेश भर में 1 करोड़ बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। और मौसम में बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए तेज बारिश का इंतजार करने की सलाह दी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर हर बार की तरह लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जगह जगह कार्यक्रम के सामूहिक प्रसारण की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भाजपा की ओर से पार्टी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर कार्यक्रम का सजीव प्रसारण रखा गया है। प्रधानमंत्री

0: सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल दोपहर विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति हरमीनी ने उनका स्वागत किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने सेशेल्स को हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त बताते हुए कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते और मजबूत होंगे। बालोतरा में पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इंतजामों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रिफाइनरी पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल तथा रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था और किसी भी अप्रिय स्थिति को टालने के लिए जिला प्रशासन के साथ HPCL भी अलर्ट मोड पर बना हुआ है।
1: प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रिफाइनरी परिसर में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा, आगंतुकों के प्रवेश पास प्रोटोकॉल तथा अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि कार्यक्रम का सफल एवं सुचारू संचालन किया जा सके। गौरतलब रहे कि रिफाइनरी का लोकार्पण पहले 21 अप्रैल को होना था, लेकिन उद्घाटन से एक दिन पहले एक यूनिट में आग लगने की वजह से वो कार्यक्रम टल गया था। करीब 90,000 करोड़ की लागत से निर्मित ये BS6 मानक की अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी प्रदेश की सबसे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है। बंसीलाल चौधरी, आकाशवाणी समाचार, बालोतरा।
0: वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों के चयन पर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के सफल, सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों पर CCTV निगरानी, वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक सत्यापन और मेटल डिटेक्टर जांच के साथ ही आवश्यक पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज पल्स पोलियो रविवार है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 3 दिन के इस राष्ट्रीय अभियान के तहत 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित 59,000 से अधिक पोलियो बूथों पर यह दवा पिलाई जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक डॉ जोगाराम ने बताया कि इस अभियान में मोबाइल और टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा देंगे। टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉ. रघुराज सिंह ने बताया कि अभियान के तहत प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है।
2: इस अभियान के अंतर्गत हमने 1.04 करोड़ बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए राजस्थान प्रदेश के अंदर हमने 60,000 के करीब बूथ बनाए हैं जहाँ पर कि हम बच्चों को दवा पिलाएंगे। किसी कारण अगर दवा पीने से बच्चे छूटे तो फिर हम दूसरे दिन और तीसरे दिन घर घर जाकर भी उन बच्चों को ढूंढ करके उनको भी हम ड्रॉप पिलाएंगे जिससे कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित रहे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी अभिभावकों से कि वो सभी अपने बच्चों को ये ड्रॉप आवश्यक रूप से पिलाएं।
0: गौरतलब है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। बीते 15 वर्षों में देश भर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने कहा कि सरिस्का कभी बाघ पूरी तरह विलुप्त हो गए थे, लेकिन अब वहां 53 बाघों का निवास है। उन्होंने इसे प्रकृति के पुनरुद्धार, वैज्ञानिक संरक्षण और सामूहिक संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। इस बीच केंद्रीय मंत्री आज इस संबंध में अलवर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में बाघों के पुनर्स्थापन में योग

0: योगदान और उल्लेखनीय सेवा देने वाले वनकर्मी, एनजीओ और पर्यावरण कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून पूर्व की बारिश और मौसम में बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। राज्य भर में कई स्थानों पर हल्की बारिश के बीच किसानों ने खेतों में खरीफ फसलों की बुवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि विभाग ने किसानों को बुवाई के लिए कुछ अच्छी बारिशों का इंतजार करने की सलाह दी है, जिससे जमीन में नमी बनी रहे। कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर के प्रभारी दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि किसानों को जल्दबाजी में बुवाई से बचना चाहिए।
1: तब हमें जो बिजाई करनी है तो उसमें ध्यान रखना है कम से कम हमारी एक या दो अच्छी बरसात हो जाए, तो उसमें क्या है कि हमारे जो जमीन की हीट निकल जाएगी, वरना अगर जमीन गर्म रहेगी तो हम कोई भी बिजाई कर देते हैं तो उससे हमारे जो बीज है उसके बीज की पैदावार कम होने के, बीज खराब होने के ना चांस बने रहेंगे। तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि जब तक बरसात अच्छी नहीं हो, अगर देसी भाषा में कहें तो 5-6 उंगल बरसात नहीं हो, तब तक ना किसानों को अब क्या बिजाई की तरफ नहीं जाना चाहिए।
0: इस बीच मॉनसून की गतिविधियां आगे बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी भारत के कई भागों में आज तेज बारिश तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों में भी अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली कड़कने और तेज हवा का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। गौरतलब है कि देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले इन 6 जवानों में झुंझुनू जिले के मेहरादासी गांव के सुरेंद्र मोगा भी शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल। पचपदरा रिफाइनरी के 4 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से जारी। मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए आज रिफाइनरी जाएंगे। पल्स पोलियो रविवार पर आज प्रदेश भर में 1 करोड़ बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाने का लक्ष्य। और मौसम में आए बदलाव के बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। कृषि विभाग ने खरीफ बुआई के लिए तेज बारिश के इंतजार करने की सलाह दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह सुरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह सुरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए साहित्य सुगंध कार्यक्रम में भेंट वार्ता। गिरधारी लाल सैनी एएसआई पुलिस से ताइक्वांडो खेल पर प्रदीप कुमार की बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, भेंट वार्ताओं के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम समय समय पर किसी विशेष शख्सियत को हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और करवाते हैं आपसे रूबरू। इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री गिरधारी लाल सैनी। आप सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पद पर तैनात हैं और साथ ही साथ आप ताइक्वांडो के एक बेहतरीन प्लेयर हैं। तो करते हैं उनसे बातचीत का सिलसिला। तो सर, आकाशवाणी चूरू के स्टूडियो में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: सर, आप हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताएं कि आपने किस प्रकार से इस खेल के अंदर अपनी रुचि है उसको प्रकट किया।
2: ये सन 2017 में हमारी पुलिस रेंज खेल कूद प्रतियोगिता पहली बार हुई, उसमें मैंने प्रथम बार भाग लिया और बीकानेर रेंज में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
1: ताइक्वांडो खेल की अगर हम बात करें तो ये ग्रामीण अंचल से कम जुड़ा हुआ खेल है, तो सबसे पहले इस खेल को खेलने की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली?
2: ये सबसे पहले ये हमारे पुलिस में टूर्नामेंट ताइक्वांडो शुरू हुआ, उसमें सबसे पहले मेरे चूरू में ही जी अपने ये प्रेरणा मिली।
1: ताइक्वांडो खेल जो है वो किस प्रकार से होता है, आप हमारे श्रोताओं को एक बार बताएंगे।
2: ताइक्वांडो एक दक्षिण कोरिया का खेल है जो 1945 में स्टार्ट हुआ था, तो अभी अपने इंडिया में भी

0: बहुत ही ये वो खिलाड़ी है और ये अपने हिंदुस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं
1: जी। तो आपका रोज का जो प्रैक्टिस रूटीन होता है वो क्या होता है, आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: मैं ड्यूटी के साथ साथ प्रैक्टिस करता हूं और जिम भी करता हूं उसके साथ।
1: प्रैक्टिस भी करते हैं साथ साथ में आप जिम भी करते हैं, तो फिटनेस को बनाए रखना इस खेल के लिए बेहद आवश्यक होता है। तो फिटनेस को बनाए रखने के लिए खाने पीने की कौन कौन सी जो प्रमुख चीजें होती हैं आप हमारे श्रोताओं को एक बार बताएं।
0: चने, मूंग और ये अंकुरित ये फल है वो बहुत आवश्यक है।
1: अंकुरित दालों का इसमें अत्यधिक महत्व है। उसके साथ साथ में क्या जो रेस होती है या जो वर्कआउट होता है, योगा होती है, वो भी जरूरी है?
0: बिल्कुल ये जरूरी है।
1: तो जैसा कि आपने बताया कि फिट रहने के लिए वर्कआउट की आवश्यकता होती है, साथ साथ में अंकुरित जो दालें हैं, पौष्टिक भोजन है, हरी सब्जियां हैं, इनकी भी बेहद आवश्यकता होती है। तो आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि शारीरिक फिटनेस के साथ साथ में क्या मानसिक फिटनेस का भी उतना ही रोल होता है?
0: बिल्कुल होता है। एक बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए अनुशासन, कठिन अभ्यास और मानसिक मजबूती सबसे ज्यादा जरूरी है
1: जी।
0: इसके साथ ही अपने खेल के प्रति लगन और टीम के साथ तालमेल बिठाना भी सफलता की कुंजी है
1: जी। जैसा कि आपने बताया कि तालमेल का बेहद होना आवश्यक है, तो आप हमारे जो युवा साथी हैं उनको बताएं कि अगर वो इस फील्ड में जाना चाहें तो किस प्रकार से उन्हें शुरुआत करने की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल, पढ़ाई और खेल के बीच भी संतुलन बनाने के लिए सबसे जरूरी है सख्त टाइम टेबल, समय प्रबंधन, अनुशासन और प्राथमिकता तय करना। खेल आपको अनुशासन और ऊर्जा देता है जो पढ़ाई में भी मदद करता है
1: जी। यानी पढ़ने के साथ साथ में ताइक्वांडो की तैयारी जो है वो युवा कर सकते हैं। तो आपने अभी तक किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं उनके अंदर भाग लिया है और किस प्रकार से आपका जो परिणाम है वो रहा है, कृपया हमारे श्रोताओं के साथ में आप साझा करें।
0: पहले मैं कबड्डी का खिलाड़ी था
1: जी।
0: पुलिस में आने के बाद प्रथम बार 2017 में अपने चूरू में पुलिस बीकानेर रेंज पुलिस खेल कूद प्रतियोगिता शुरू हुई, उसमें मैंने भाग लिया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। और बीकानेर रेंज से ही मैंने बीकानेर का प्रतिनिधित्व करते हुए जिला झुंझुनू में मैंने वहां भी राजस्थान में गोल्ड मेडल प्राप्त किया
1: जी। तो आपने बताया कि आप ताइक्वांडो प्लेयर होने के साथ साथ में आप पुलिस सेवा में भी है, तो किस प्रकार से आप खेल और आपकी जो चैलेंजिंग जो सर्विस होती है उसमें संतुलन है वो बना पाते हैं?
0: मैंने मेरा बचपन से ही खेल में बहुत शौक था और पुलिस में आने के बाद मैंने कम से कम 6-7 गेमों में मैंने राजस्थान और नेशनल पर भी मैंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।
1: आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपने कौन कौन से खेलों में ताइक्वांडो के साथ साथ में प्रतिनिधित्व किया है।
0: मैंने कबड्डी, कुश्ती, जूडो, ताइक्वांडो, वुशू, शूटिंग में राजस्थान में मैंने भाग लिया है एवं विजेता भी रहा हूं। और अब मैं मास्टर वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में इंडिया में 4 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल मैंने प्राप्त किए हैं।
1: बहुत बढ़िया, आपने बताया कि आपने कई सारे खेलों में और भाग लिया और कई सारे जो पदक है वो भी आपने प्राप्त किए, लेकिन आजकल देखने में ये आता है कि अक्सर जो खिलाड़ी होते हैं उनका एक ही क्षेत्र तक रुझान है वो सीमित रहता है। तो आप इतने सारे खेलों में पार्टिसिपेट किया, तो इसकी जो प्रेरणा क्या आपको बचपन से ही मिली या फिर आप जब राजस्थान पुलिस की सेवा में रहे तो वहां से आपको ये प्रेरणा मिली?
0: देखो, ये सबसे पहली अपने

0: खिलाड़ी का लगन होती है, मन होता है कि मैं उस खेल में भाग लूं और उसे आगे में मेडल प्राप्त करूं।
1: जी, तो किस प्रकार से आप इस रूटीन को है वो क्या निरंतर आप फॉलो करते आ रहे हैं क्या?
0: बिल्कुल, मैंने देहात और कहीं भी जाता हूं तो उस खेल जो प्रतियोगिता होती है उसमें सम्मिलित होता हूं और उनको गाइडेंस करता हूं। और मैंने रिटायरमेंट के बाद भी मैंने अकादमी खोलने का मैंने निर्णय लिया।
1: चलिए, आप का आगे का क्या लक्ष्य रहेगा कि किस प्रकार से आप अब आगे और अपने गेम्स को और बेहतरीन करें, इसके लिए आप किस प्रकार की तैयारी में जुटे हैं?
0: मैं तैयारी के साथ साथ बच्चों और अन्य खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन करूंगा।
1: कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते आप हमारे जो युवा जो प्लेयर आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: उसको ये मैसेज देने चाहेंगे कि खेल के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी, खेल की तैयारी करना भी बहुत आवश्यक है।
1: तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन जानकारियां जो है वो हमारे साथ आपने साझा की, तो इसके लिए मैं आकाशवाणी चूरू की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
0: धन्यवाद आप।
2: अभी आप सुन रहे थे साहित्य सुगंध कार्यक्रम में भेंट वार्ता। गिरधारी लाल सैनी एएसआई पुलिस से ताइक्वांडो खेल पर प्रदीप कुमार की बातचीत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए समूह सुरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल विहार।

बाल विहार सुनने वाले सभी नन्हे श्रोताओं का ढेर सारा प्यार लेकर आई है आज आपकी दीदी माया। तो नन्हे बच्चों, आपसे बहुत सारी बातें, चर्चाएं, आपको जानकारी देंगे, कहानी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपका करेंगे मनोरंजन, सुनाते हैं गीत।

प्यारे बच्चों, आज प्यारे से गाने के बाद हम अब आपको सुनाते हैं, आपके लिए आपकी दीदी लेकर आई है कहानी। कहानी हमें ये सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छे संस्कार इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। कहानी का नाम है नन्ना दीपक और ईमानदारी का उजाला। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक बालक रहता था। वह 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता किसान थे और माता गृहिणी थी। परिवार बहुत प्रसन्न संपन्न नहीं था, लेकिन घर में प्रेम, संस्कार और सादगी की कोई कमी नहीं थी। दीपक की माँ हमेशा से उसे समझाती थी कि बेटा, धन से बड़ा चरित्र होता है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है, उसे देर देर सवेर सफलता है वो जरूर मिलती है। दीपक इन बातों को ध्यान से

सुनता और अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता। एक दिन स्कूल से लौटते समय दीपक को रास्ते में एक चमड़े का बटुआ मिला। उसने उसे उठाया। बटुए में कई हजार रुपए, कुछ जरूरी कागज और एक पहचान पत्र था। एक पल के लिए तो दीपक ने सोचा, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो घर की बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएगी। लेकिन अगले ही क्षण उसे माँ की सीख है वो याद आ गई, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। दीपक बटुआ लेकर सीधे अपने स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है उनके पास पहुंचा। प्रधानाध्यापक ने पहचान पत्र देखकर बटुए के मालिक को सूचना दी। उस देर बाद गांव के ही एक बुजुर्ग व्यक्ति विद्यालय पहुंचे। वे बहुत परेशान थे। उन्होंने बताया कि उसी बटुए में उनकी दवाई खरीदने के पैसे और जो महत्वपूर्ण कागज थे। जब उन्हें अपना बटुआ वापस मिला तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने दीपक को गले लगा लिया और बोले, बेटा तुमने मेरा विश्वास लौटा दिया। उन्होंने इनाम के रूप में कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन दीपक ने विनम्रता से कहा, दादाजी मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। प्रधानाध्यापक ने पूरी प्रार्थना सभा में दीपक की ईमानदारी की प्रशंसा की। सभी बच्चों ने तालियां बजाई। उस दिन दीपक को महसूस हुआ कि सच्ची खुशी और दूसरों की मदद करने में है। कुछ दिनों बाद विद्यालय में स्वच्छ विद्यालय सुंदर विद्यालय अभियान शुरू हुआ और प्रधानाध्यापक ने बच्चों से कहा, विद्यालयों को साफ सुथरा रखना केवल कर्मचारियों की नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। दीपक ने अपने मित्रों के साथ मिलकर विद्यालय की सफाई की। उन्होंने कक्षाओं की दीवारों पर सुंदर और प्रेरक संदेश लिखे, स्वच्छता अपनाएं, बीमारी भगाएं, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, जल है तो कल है। धीरे धीरे पूरे विद्यालय का वातावरण है वो बदलने लगा। दूसरों बच्चों में प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर विद्यालय को स्वच्छ और सुंदर बना दिया। बरसात का मौसम आया। गांव के पास बहने वाली छोटी नदी में पानी भर गया। एक दिन दीपक ने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे प्लास्टिक और कचरा फेंक रहे हैं। दीपक ने उन्हें सब प्यार से समझाया, अगर हम नदी को गंदा नहीं करेंगे तो पानी भी गंदा नहीं होगा। इससे जानवर और इंसान दोनों को नुकसान भी नहीं होगा। अगर हम पानी को गंदा कर देंगे तो पानी गंदा हो जाएगा तो जानवर और इंसान दोनों को नुकसान होगा। बच्चों ने उसकी बात मानी। अगले रविवार सभी बच्चों ने मिलकर नदी के किनारे सफाई अभियान चलाया। गांव के बड़े लोग भी उनके साथ जुड़ गए। सरपंच जी ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा, जब बच्चे जागरूक बनते हैं तो पूरा गाँव का माहौल बदल जाता है। कुछ महीनों बाद ऐसे ही देखा कि दीपक ने सोचा कि कोई और अच्छा काम करते रहें। ऐसे ही समय बीतता गया। दीपक पढ़ाई में मेहनत करता रहा। हर दिन हर समय पर उठता, माता पिता की मदद भी करता, विद्यालय भी जाता, शाम को खेलने भी जाता बाहर। वह मोबाइल पर अधिक समय बिताने के बजाय पुस्तकें पढ़ता। उसे महान लोगों की जीवनियां पढ़ना बहुत अच्छा लगता। एक दिन उसने अपने छोटे भाई से कहा, मोबाइल से ज्ञान भी मिलता है लेकिन उसका उपयोग सीमित समय तक और सही उद्देश्य से करना चाहिए। उसका भाई भी उसकी बात मान गया और वार्षिक परीक्षा का समय आया। कई बच्चे घबरा रहे थे, कुछ बच्चे नकल करने की योजना बना रहे थे। दीपक ने उन्हें समझाया, नकल से अंक तो मिलते हैं लेकिन ज्ञान नहीं, मेहनत से मिली सफलता ही सच्ची सफलता होती है। बच्चों ने उसकी बात मानी और पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी। वर्षों बाद दीपक बड़ा होकर एक सफल अधिकारी बना। जब भी वह अपने गांव जाता, बच्चों से अवश्य मिलता और उन्हें यही संदेश देता, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी ईमानदारी, मेहनत और अच्छे संस्कारों का साथ मत छोड़ना। गांव के लोग कहते थे कि दीपक की सबसे बड़ी पहचान उसका पद नहीं बल्कि उसका अच्छा चरित्र है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और स्वच्छता और पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है और हम टीम वर्क से बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। सफलता मिलने पर विनम्र बने रहना चाहिए और माता पिता और शिक्षकों की सीख जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करती रहती है।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तीनों कॉलेज में,
6: डोंट वरी,
5: फीस तो देखो।
7: क्या हाल है, क्या हुआ?
6: फीस की टेंशन?
7: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4,00,000 रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई?
8: RBI कहता है,
9: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
10: विराम के बाद बात करते हैं नन्हे दोस्तों रोचक जानकारियों की, क्योंकि रोचक जानकारी

या सुनकर आप हैरान भी होंगे और आनंद भी आएगा। आप जानते हैं दोस्तों, ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। इनमें से 2 दिल उसके गलफड़ों तक खून पहुंचाते हैं और जबकि तीसरा दिल पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। इतना ही नहीं, ऑक्टोपस का खून लाल नहीं बल्कि नीले रंग का होता है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि एक बड़ा पेड़ एक दिन में इतनी ऑक्सीजन देता है कि उससे 2 से 4 लोगों की सांस लेने की आवश्यकता वो पूरी हो सकती है। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। आपने कभी सोचा है कि शायद है वो खराब क्यों नहीं होता है? तो हम देखा होगा कि शुद्ध शहद वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है क्योंकि उसमें ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देते हैं। और हमारी नाक है वो सिर्फ सुगंध ही नहीं पहचानती बल्कि हजारों तरह की अलग अलग गंधों में अंतर भी कर सकती है। अब सुनते हैं एक छोटी सी पहेली, जैसे कि ऐसी कौन सी चीज है नन्हे बच्चों जो जितना सूखती है उतनी ही गीली होती जाती है? जरा सोचिए, इसका उत्तर है तौलिया। और जब हम ऐसी कोई बात करते हैं तो इससे क्या है, पहेलियाँ पूछना, रोचक जानकारियों से हमें नई नई जानकारी भी मिलती है और कुछ सीखने को भी मिलता है और आनंद भी आता है। ऐसी कौन सी चीज़ है नन्हे दोस्तों जो पानी पीते ही मर जाती है? सोचो सोचो जरा। आग। ऐसे ही पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद तो चलती है, चलती ही नहीं लेकिन सबको मंजिल तक पहुंचाती है? कुछ याद आया? सुबह सुबह जब हम घूमने निकलते हैं वो है सड़क। और एक पैर है, काली धोती है, जाड़े गर्मी हरदम होती है। एक पैर है, काली धोती है, जाड़े गर्मी हरदम होती है। क्या है नन्हे दोस्तों? छाता। वह कौन है जो बिना पंख के उड़ता है और बिना आंखों के रुलाता है? याद आया कुछ? धुआं। और ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो वह उतनी छोटी होती जाती है? याद करके मुझे बताओ। नहीं आया? ना हाथ है ना पैर है फिर भी चलती जाती है, सबको समय बताती है। कुछ दिमाग में आया होगा? कैसा, क्या चीज है वो? घड़ी। 4 पैर हैं पर चल नहीं सकती, घर में रहती है थक नहीं सकती। मेज। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास जितनी अधिक उतना कम आप देख पाएंगे? ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास जितनी अधिक होगी उतना कम आप देख पाएंगे? अंधेरा। दिन में सोता रात में जागता, चूहे पकड़कर काम बनाता। दिन में सोता और रात को जागता तो कौन हो सकता है धनी दोस्तों? बिल्ली। कान है पर सुन नहीं सकती, मुंह है पर बोल नहीं सकती। कान है पर सुन नहीं सकती, मुंह है पर बोल नहीं सकती। क्या है नन्हे दोस्तों? सुराही। तो नन्हे बच्चों, पहेलियाँ केवल मनोरंजन नहीं करती बल्कि हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी बढ़ाती है। तो आप भी अपने परिवार अपने दोस्तों के साथ पहेलियाँ पूछिए, ज्ञान के साथ आनंद भी पाइए।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं।

बिल्कुल नन्हे दोस्तों, जब एक मज़ेदार ये तथ्य ये कि हंसने से हमारे शरीर में ऐसे रसायन बनते हैं जो मन को प्रसन्न रखते हैं और तनाव कम करने में मदद करते हैं। इसीलिए हर दिन खुलकर हंसिए और दूसरों को भी मुस्कुराने का जो अवसर है वो दीजिए, ताकि वो भी खुलकर हंसें। और इसी के साथ आज के बाल विहार कार्यक्रम से दीजिए अनुमति अपनी दीदी माया को। फिर मिलेंगे नई पहेलियाँ, नई कहानियाँ और नई जानकारियों के साथ। तो बच्चों, मेरे साथ मिलकर बोलिए जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल विहार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, माफ कीजिए मुंबई केंद्र से, विविध भारती के कार्यक्रम का रिले किया जाएगा।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
2: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
3: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं, फिल्मी दुनिया के जाने माने गीतकार। जी हाँ, आप हैं सुधाकर शर्मा, और जिन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5,000 गाने अब तक लिखे हैं, और भी न जाने कितना काम इस फिल्मी दुनिया में उन्होंने किया है। तो आज उन्हीं से जानेंगे उनकी दुनिया का सफर। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
4: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
3: तो सबसे पहले हम तो यही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
4: मंदाकिनी जी, हुआ ये कि हर आदमी अपने बचपन से प्रेरित होता है किसी भी काम के लिए। तो मैं गांव में रहता था, पलवल के पास मेरा गांव है। वहां हमारे एक चाचा थे, वो हमेशा ट्रांजिस्टर बगल में लटका के रहते थे। बिना ट्रांजिस्टर उनको आप देख ही नहीं सकते कभी। तो वहां गाने बजते थे, जब आता था अनाउंसमेंट कि आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत सुनिए, तो मुझे वो साउंड जो है ना, ऐसा लगता था कि काश मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं कि मेरा भी ऐसे नाम आए कि अब आप शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया हुआ, सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ गीत सुनिए। तो ये प्रेरणा स्रोत बना मेरा आपका ये माध्यम, और मैं वहां से सफर तय करने के मतलब तैयारी में मुंबई तक आया।
3: ये 1973 में, 1973
4: में
3: हरियाणा से मुंबई आ गए?
4: नहीं, मैं हरियाणा से दिल्ली में था।
3: हाँ।
4: दिल्ली से मुंबई आया।
3: अच्छा।
4: मेरे पिताजी दिल्ली में टीचर थे, तो मैं दिल्ली में ही रहता था, और वहां से मैं यहाँ आया। और यहाँ आने की भी एक अलग कहानी है। मैं कोई सोच समझ के नहीं आया, मतलब मुझे आना था ऐसा मेरे मन में था, लेकिन

0: कब जाऊंगा और कैसे जाऊंगा इसकी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उतने पैसे मेरे पास नहीं थे और आने का कोई सोर्स भी नहीं था। मेरे एक दोस्त हैं विजय त्यागी,
1: जी
0: वो धर्म जी के फैन थे, तो उसने बोला यार मुझे तो धर्मेंद्र बनना है, तो उसने बॉडी वॉडी भी अच्छी बनाई थी,
1: अच्छा
0: उसका आने का प्रोग्राम बना और मेरे को बोले कि चल तू भी चल, और मैं उनके साथ आ गया और यहाँ बम्बई में बम्बई का होके रह गया। मैं पहली बार जब यहाँ आया देहरादून ट्रेन से उतरा, देहरादून एक्सप्रेस दादर, तो मेरे साथ मतलब पहली घटना ऐसी हुई कि हम तीन थे, एक जो तीसरा था वो हमारा गाइड था,
1: अच्छा तीन दोस्त आए थे
0: तीन
1: आप?
0: दोस्त आए थे,
1: हाँ
0: मेरे दोस्त का वो दोस्त था,
1: अच्छा
0: तो उसने बोला कि मैं जहाँ रहता हूँ वो बहुत बड़ी जगह है और उस जगह पे ये नहीं जा सकता,
1: कौन आप?
0: सुधाकर, कि
1: अच्छा
0: बोला ये तो शक्ल से ही चोर लगता है, तो वहां कुछ कुछ हो गया
1: अरे
0: तो मैं दादर स्टेशन प्लेटफार्म पे रात को सोया, ये लोग दोनों चले गए। मैंने कहा
1: अच्छा
0: भाई आप तो जाइए फिर मैं रुकता हूँ। तो ये एक कार्यक्रम इस तरीके से बम्बई में मेरी पहली
1: ओपनिंग
0: रात
1: हुई आपकी?
0: ओपनिंग हुई, दादर एक नंबर प्लेटफार्म के बेंच पे सोया, कभी कभी उस जगह पे जाके मैं खड़ा होता हूँ अभी।
1: उस पल को महसूस करते हो जब
0: बिल्कुल
1: आपको
0: याद
1: ऐसा
0: आता है,
1: किसी ने कहा था?
0: याद आता है वो।
1: जी, तो जब आपने कहा कि आप दिल्ली से यहाँ आए, तो क्या आप मुंबई गीतकार बनने ही आए थे या कुछ और विचार लेकर भी आए
0: नहीं,
1: थे?
0: मैं सिर्फ गीतकार बनने ही आया था, और मैं उस वक्त जो है ना बहुत बड़ा फैन था शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी साहब का और शंकर जयकिशन का,
1: अच्छा
0: लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मैं इन लोगों से कैसे मिलूं, क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और कुछ दिनों बाद मेरे वो दोनों दोस्त भी चले गए, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं यहीं कुछ ना कुछ करूंगा। इससे पहले रूटीन ये चल रहा था कि ये लोग घूमते थे, मेरे को ले लेते थे दिन में और रात को वहां खाना खिला के छोड़ देते थे, पूरा
1: अच्छा
0: खर्चा वही लोग करते थे। लेकिन फिर जब ये जाने लगे तो मैं रुक गया और मैंने सोचा कि अभी मुझे कुछ करना है। ये 4-5 महीने के बाद मैंने एक जगह नौकरी की ग्रैंड रोड पे, और वहाँ उस नौकरी के मेरा ये था कि कुछ 4-5 बाल्टी पानी नीचे से सेकंड फ्लोर पे उनको पहुँचानी होती थी भर के, और उसके बदले में वो टेरेस पे मुझे सोने की जगह देते थे,
1: कोई पैसा नहीं देते
0: नहीं
1: थे?
0: पैसा नहीं देते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो कुछ और, भाई ये चाय ले आओ, फलाना डालो, ये लेटर डालो, और कुछ पैसे भी देने लगे। तो वहाँ काफी मेरा कुछ 1-1.5 साल लगा इस तरह से, मुझे फिल्म लाइन का कोई रास्ता ही नहीं मिला,
1: अच्छा, मतलब 1 से 1.5 साल लगभग आप यही काम करते रहे,
0: यही काम
1: ये
0: करता
1: संघर्ष
0: रहा।
1: जो
0: अब इसको
1: था?
0: आप संघर्ष कहें या कुछ भी कहें, उस मंजिल तक ही नहीं मैं मुड़ा जहां के लिए आया था, अब
1: हाँ
0: वो ही रोज उसमें चलता रहा। तो वहां पे मुझे 2-2.5 रुपए रोज के मिलते थे, तो वहां पे एक मुस्लिम होटल था जहां बड़ी रोटी मिलती थी, दाल फ्री होती थी, तो
1: अच्छा,
0: एक टाइम हम आराम से खा लेते थे, कोई टेंशन
1: इतना
0: नहीं था,
1: पैसा मिल जाता था
0: इतना
1: आपको?
0: पैसा मिल जाता था। तो वहां उस कंपनी में एक अकाउंटेंट थे, उन्होंने एक दिन कहा कि यार तुम क्या बनने आए हो? मैंने कहा यार बनने तो बहुत कुछ आया लेकिन कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो काम ही कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, और मैं उनके साथ गया और वो मुझे शंकर जी के म्यूजिक रूम में लेके गए,
1: अच्छा
0: और तब तक जय भाई तो नहीं रहे थे, शंकर जी थे। और वहाँ जब मेरा उनसे परिचय हुआ, मैं बता नहीं सकता उस पल की खुशी कि शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ, वही शंकर जयकिशन का रूम, वही शंकर जी, वही उनके स्टूडियो, तो मेरे लिए तो ऐसा था मैं जन्नत में आ गया,
1: जी, सपने देखने जैसा।
0: सपने देखने जैसा। और यहां से इस पल से मेरे सपने साकार होने शुरू हुए फिल्म लाइन के।
1: तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: मैं मेरे उस्ताद जी का एक गाना सुनना चाहता
1: जी
0: हूं,
1: बताइए।
0: और वो गाना है बहारो फूल बरसाओ मेरा
1: मेरा
0: महबूबा।
1: महबूबा।

0: माता पिता से बात होती रही क्या? उन्होंने पूछा? और वो जो दोस्त आपको छोड़कर फिर चले गए, आप कह रहे हैं मुंबई, क्या उनसे भी कभी सामना हुआ?
1: हाँ, वो हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी मेरी खैर खबर लेते रहते थे।
0: हाँ।
1: और माता पिता तो लेंगे ही लेंगे, तो मैंने उनको एक, अपने माता पिता को एक थोड़ा सा झूठ बोला था कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, नौकरी मिल गई है, मैं यहीं रहूंगा और मुझे यहीं कुछ करना है। और उनको ये अंदेशा तो था कि फिल्म लाइन में कुछ करेगा। मेरे पिताजी ने एक ही बात करी कि भाई अगर तुम कुछ ऐसा करना चाहते हो कि जो बम्बई में ही हो सकता है, तो ठीक है आप करो, और जो भी आप कमा रहे हो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप परेशान मत होना। जबकि कमाई वमाई कुछ थी नहीं, लेकिन एक एड्रेस था मेरे पास कि वहां से हम लोग बात कर सकते थे।
0: कुछ आपको उम्मीद भी बंधी कि मैं, मुझे कुछ करना है तो करना ही है।
1: जी जी जी।
0: तो जैसा कि आपने कहा कि वो आपको शंकर जयकिशन के स्टूडियो में ले गए, जहाँ शंकर जी मिले, उसके बाद फिर क्या आपको पहला गीत मिल गया या
1: नहीं,
0: आप
1: नहीं,
0: शंकर
1: नहीं।
0: जी के सानिध्य में रहे? कैसे?
1: बस
0: क्या?
1: उनके सानिध्य में मैं उनके रूम में काम करता रहा, झाड़ू कटका पोछा जो भी मेरे को मिला मैं काम करता रहा।
0: अच्छा।
1: तो मुझे काम तो नहीं मिला, लेकिन क्या है कि वो शंकर जी के यहाँ एक बड़ा अच्छा सिस्टम था कि वहां पे सब खाने पीने की बड़ी मौज थी। आपको जो खाना है कैंटीन में खाओ, खाली सिग्नेचर कर दो, तो कोई परेशानी नहीं थी और सोने की कोई परेशानी नहीं थी। तो मैं जो है वहां पे काफी समय तक रहा, और एक दिन शंकर जी ने मुझसे पूछा कि भाई यहाँ हर आदमी एक सपना लेके आता है, तो तेरा क्या सपना है? तो मैंने कहा मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ कुछ। अब वो इतनी बड़ी शख्सियत, उनके सामने मेरे से कुछ सुनाया ना गया। मैं बोला क्या सुनाऊं, एक होता है ना अभी अचानक उन्होंने बोल दिया।
0: तो क्या तब तक आपने कुछ गीत लिख लिए थे, कुछ
1: लगभग
0: 200-250
1: गीत मैंने लिखे थे।
0: अच्छा।
1: गीत तो रोज लिखता था। लेकिन अब शंकर जी जैसी पर्सनैलिटी सामने हो तो सिट्टी भिट्टी गुम सुनाए क्या?
0: बिल्कुल।
1: वो भी समझ गए और उन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुझे पहली बार मिलाया।
0: अच्छा।
1: और कहा कि हसरत मियां ये लड़का सोचता बहुत अच्छा है, इसको लिखना सिखाओ।
0: अच्छा।
1: ये उनके वर्ड थे।
0: तो ये किस वर्ष की बात होगी लगभग?
1: ये तो मतलब मेरा होते होते लगभग 70

0: हिट की बात है, मतलब काफी समय हो गया। इन बिटवीन मैं यहाँ आता था बम्बई, सबके घर देखता था, सब चारों तरफ ये बंगला दिलीप कुमार का है, ये फलाने का है, ये सब देखते थे। उन बंगलों को देख देख के खुशी होती थी, उनसे मिल तो नहीं पाते थे लेकिन बस घर देख लेते थे तो उसमें खुश
1: उसमें
0: हो
1: भी
0: जाए।
1: ऊर्जा आ जाती थी,
0: हाँ, लगता
1: मोटिवेशन
0: था,
1: मिलता था
0: मोटिवेशन
1: कि
0: होता
1: कभी
0: था
1: हमारा भी ऐसा
0: कि
1: घर
0: कभी हमारा भी होगा।
1: होगा।
0: दिलीप साहब के घर के सामने ना, जैसे आज अमित जी के घर के सामने भीड़ लगती है, उन दिनों दिलीप साहब के घर के सामने भीड़ लगती थी, कुछ लोग आते थे हमेशा। वहां का एक अलग ही चलन था, वहां एक चाय वाला आता था, सबको चाय पिला के चला जाता था और पैसे नहीं लेता था।
1: अच्छा,
0: अब वो पैसे
1: कौन देता
0: कौन
1: था?
0: देता था वो, या वो क्यों नहीं लेता था, ये मुझे नहीं पता।
1: मतलब दीवानगी होगी दिलीप कुमार
0: हो
1: साहब के
0: सकता है,
1: प्रति ना, इस
0: हो सकता
1: दीवानगी
0: है,
1: में भी लोग कितना काम कर जाते
0: करते हैं।
1: हैं।
0: तो दिलीप साहब आते थे बालकोनी में, हाथ हिलाते थे, बस इतना ही था। लेकिन मैं अक्सर जो है ना, हम लोग वो चाय पीने के लालच में ज्यादा जाते थे क्योंकि
1: जी
0: भूख प्यास भी होती है ना आदमी
1: जी
0: को।
1: जी जी
0: तो वो दौर पाली हिल का मुझे याद है अभी तक, कैसे वहां पे जाते थे।
1: जी
0: जब हसरत साहब ने मुझे कहा कि मैं कैलाश बिल्डिंग में रहता हूँ खार, आप वहां आइए, तो मैंने वहां उनके पास जाना शुरू किया। और पहले पहले तो क्या ऐसी बातें होती रहीं उनसे बातचीत में, वो मुझसे बात करते रहे, पूछते रहे सब कुछ। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हजरत साहब एक फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आए।
1: जी
0: उन्होंने वाकई में मुझे लिखना सिखाया। मुझे मुझे लगा कि जो मैंने लिखा वो सब बकवास है, और अभी भी मैं उतना अच्छा नहीं लिख पाता हूं जितना अच्छा हजरत साहब लिखते थे।
1: जी खैर, ये तो
0: कहीं ना
1: आप
0: कहीं मुझे एक रहता है, और शायद यही मलाल मुझे जिंदा रखे हुए है, शायद कभी कुछ ऐसा लिख पाऊं
1: जो हसरत साहब जैसा होगा
0: उनके जैसा हो सकता है,
1: जी।
0: लेकिन उनसे बढ़िया नहीं हो सकता।
1: ये एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है किसी
0: जी
1: कलाकार की कि मैं उन जैसा बन जाऊं, क्योंकि आपने उनको अपना उस्ताद माना
0: जी
1: हजरत
0: जी
1: साहब
0: जी
1: को।
0: जी बिल्कुल
1: बहुत अच्छा लग रहा है आपकी कड़वी सच्चाइयों को सुनकर,
0: जी
1: है ना
0: जी
1: सुधाकर जी। तो आगे हम आपसे बात करेंगे, एक
0: जी
1: गीत सुन लेते हैं पहले।
0: जी एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाना चाहता हूं कि जिस गीत की बहुत अहमियत है मेरी जिंदगी में, और वो गीत है परदेसी बाबू का,
1: जी
0: क्या है प्यार बताओ ना।

0: सुधाकर जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। आप ही का लिखा वही गीत था?
1: जी, मेरा ही लिखा हुआ।
0: अब अभी मैं ये आपसे तो नहीं पूछना चाह रही हूँ कि ये गीत आपने कैसे लिखा, लेकिन
1: नहीं, आप जरूर पूछिए। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ ये गीत मुझे मिला कैसे।
0: अच्छा, ये बताना चाहते हैं?
1: जी जी,
0: बताइए।
1: क्योंकि ये मेरे कैरियर का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गीत था। इससे पहले लगभग मेरे 240-245 गाने रिकॉर्ड हुए जो बड़े बड़े सिंगरों ने गाए और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ किए, लेकिन कोई गाना मेरा बाहर नहीं आया।
0: अरे, इतने सारे गाने करने के बाद भी?
1: हाँ, और नहीं आया तो मुझे ये मिला ऐसे कि मुझे आनंद राज आनंद जी मेरे मित्र थे और उनके साथ मेरा काफी आना जाना था, तो मैं हमेशा उनको बोलता था यार मेरे से भी कुछ लिखवा लो। ये गीत मिलने से पहले मैं एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर हो चुका था
0: फिल्मों की
1: लेकिन वो चली नहीं, मैं भी चला नहीं। तो लेकिन ये गीत जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरे पास उस वक्त 2-व्हीलर था और बारिश हो रही थी और उस बारिश में ये था कि 50 रुपए मैंने अपनी मिसेज को कहा कि पड़ोस से कहीं से लाओ, वो लेके आई, पेट्रोल डाला और मैं सहारा स्टूडियो आया। और सहारा स्टूडियो में आया तो वहां पे मुझे ये गीत लिखने के लिए मिला उनके डायरेक्टर, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई और मैंने ये गीत लिखा। और ये गीत लिखा और ये गीत मुझे लगा कि जैसे और गीत नहीं आए ये भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे को कुछ वो नहीं था, तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिले इस गीत के, पहली बार इतने पैसे मिले मुझे।
0: तो हम ये माने कि जो पहला गीत सामने आया दुनिया के वो ये था?
1: नहीं,
0: वो कोई और था। जी, बड़ा उलझा हुआ मामला है।
1: जी।
0: तो बात चल रही थी कि आप हसरत साहब से मिले, आप शैलेंद्र जी से भी मिले, शंकर जयकिशन से मिले, तो हमारे मन में ये बात आ रही कि उनके साथ, क्योंकि आप 1973 में आ गए थे और आपने कहा कि लगभग 1978 के आसपास ये सब मुलाकातें शुरू हो गई थी, तो ये सफर कैसा रहा, किस तरह से आपने फिर गीत लिखना शुरू किया या इन लोगों के साथ आपने वक्त को कैसे बिताया? इतना आसान तो नहीं होता इतने बड़े लोगों के साथ।
1: बहुत मुश्किल होता है। इस सफर में मेरा अफसोस सिर्फ इतना ही रहा कि मैं शैलेंद्र जी से मिल नहीं पाया, वो उससे पहले उन डेथ हो गई।
0: अच्छा।
1: थी। लेकिन मैं चूंकि उनका फैन था, हसरत साहब में ही मुझे शैलेंद्र जी भी मिल गए और हसरत जयपुरी भी मिल गए। वो मुझे मिल गए और उन्हीं दौरान मेरी जो मुलाकात हुई वो पंडित नरेंद्र शर्मा जी से हुई।
0: अच्छा।
1: और पंडित नरेंद्र शर्मा जी और शैलेंद्र जी एक ही गली के राइटर थे।
0: अच्छा।
1: वो मतलब उनकी थॉट, उनका सोचना, तो उनसे मेरी काफी मतलब मुलाकातें रहीं। और हसरत साहब के यहाँ जब मैं जाता था तो हम गीतों को जो डिस्कस करते थे, उनके सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो कभी भी मेरे लिखे हुए गीत को रिजेक्ट नहीं करते थे।
0: अच्छा।
1: वो कहते थे ये लाइन तुमने लिखी है ना, इसमें तुम क्या कहना चाहते हो, तो मैं बोलता था मैं ये कहना, तो उसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे कर लो, इस लाइन को यहां से निकाल दो, इसकी जगह ये ले आओ, मतलब मेरे ही गीत को वो सुधारते थे। वो कभी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि ये क्या लिखा है, तो ऐसा मतलब उन्होंने कभी नहीं किया, वो हमेशा मुझे सिखाते थे, मैं करता था। और ये सफर एक ऐसा था कि मुझे एक दिन, मैं रात को पाली हिल पे घूम रहा था और हसरत साहब के यहाँ आने के बाद जो है ना, मेरे को ये था कि सोने का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब आना जाना मेरा लगा हुआ था, लेकिन ये मैंने एक

0: कपड़ा ले लिया था खेरवाड़ी में, और मेरी तब तक शादी भी हो गई थी, तो हम लोग मियां बीबी रहते ही थे वहां पे। तो वहां मेरी मुलाकात बहुत ही मशहूर कॉमेडियन मारुति साहब से हुई।
1: अच्छा।
0: तो मारुति साहब जो ना, वो रात का समय था और अपने बरांडे में टहल रहे थे, तो मैंने उनको पहली बार टहलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैंने उनसे बातचीत की, और उन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, ये सब। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कोई गीत सुनाओ, तो मैंने उनको सुना दिया। तो बोले कि तुम कल आओ, तो मैं नेक्स्ट डे पहुंचा, तो उन्होंने कहा बेटा ये गीत वीत तो ठीक है, तुम टेक्निकल कुछ काम करो। मैंने कहा जी वो क्या होता है? बोले कल आओ, हम तुमको बताएंगे। और वो मतलब मेरे को अपने साथ उन्होंने रखना शुरू कर दिया, और उनके साथ रहने से क्या है, मेरे को थोड़ा सा इंडस्ट्री का देखने को मौका मिला, और उनके ही द्वारा मुझे किशोर कुमार साहब मिले। मारुति साहब मुझे वहां लेके गए और वहां उन्होंने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया।
1: अच्छा
0: जी। और मैं किशोरदा के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर लग गया।
1: क्या बात है, तब तक किशोरदा तो गाने गा ही रहे थे बहुत शानदार, तो, और लेजेंड से
0: उनका
1: थे
0: तो क्या कहना।
1: बहुत सुंदर, आगे हम आपसे बात करेंगे, एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: तो मंदाग्नि जी, एक गाना जोड़ी नंबर 1 का टाइटल ट्रैक मुझे सुनाइए।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: उन्होंने के बाद मुझे लगा कि अब तो मेरा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा।
1: हाँ, क्योंकि एक लंबा जुड़ाव रहा था किशोर कुमार के साथ आपका।
0: जी जी जी।
1: तो उनके साथ काम करने का अनुभव क्या रहा और किस तरह से फिर आपको सफलता मिलनी क्या शुरू हुई इस दौरान?
0: जी जी, मैं किशोर दा के साथ काम करने का मतलब ये हुआ कि मैं उस काम को काम नहीं कहता, एक ऐसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिला मुझे जहाँ सीखना ही सीखना था। वो आपके ऊपर है कि आप क्या सीखना चाहते हो, क्योंकि वो हर विधा में पारंगत थे। लिखना उन्होंने भी सिखाया, उन्होंने डायरेक्शन सिखाई, एडिटिंग सिखाई, उन्होंने कैसे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना कैसे चाहिए वो सब मैंने वहीं
1: तो
0: से सीखा।
1: वाला थे कि
0: बहुत बहुत और मैं उनको हमेशा साहब बोलता था, आज भी बोलता हूँ। उस घर के बहुत बड़े एहसान है मेरे ऊपर। वहां जाने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, और उसी घर से मुझे पहली डायरेक्शन की पिक्चर भी मिली। वो भी शायद इसी कारण मिली कि मैं उनका असिस्टेंट था, तो प्रोड्यूसर ने फेथ किया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और पहली फिल्म की डायरेक्शन मुझे वहीं से मिली।
1: जी, तो वो कौन सी फिल्म थी?
0: वो फिल्म थी गोरी।
1: गोरी,
0: और मेरे ये उसी दोस्त ने बनाई थी जो मुझे बंबई लेके आया था।
1: अच्छा।
0: विजय त्यागी।
1: विजय त्यागी,
0: उन्होंने बहुत पैसे कमा लिए थे, तो एक दिन बोले चल यार कोई और नहीं तो मैं फिल्म बनाता हूँ, और मुझे उन्होंने डायरेक्टर लिया। और इसमें किशोर दा ने भी गाना गाया, और इस पिक्चर को करने के लिए मैं शंकर जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि शंकर जी मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें म्यूजिक दें। तो उन्होंने कुछ इतना पहचाना नहीं क्योंकि फासला काफी हो चुका था।
1: हाँ।
0: तो मैंने उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, तो बोले अच्छा जो कल तक हमारे यहाँ नौकरी करता था आज हमको नौकरी पे रखने आया है।
1: अरे
0: मैंने कहा जी नहीं, मैं कल भी नौकर था आज भी नौकर हूँ, मैं कल भी आपको मालिक समझता था आज भी है, बस ये फिल्म आप करेंगे तो मेरा थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे लाए हो? अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे ये पूछें कि लोगे कितना, कैसे करोगे, ये सब बातें तो हुई नहीं। उन्होंने पूछ लिया कितने लाए हो, तो हमने उनको कहा कि 21,000 हैं शगुन के, कहीं उनको ऐसा ना लगे कि टोटल इतने ही हैं। तो हम डरे हुए बहुत थे, तो उन्होंने कहा 1 रुपया और रखो इस पे। तो 1 रुपया रखा, उन दिनों कागज का चलता था, उन्होंने 21 छोड़ के 1 रुपया उठा के हमारी पिक्चर का, इसी में पूरी पिक्चर करूंगा।
1: अरे क्या बात है।
0: और उसी में उन्होंने की।
1: ये होते हैं महान संगीतकार, और उन्होंने समझा आपकी परिस्थिति को, और बहुत बड़ी बात। तो उसके बाद उस फिल्म में भी आपको कोई गाना था या केवल डायरेक्शन ही था?
0: नहीं, मेरे गाने थे उसमें। मेरा पहला गाना उस फिल्म में मन्ना डे ने गाया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मन्ना डे साहब ने वो गाना गाया था, और गाना था दुल्हन सेज है फूलों की, दहेज गमों के खार, दूल्हे का दहेज है जीवन में, दुल्हन का सच्चा प्यार।
1: क्या बात है। यहाँ जब बात चल रही है गीत की, तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: देखिए, आप मेरा एक गीत सुना दीजिए, फिर उस गीत की कहानी मैं आपको बताऊंगा।
1: अच्छा, कौन सा?
0: मेरा वो गीत जिसने मुझे सुधाकर शर्मा बनाया, और पहला गाना जो रिलीज हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की।
1: क्या बात है। ये गीत तो हर एक के दिलो दिमाग में है, और
0: जी जी।
1: अगर कहीं शादी ब्याह के या किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो इस गीत पर तो बहुत सारे डांस क्रिएट किए जाते हैं।
0: इस गीत ने मेरी जिंदगी बना दी।
1: अच्छा।
0: मतलब ये गीत पहला गीत था जो मेरा रिलीज हुआ।
1: हाँ।
0: और उसके बाद जो है ना, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। एक्चुअल में हुआ ये कि हिमेश रेशमिया साहब जो आज के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके पिताजी मेरे दोस्त थे, विपिन भाई रेशमिया।
1: अच्छा।
0: और एक फिल्म में वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, मैं डायरेक्टर था। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार अभी हिमेश जी सीरियल बना रहे हैं तो आप इनके साथ लग जाइए। मेरे पास उन दिनों कुछ काम वाम था नहीं, क्योंकि उससे पहले मैं डायरेक्टर ये वो सब बन के सब फ्लॉप हो चुका था, एकदम बेकार। मतलब उस लायक था कि अब मैं काम मांगने भी कहाँ जाऊं, क्योंकि लोग, मैं डायरेक्टर बन गया, 2-3 पिक्चरें मैंने कर ली लेकिन चला नहीं। तो अब शर्मिंदगी भी थी कि मैं काम कहाँ जाऊं। तो मैं हिमेश जी के साथ जो ना, उनके जितने सीरियल थे उनके सबके टाइटल मैंने ही लिखे।
1: अच्छा।
0: हाँ, ओके। लगभग उन्होंने 40-45 कुछ ऐसे सीरियल उनके थे, लेकिन सबके मैं गाने मैंने लिखे, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ ज्वाइंट किया। हमारा उम्र में बहुत फर्क था।
1: जी।
0: तो एक दिन हिमेश जी बोले कि सर वो क्या है? मैंने कहा भाई तुम मुझे सर बोलो, मैं तुमको सर बोलूं, बस इसी में कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये सलमान भाई ने ये गाना

0: ना हिमेश जी को दिया लिखने के लिए, प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग था,
1: जी,
0: और हिमेश जी ने ये गाना मुझे
1: आपको
0: दिया।
1: दिया। हाँ
0: और उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर अगर हमको मिली मिली है, अगर ये गाना आप लिखोगे तो गाना सुपर डुपर हिट होगा और ऐसा होगा वैसा होगा।

0: अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि जितनी उन्होंने अच्छी लिखी होंगी वो तो सब आ गई, तो हम लोग फंस जाएंगे यार। बोले नहीं नहीं सर, लेकिन वो तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि टाइटल ही वो है। तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। तो उस गाने को हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली,
1: ठीक है,
0: और कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे।
1: हाँ।
0: इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, सेकंड लाइन आप लिखो ही मत, बस इसको हुक लाइन रखेंगे।
1: अच्छा।
0: तो फिर मैंने लिखा तेरे प्यार में डूब गए हम खुद को ही, वो जैसा।
1: हाँ।
0: वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम,
1: तेरे
0: की।
1: नाम की,
0: और वो ऐसे नाम की चुनरिया ओढ़ी के उसके बाद फिर ये गाना गुलशन जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि एक गाना इस टीम का और ले लो। फिर हमको एक गाना मिला और वो गाना था तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके
1: क्योंकि तुम वो हटके
0: हटके। तो ये दो गाने मेरे पहले रिलीज हुए और बहुत मजा आया। मैं और हिमेश बहुत नर्वस थे कि पता नहीं गानों का क्या होगा। तो लिबर्टी में हम लोग पिक्चर देखने गए थे, तो हम लोग पिक्चर में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमको इंटरेस्ट था कि अपना गाना कब शुरू होता है और जैसे ही अपना गाना शुरू हुआ और लोगों ने, मैंने पैसे बरसते हुए पहली बार देखे।
1: अच्छा।
0: अपने गाने पे,
1: क्या बात है।
0: दोनों बहुत खुश हुए और हमें लगा कि अब हमारी लाइफ बन गई, और वाकई में उस गाने ने हमारी लाइफ बनाई।

0: इसमें जतिन ललित जी भी थे, साजिद वाजिद भी थे और हिमेश रेशमिया भी थे, दो गाने हिमेश जी
1: और गीतकार भी, अन्य गीतकार भी थे।
0: इसमें समीर साहब भी थे, एक और गीतकार थे और
1: एक आपका
0: मैं भी था। और मुझे लगा कि इतने सब बड़े बड़ों में देखो क्या होगा, लेकिन
1: ये गाना तो मतलब आज भी सबकी जुबान पर है और सुनते ही एक अलग किस्म की थ्रिलिंग हो जाती है। इतना खूबसूरत तरीके से आपने लिखा है और हिमेश जी ने उसको संगीत में
0: बहुत सुंदर
1: है।
0: इसमें
1: पिक्चराइजेशन भी बहुत सुंदर है।
0: सबसे बड़ा क्रेडिट इसमें मैं हिमेश जी को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने वो जो प्यार किया तो डरना क्या की ट्यून बना के जो मुझे बचाया सेकंड लाइन लिखने से, ये बस ऊपर वाले ने उनके दिमाग में डाली, बहुत बारीक काम किया। और हिमेश जी जितना भी काम करते हैं वो बहुत बारीकी में करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और बहुत धैर्य से करते हैं।
1: मुझे एक बात बताइए सुधाकर जी, आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने कहा कि इस गीत में मैंने एक पैंतरा डाला था, मैंने हिमेश जी से कहा था कि इसमें एक पैंतरेबाजी करनी पड़ेगी।
0: जी जी।
1: तो ये पैंतरा क्या था और किस तरह से आपने इसको निभाया, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे।
0: पैंतरा क्या है कि एक्चुअल में हसरत साहब बोलते थे कि जब कभी ऐसी जगह पे फंस जाओ तो उसमें पैंतरेबाजी से काम लेना चाहिए।
1: हाँ, हाँ।
0: वो पैंतरा क्या होता है कि मतलब अब जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या कि सेकंड लाइन मैंने नहीं लिखी, तो पैंतरा ये था कि गाने को ऐसी जगह से शुरू करो कि लोगों को ये पता ही नहीं लगे कि कहना क्या चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो, यहां से शुरू हो रहे तो उनको क्या मालूम ये क्या कहने वाले हैं। और ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, जब प्यार किया तो डरना क्या, हिमेश भाई ने इसकी ट्यून बनाई, और जब प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ली डरना क्या के बाद लोग खटके, तो हमने दूसरा ही रंग दे दिया, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, ये ओढ़ली पैंतरा था।
1: बहुत सुंदर, मतलब एक बहुत बारीक काम था ये, जिसे हर एक को समझना आसान नहीं था। तो जब ये गीत आपने रिकॉर्ड किया, आपने अलका याग्निक और कुमार सानू को इस गीत में गवाया, तो क्या कोई दिक्कतें आपको पेश आई और किस तरह से गाना, क्योंकि गाना मिल तो गया लेकिन रिकॉर्ड किस स्थिति में हुआ उसकी भी कहानी होती है।
0: हाँ, ये दिक्कत तो इसमें बहुत बड़ी आई, और दिक्कत सबसे बड़ी ये आई कि हिमेश जी ये चाहते थे कि ये गाना अलका याग्निक और कुमार सानू गाएं, तो चूंकि उनका ये पहला गाना था और उनका ये था कि अगर ये दोनों गाएंगे तो सुपर हिट होगा, तो दादा को लाने में मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, क्योंकि मेरा रिश्ता था, हम लोग काम कर रहे थे, तो मैं गया तो दादा को तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मैंने दादा को बोला दादा एक फिल्म मिली है और उसमें आपको ये गाना गाना है, तो दादा बड़ा वाकई में वो टाइगर ही है, वो जो है बस वही है
1: जी,
0: वो कभी कुछ बनावटी बातें नहीं करते हैं। उसमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये कुछ नाराज हैं, नाराज वाराज भी कुछ नहीं होते, उनको खुद ही नहीं मालूम कि वो क्या उनको बोलना चाहिए और क्या बोल गए। बड़े भोले और बड़े डैशिंग आदमी है, तो मेरे को बोले हाँ ठीक है गा दूंगा। कौन है म्यूजिक डायरेक्टर? तो मैंने कहा आपने एक दो गाने सीरियल में गाए हैं उसके, हिमेश भाई का म्यूजिक है। हाँ अच्छा वो करता है, वो करूंगा। प्रॉब्लम आई अलका याग्निक की।
1: अच्छा,
0: उनका अप्रोच नहीं हो पा रहा था। मैं जब भी उनकी बिल्डिंग पे जाता था तो वो ऊपर फोन करके पूछते थे तो वहां से मना हो जाता था, कई कारण रहे होंगे जो भी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने कहा हिमेश भाई बाकी तो सब हो रहा है मगर उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो वो मुलाकात यूं हुई कि मैंने सेम बिल्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति रहती थी, तो मैं नेक्स्ट डे गया, मैंने कहा मुझे कविता जी के घर जाना है, तो उन्होंने कविता जी के घर फोन लगाया और उन्होंने कहा भेज दो। अब मैं कविता जी के घर नहीं जाके अलका जी के घर चला गया।
1: अरे यहाँ पर आपने भी पैतरा खेला।
0: पैतरा हो गया।
1: जी।
0: और फिर अलका जी से मेरी बात हुई, अलका जी को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गाना आपको गाना है, मुझे जानती थी, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, मैंने हिमेश जी का परिचय दिया, ये सब हुआ, तो बोले कि ठीक है लेकिन अभी तो क्या है मैं थोड़ी बिजी हूँ ये वो। मैंने कहा गाना आपको गाना है और ये गाना कल ही गाना पड़ेगा आपको, वरना ये पिक्चर हमको नहीं मिलेगी और बहुत दिनों से मेरे पास काम वाम नहीं है, तो अभी मिला है। तो बोले नहीं कल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं चुप हो गया। बोले कल नदीम श्रवण की रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं क्या गया वहां से निकला और मैं निकलने से पहले वो गाना उनको कैसेट में लेके गया था, उनको सुनाया, गाना बहुत पसंद आया, तो मुझे लगा

0: गाने के लिए तो रेडी हो गई हैं। अब ये कल नहीं गा पाएंगी क्योंकि
1: उनकी
0: उनका गाना
1: रिकॉर्डिंग
0: है।
1: है।
0: तो मैं सनी में पहुंचा और सनी में मैं गया तो उधर वो सिटिंग रूम में नदीम और श्रवण जी दोनों बैठे थे। तो मैं बार बार ऐसे उनको झांक के ऐसे हो जाता था, अभी मैं अंदर भी कैसे जाऊं। थोड़ी देर में श्रवण भाई बाहर आए तो मैंने श्रवण भाई को बोला कि श्रवण भाई एक मेरी छोटी सी मदद कर दो यार, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन्होंने तुरंत जेब में हाथ डाल के पर्स निकाला।
1: अरे
0: बहुत बढ़िया इंसान थे वो भी। मैंने कहा भाई ये वाली मदद नहीं।
1: अच्छा
0: यार क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा ये वाली मदद नहीं, मदद ये चाहिए कि हमको एक पिक्चर मिली है और उस पिक्चर में एक गाना है, वो गाना हम अलका जी से गवाना चाहते हैं। तो अगर वो कल गाएंगी तो पिक्चर हमको मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, मैं अलका जी से बात हुई, वो आपका गाना गा रही हैं इसलिए हमारा गाना नहीं गा
1: नहीं
0: सकते।
1: गा पाएंगे।
0: तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरे सामने ही अलका जी को कहा फोन करके कि ये सुधाकर जो है ये मेरा खास है और कोई बात नहीं, आप मेरा गाना 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद कभी भी गा दो, पहले इनका गा दो।
1: क्या बात है।
0: ये दिक्कत थी। लेकिन जब ये गाना एम्पायर में रिकॉर्ड हुआ और वो पल आया कि इन दोनों शहनशाहों ने गाया, और एक इसमें एक बात आ गई, मैं ये भूल गया कि मुझे ठीक से किसी ने बताया नहीं था कि इसमें काजोल हीरोइन है। तो मैंने हिमेश भाई को पूछा, यार हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है? तो उसने कहा सर काजोल। मैंने कहा यार गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? हमने कहा यार काजोल के लिए तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है। क्या मतलब? तो मैंने कहा वो अब मैं क्या बताऊं आपको सर, ये एक बार कुमार शानू को बुलाना पड़ेगा। बोले लेकिन हुआ क्या है? हमने कहा वो एक लाइन में काजोल के लिए लिखना चाहता हूँ, खासकर काजोल की आंखें जो है ना वो बड़ी कमाल हैं, और वो जो बातें करती है, जो जितनी
1: आंखें
0: बातें
1: बोलती
0: करती है
1: हैं।
0: सिर्फ उसकी आंखें बोलती हैं, बाकी सब तो ठीक है। और वो बात मैं कह नहीं पाया लेकिन मैं कह दूंगा। तो बोला ठीक है बुलाओ, फिर आप ही बुलाओ। तो मैंने शानुदा को फोन किया। शानुदा शायद बर्थडे मना रहे थे, अपना था या किसी और का मुझे याद नहीं। मैंने कहा शानुदा, इधर भी एक पैंतरा चला। मैंने कहा शानुदा एक्चुअल में जो लाइन गाने में प्रोड्यूसर ने पसंद की थी वो मैं आपको लिखवाना भूल गया, और जो रिजेक्ट थी वो आपने गा दी, और ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आप प्लीज आके वो लाइन सही कर दीजिए। अरे यार मैं बर्थडे में हूँ, सब चमकी उमकी पड़ी है कोर्ट पे, मेरा ये हाल है। मैंने कहा दादा गाना तभी लगेगा जब वो लाइन होगी। दादा आए,
1: अच्छा, दो लाइन के लिए भी आए।
0: एक ही लाइन थी,
1: अच्छा
0: दो तो मैंने बोली, लाइन तो एक ही थी।
1: जी।
0: और वो आए और आते ही थोड़े से जरा प्यार में नाराजगी होती ना, हाँ यार तो बोल बोल कौन सी लाइन है, क्या है ये? हमने कहा सर ये मेरी लाइन है वो, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं सौ सौ बातें।
1: अच्छा जी।
0: तो वो मेरे को तो हंसने लगा, बोला तेरा नाटक है, तूने अभी सोचा होगा ये। मैं कुछ बोला ही नहीं और उन्होंने वो लाइन गाई, और वो गाने में सबसे अच्छी लाइन
1: बहुत सुंदर थी। और काजोल की आंखें जब एकदम
0: जी
1: हाईलाइट होती हैं उस
0: जी
1: गाने में, और सलमान गाते हैं उनके लिए,
0: गाते
1: बहुत
0: बहुत
1: प्यारा
0: अच्छा
1: लगता है, बहुत सुंदर।

0: मतलब कहने का ये हुआ सुधाकर जी कि एक गीत को बनवाने में इतनी मशक्कत आपको करनी पड़ी, कहाँ कहाँ आपको जाना पड़ा, तो जो आज नए गीतकार आने वाले उनको भी ये सबक मिलता है कि इतना आसान नहीं है कुछ नहीं करना, है ना, कि हमने लिख लिया और हम गीतकार कहला गए, उसके पीछे कितनी संघर्ष की कहानी है।
1: संघर्ष की कहानी मतलब यह होता है कि अगर, चूंकि मैं डायरेक्टर रह चुका था, मैं ये सब

0: कर चुका था, मैं लाइन में मतलब नया नहीं था ना, तो मुझे वो मालूम था कि जो ये म्यूजिक डायरेक्टर जो चाह रहे हैं, अगर ये फुलफिल होगा तो गाना और खिल के आएगा, और वो चूंकि नए थे तो मैं वो सब कर सकता था। तो कभी भी कोई भी गाना सिर्फ कागज पे हिट नहीं होता है,
1: बिल्कुल
0: उसके बहुत सी उसमें जो चीजें हमको डालनी होती हैं वो हम डालते हैं।
1: बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप गीत लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसके लिए गीत लिख रहे हैं, सिचुएशन क्या है।
0: हमें ये भी पता होना चाहिए कि इस फिल्म का हीरो कौन है,
1: हाँ
0: हीरोइन कौन है, ये गाना क्यों गाया जा रहा है, ये गाना गाते वक्त जो है ना इनकी सिचुएशन क्या है, और इस फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका मिजाज क्या है, वो किस तरह के गाने पसंद करता है, तब हम उस रंग में जा सकते हैं।
1: मतलब आपके लिए किसी किरदार और सिचुएशन को जानना बहुत जरूरी
0: बहुत
1: है, तब जाके
0: जरूरी।
1: शब्दों का चयन आप करेंगे। आपने एक उदाहरण दिया था कि गणेशा पर जो आपने
0: जी जी जी
1: बनाई है, तो
0: जी
1: वो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल का
0: कॉन्वेंट
1: है।
0: स्कूल का है, इसलिए मैंने उसमें कर दिया कि ओ माई फ्रेंड गणेशा। अगर वो लड़का कॉन्वेंट में नहीं होता तो वो गणेशा को फ्रेंड नहीं कह सकता, और वो फ्रेंड जो है ना इतना हिट हुआ कि उसकी तीनों चारों सीरीज मैंने ही लिखी।
1: बिल्कुल।
0: तो ये क्या होता है कि हम किरदार क्या है हमारा, वो क्या कह रहा है, कितनी बात कर रहा है, तो उससे हमें क्लू मिलता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं।
1: जी
0: अभी जैसे प्यार किया तो डरना क्या में ही, जब दूसरा गाना हमको मिला तो अब वो गाना लिखना था हमको कि उसमें गाना डालना है और उसमें भैया भी होना चाहिए। तो मैं और हिमेश भाई ये थे कि यार गाना तो ठीक है, भैया क्या करेगा इसमें। तो मेरे को उन्होंने कहानी बताई कि भाई ऐसा है, अरबाज भाई वो रोल कर रहे हैं तो वो उनकी भाई कुछ कहानी है, वो बहन को ऐसा चाहते हैं, ये प्यार करता। तो हमने कहा ठीक है, तो वो गाना हुआ तुम पे हमें अटके आ रहा दिल भी मारे झटके। तो अब ये तो गाना हो गया, अब भैया की एंट्री कैसे होगी।
1: हाँ
0: तो मेरे को एक जहन में बात आई कि देखिए जब कोई लड़का लड़की आपस में मिलते हैं, भले वो सच्चे मन से प्यार कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, भाई को अगर पहली बार पता लगेगा तो, और उसे उसे लगेगा कि ये मेरी बहन की तरफ बढ़ रहा है, तो वो खटकेगा जरूर,
1: जी
0: भले बाद में उसको पता
1: जी
0: लगे कि ये मेरी
1: सच्चाई
0: बहन की
1: यही है।
0: सच्चाई है,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन पहला उसका जो
1: रिएक्शन आएगा।
0: रिएक्शन आएगा। तो मेरी वो लाइन आ गई, बच के रहना प्यार में तुमको पड़ जाए ना फटके, और भैया को तू खटके।
1: हाँ अच्छा
0: और ये
1: जी
0: गाना कंप्लीट
1: जी
0: हुआ,
1: जी जी
0: ये दो गाने मेरे सुपर डुपर हिट
1: जी
0: हुए।
1: जी

0: हटके।
1: आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। कुछ ही पुरो में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे कार्यक्रम मन की बात।

0: कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बोल बोल के थक गया।
4: क्या हुआ?
3: नया किडबैग चाहिए।
4: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
4: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर।
3: चले
4: ले आ गया नया किडबैग।
5: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
6: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है। और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।

साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड, सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है, इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को

तक जो हिसाब मिला है 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11 लाख परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों,
मैं अक्सर

पर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी
आगे

आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़े एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती है। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने
कई चुनौतियां भी आती हैं।

ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको वृक्ष में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको वृक्ष का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे

0: बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमानन क्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि चत्वारिंशत् संख्याकानि विमानानि भारत

0: प्रमाणां विषये माम् अवश्यं प्रेषयन्तु। स्वविचारान् स्वपरामर्शान् च निरन्तरं प्रेषयन्तु। सम्भवमेतत् यत् भवतां समीपे आरब्धः कश्चन लघुः उपक्रमः सम्पूर्णस्य राष्ट्रस्य प्रेरणा भवेत्। आगामिनि मासे वयं पुनर्मिलिष्यामः। देशवासिनां केषाञ्चन नवीनानां प्रयत्नानां चर्चां करिष्यामः। तावत् भवन्तः स्वस्य स्वपरिवारस्य च परिचर्यां कुर्वन्तु। आम्, जलसञ्चयः तु करणीय एव। वर्षा जलस्य एकः एकः अपि बिन्दुः अस्माभिः रक्षणीयः। कैच द रेन इति अभियाने शैथिल्यं न कदापि आनेतव्यम्। अतः मम विशेषः आग्रहः अस्ति यत् वर्षा जलस्य बिन्दुं बिन्दुं संरक्षामः। बहुधन्यवादाः, नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम मन की बात। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम सुर बहार। लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए हरिहरन की गाई ये गजल।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरभार। आइए सुनते हैं चंदनदास की गई गजलें।

चंदन दास की गई इस गजल के साथ ही अब आज का गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम सुर बहार यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 MHz पर। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के सुर में आइए सुनते हैं मीना वर्मा की गई लोक रचनाएं। प्रस्तुत है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

मीना वर्मा की गई इस लोक रचना के साथ ही अब आज का लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार लिखे जाएंगे।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से वर्षाकाल के दौरान बारिश की एक एक बूंद को बचाने और कैच द रेन अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाने की अपील करते हुए वोकल फॉर लोकल को अपनाने का आह्वान किया है। आज आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने जून महीने के दौरान देश की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों और महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है और देश आज समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने ईंधन बचाने, कुछ समय के लिए सोना नहीं खरीदने और विदेशों में छुट्टियां मनाने से बचने के लिए बीते दिनों किए गए अपने आग्रह पर देशवासियों से मिले समर्थन पर आभार जताते हुए कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि देश का हर नागरिक वैश्विक संकट का मिलकर मुकाबला कर रहा है।
1: मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचे, कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचे, कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूँ कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का उल्लेख करते हुए योजना की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी एक दूसरे तक साझा करने की अपील की। उन्होंने अंधविश्वास पर अपने विचार व्यक्त करते हुए विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर धारणाओं को बदलने को कहा। श्री मोदी ने एआई टूल्स को देश की संस्कृति तथा भारतीय ज्ञान भाषाओं के संरक्षण में काम लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। आकाशवाणी के इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम को सुनने को लेकर प्रदेश भर में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। राजस्थान सहित देश भर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 59,000 से अधिक बूथों पर ये दवा पिलाई जा रही है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ मोबाइल और ट्रांजिट टीमें गठित की गई हैं, जो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक तथा अन्य आवागमन स्थलों पर भी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दवा पिला रही है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। श्री नरसिम्हा राव को 90 के दशक में वैश्विक संकट और मंदी के दौर में भारत को सुरक्षित रूप से बाहर रखने पर कुशल प्रशासक के तौर पर याद किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि देश के महत्वपूर्ण दौर में श्री राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 269 पदों पर चयन के लिए सुबह 11 से 1 बजे तक एक पारी में ये परीक्षा ली गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: कार्यक्रम महिला जगत सुनने वाली सभी बहनों का स्वागत है उनके अपने कार्यक्रम में। और आज मैं हूं आपके अपने सुषमा और मेरे साथ है
1: लीला सहल।
0: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।

0: बहनों, सुना आपने अभी एक प्यारा सा सॉन्ग, और हमें पता है कि हमारी बहनों को ये गाना जो है वो बहुत पसंद आया, क्योंकि लीला बहुत से गाने ऐसे हैं जो एवरग्रीन हैं, हमें हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे उनको हम कितनी भी बार सुन ले। और अब बात कर लेते हैं हमारे जीवन की। जी हाँ, हमारा जीवन है ये बहुत ही प्यारा है, और इसमें जब हम रात को सोते हैं लीला, तो उस वक्त हम पूर्णतया आराम कर रहे होते हैं और हमें किसी भी बात का नहीं पता होता है। लेकिन जब सुबह हम उठते हैं, तो सुबह जो है वो लेकर के आती है एक नई ताजगी, एक नई स्फूर्ति, और ऐसा लगता है जैसे हर एक सुबह हमारे लिए एक नया जीवन और एक नया संदेश लेकर आती है।
1: बिल्कुल सही कहा सुषमा जी आपने, क्योंकि जो सुबह होती है वो केवल दिन की शुरुआत ही नहीं होती है बहनों, बल्कि ये हमें समय के महत्व का बहुत बड़ा संदेश देती है। सुबह उगता हुआ सूरज और चिड़ियों की वो चहचहाट, सुबह एक नया अवसर, नई आशा, नई ऊर्जा के साथ आती है, और वो हमें सुबह के समय का सही उपयोग करना सिखाती है। और ये जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और सम्मान भी हमें देती है। इसलिए कहा भी जाता है कि सुबह का समय जो होता है वो बहुत मूल्यवान होता है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है।
0: बिल्कुल, सुबह का महत्व अगर हमने सीख लिया तो समझ लीजिए कि हमारा पूरा जीवन जो है वो सफल हो गया। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन, वस्तुएं और अवसर दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। इसलिए समय का सदुपयोग करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो बहनों, इसका महत्व हमें भी समय रहते समझ लेना चाहिए।
1: बिल्कुल, और सुबह का महत्व तो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सुबह का जो वातावरण होता है बहनों, वो बहुत शांत, स्वच्छ और ऊर्जा से भरपूर होता है, और इस समय मन और मस्तिष्क दोनों जो है वो ताजगी महसूस करते हैं। इसलिए सुबह का जो समय होता है वो योग के लिए, व्यायाम के लिए, ध्यान के लिए, और सबसे बड़ी बात योजना बनाने के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है, क्योंकि हम एकदम फ्रेश माइंड रहते हैं।
0: बिल्कुल लीला, और जब सुबह उठ करके हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ा हुआ भी लंबे समय तक याद रहता है, और बच्चों को जल्दी याद होता है, क्योंकि रात भर जो है हमारा माइंड जो होता है वो भी रेस्ट ले लेता है। तो उसके बाद जब हम किसी भी काम को करते हैं तो दोगुनी ऊर्जा के साथ वो कार्य हमारा संपूर्ण होता है। तो सुबह सुबह जो होती है वो हमें यही सिखाती है कि यदि हम दिन की शुरुआत अनुशासन और समय की पाबंदी के साथ करें तो पूरा दिन व्यवस्थित और सफल बना रह सकता है।
1: बिल्कुल, और सुबह का समय जैसा कि आपने बताया सुषमा जी, विद्यार्थियों के लिए बहुत विशेषकर उपयोगी और लाभदायक होता है, क्योंकि सुबह सुबह एक तो मेडिटेशन किया जाता है और उसके बाद अगर पढ़ाई की जाती है तो वो बहुत लंबे समय तक याद रहती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि परीक्षा की तैयारी और कठिन विषयों का जो अध्ययन होता है या उनकी पुनरावृत्ति जो होती है, वो सुबह के समय करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। और विद्यार्थी अगर सुबह जल्दी उठते हैं तो वो अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और प्रबंधन कर सकते हैं।
0: बिल्कुल लीला, अगर सुबह जल्दी उठा जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है, और इसके साथ ही साथ अगर आप जल्दी उठेंगे, सुबह सुबह उठेंगे, तो आपका जो दिन का कार्य है वो सही समय पर अपने आप होता चला जाएगा। ये नहीं होगा कि आज तो लेट हो गए, और जब सुबह जल्दी उठेंगे तो थोड़ा सा वक्त आपको ज्यादा मिलेगा, तो हो सकता है कि आप अपने ऊपर भी ध्यान दे सके, यानी कि नियमित व्यायाम, योग और प्राणायाम के लिए भी हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाता है। यह सिर्फ हमारे शरीर को नहीं बल्कि हमारे मन को भी तंदुरुस्त रखता है। इसके साथ ही साथ सुबह की ताजी हवा और सूर्य की पहली किरण शरीर को नई ऊर्जा प्रदान करती है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए प्रकृति का एक बहुत बड़ा संदेश हम सबको जाता है कि हर सुबह सूरज जो है बहनों, वो समय पर उगता है, पक्षी चहचहाते हैं, प्रकृति अपने नियमों का पालन करती है, तो क्यों ना हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए नियमितता, अनुशासन और समय की पाबंदी बहुत जरूरी होती है।
0: बिल्कुल लीला, जो लोग देर तक सोते हैं, आलस करते हैं या अपना समय बिना उद्देश्य के व्यर्थ करते हैं, वे कई अवसर खो देते हैं। समय का सदुपयोग जो है वो हमें करना आना चाहिए। उसका अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो धीरे धीरे हम जो है अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए हर

0: का सही उपयोग जरूर करना चाहिए।
1: बिल्कुल, और इसीलिए तो हम ये भी कह सकते हैं सुषमा जी कि सुबह जो होती है वो केवल दिन का आरंभ नहीं होती है, दिन की शुरुआत नहीं होती है, बल्कि समय के महत्व का हमें ये जीवंत संदेश देती है और यह हमें सिखाती है कि प्रत्येक नया दिन एक नया अवसर, नई सुबह लेकर आती है जिसका हमें सदुपयोग करना चाहिए।
0: बिल्कुल, समय का सम्मान हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो समय का सम्मान करता है समय भी उसे सम्मानित करता है। सुबह की एक अच्छी शुरुआत पूरे दिन को सफल बना देती है और आज का काम आज और अभी का अभी करना ही समय का सही मूल्य है।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद

0: और लोकप्रिय आवाज जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: लीला, अगर घर का जो माहौल है वो साफ सुथरा हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए हम कोशिश करते हैं और अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन क्या हो जब घर के आसपास का जो माहौल है वो साफ सुथरा ना हो, वहां पर गंदगी फैली हो, तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मोहल्ला बिल्कुल साफ सुथरा हो, हमारी कॉलोनी एकदम साफ सुथरी हो, हमारा जो शहर है या गांव जहां पर भी रहते हो वो पूरा साफ सुथरा हो, तो फिर इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हमेशा हम प्रशासन की गलतियां ही बताते रहेंगे या उनके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियां थोपते रहेंगे? क्या हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है? अगर हम खुद इधर उधर कचरा नहीं फैलाएंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो हम क्या हमारा जो पूरा देश है वो पूरा साफ सुथरा हो सकता है? तो हमें अपनी सहभागिता जो है वो जरूर दर्शानी होगी।
2: बिल्कुल, और प्रदूषण है उसको नियंत्रित करना है और प्रकृति को संरक्षण अगर हमें देना है तो हमें ये सहभागिता निभानी ही होगी, क्योंकि प्रकृति हमारे जीवन का आधार होती है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि, पेड़ पौधे और जीव जंतु, हम जानते हैं कि ये सभी प्रकृति की अमूल्य देन है। लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण प्रदूषण जो है बहनों वो लगातार बढ़ रहा है, इस चीज को हम जानते हैं। इसका दुष्प्रभाव केवल पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि हम पर, हमारे स्वास्थ्य पर, कृषि पर, जलवायु पर और जैव विविधता पर भी पड़ रहा है। इसलिए प्रकृति को अगर हमें स्वच्छ बनाना है तो प्रदूषण को हमें नियंत्रित करना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल लीला, हम सबको पता है कि ये जो प्रदूषण है वो वायु, जल, भूमि या ध्वनि, इनमें जब कोई भी हानिकारक तत्व मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे जो बायोस्फीयर है ये सब क्या है कि ये प्रदूषित हो चुके हैं, जीव जंतुओं, पौधों और मनुष्य के लिए नुकसानदायक हो जाते हैं, तो उसे हम प्रदूषण कहते हैं। यह पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ देता है और जीवन के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है।
2: हाँ सुषमा जी, लेकिन प्रदूषण जो है अगर हम बात करें तो वो प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये हम सुनते भी हैं, हमने पढ़ा भी है और हम महसूस भी करते हैं। बात करते हैं हम अगर वायु प्रदूषण की, तो वाहनों का धुआं, कारखानों से निकलने वाली गैसें और फसल अवशेष जलाना और जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग जो है वो वायु प्रदूषण को बढ़ावा देता है।
1: तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के पीछे लीला हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तो बात कर लेते हैं जल प्रदूषण की। नदियों, तालाबों और समुद्र जो होते हैं उनमें अगर हम गंदगी डालते हैं, रसायन डालते हैं या प्लास्टिक और किसी भी प्रकार का कचरा डालते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है।
2: बिल्कुल, और भूमि प्रदूषण की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग अगर किया जाता है तो वह दूषित हो जाता है। और ध्वनि प्रदूषण में जैसे तेज हॉर्न, लाउडस्पीकर, मशीनें और पटाखों से होने वाला जो शोर होता है वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत हम देखते हैं।
1: तो ये सारी चीजें जब प्रदूषित हो जाती हैं तो इसके दुष्प्रभाव होना तो लाजमी है ही, और इससे फिर क्या है कि सांस से संबंधित रोग हो जाते हैं, हृदय रोग हो जाते हैं और एलर्जी जैसी जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो बढ़ने लग जाती हैं। और साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन होता है उससे वैश्विक तापमान में भी वृद्धि होती है, वर्षा चक्र प्रभावित हो जाता है और सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाती हैं, वन्य जीवों और पक्षियों का जो प्राकृतिक आवास होता है वो नष्ट हो जाता है, पेड़ पौधों की वृद्धि भी प्रभावित होती है। तो बहनों, ये जो प्रदूषण है ये छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है, तो इसके प्रति हमारी जागरूकता बेहद आवश्यक है। अब इसके प्रति हमारी क्या सहभागिता है उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं।
2: बिल्कुल बहनों, प्रकृति की सुरक्षा करना, जैसा कि सुषमा जी ने बताया कि क्या ये केवल सरकार का दायित्व है, नहीं नहीं ये हमारा भी दायित्व है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक का अगर दायित्व बनता है कि हम छोटे छोटे प्रयासों से हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, और इसमें अधिक से अधिक अगर हम वृक्षारोपण करें तो यह एक बहुत ही लाभदायक उपयोगी सिद्ध हो जाता है।

0: जाता है, जिससे क्या है कि एक तो हम शुद्ध वायु हमें मिलती है और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हमें मिल सकता है।
1: बिल्कुल, इसके साथ ही साथ प्लास्टिक का उपयोग हमें कम कर देना चाहिए और एकल उपयोग प्लास्टिक जो है उससे तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। कपड़े या जूट के थैले अगर अपनाएंगे, यानी छोटे छोटे प्रयास करेंगे, तो हम इस प्रदूषण से दूर रह सकेंगे। साथ ही साथ जल का संरक्षण करना भी बहुत आवश्यक है। जल को अनावश्यक हमें नहीं बहाना चाहिए और ऊर्जा की बचत करके भी हम थोड़ा सा यानी कि बिजली को सोच समझ करके उपयोग करें, LED बल्ब अपनाएं, सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत जो हैं उनको बढ़ावा हमें देना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग हम कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, और जहाँ तक संभव हो हमें जो है वो दुपहिया वाहन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि साइकिल का प्रयोग हमें करना चाहिए, या हो सके तो हमें पैदल चलना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अगर हम ज़्यादा करते हैं तो इससे वायु प्रदूषित होने का खतरा होता है और ईंधन की खपत जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दोनों ही कम हम कर सकते हैं अपने प्रयासों से, और साथ ही साथ हमें कचरे का भी सही प्रबंधन करना चाहिए, और इसके साथ ही पर्यावरण के प्रति अगर हम जागरूक फैलाते हैं अपने मित्रों में, परिवार में, समाज में, तो यह पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा हमारा योगदान हो सकता है।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: बहनों, हम अक्सर आपसे यही बातें करते रहते हैं कि जो हमारी संस्कृति है वो हमारे लिए बहुत ही अनमोल होती है, और ये हमारी एक पूर्वजों से मिली हुई एक विरासत है और इसे हमें हस्तांतरित करना होता है हमारे बच्चों को। तो इस रूप में अगर हम देखें तो हमारा दायित्व जो है वो बहुत बड़ा होता है, और हम महिलाओं की भागीदारी जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। संस्कृति जो होती है वो किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। यह केवल रीति रिवाजों, पहनावे या त्योहारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, नैतिक मूल्यों, भाषा, परंपराओं, कला, साहित्य, जीवन शैली और व्यवहार का समग्र रूप होती है।
2: बिल्कुल, और भारत की संस्कृति जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है बहनों। और हमारी संस्कृति हमें क्या सिखाती है? हमें सिखाती है सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, सम्मान, परिवार और मानवता का संदेश। इसलिए ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं।
1: बिल्कुल बहनों, हमारी जो संस्कृति है इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। संस्कृति हमें हमारी पहचान प्रदान करती है। यह हमें अपने इतिहास, पूर्वजों और परंपराओं से जोड़ती है। जिस समाज की संस्कृति मजबूत होती है वह समाज कठिन परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाए रखता है। संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसे अच्छे संस्कारों की ओर प्रेरित करती है।
2: बिल्कुल, बुजुर्गों से मिली हुई हमें ये एक सौगात है और इस सौगात की हमें रक्षा करनी होती है। और भारत की संस्कृति की अगर हम बात करें तो इसमें अनेकता में एकता का अद्भुत ये उदाहरण सबके सामने पेश करती है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्म हैं, भाषाएं हैं, वेशभूषाएं हैं, परंपराएं

0: इसके बावजूद भी सभी लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं।
1: बिल्कुल, अगर भारतीय संस्कृति की बात करें तो इसी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि हमें बड़ों का सम्मान करना है और छोटों से स्नेहपूर्वक व्यवहार करना है। अतिथि जो होता है वो हमें हमारे देवता के समान लगता है।

0: के द्वारा हमने सीखी है।
1: बिल्कुल, आज का जो युग है वो आधुनिक युग है, और ऐसे में आधुनिक युग में जो हमारी नई पीढ़ी है वो आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को संस्कृति से परिचित कराएं। ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं हो हमारे जीवन के मूल्य क्या है, तो अगर इस तरह से अगर उन्हें नहीं पता होगा तो वो अपनी पहचान को खो देंगे। इसलिए आधुनिकता के साथ साथ अपनी संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान देना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, माना कि तकनीकी युग आ गया है, लेकिन हमें संस्कार बच्चों को किस प्रकार देने हैं ये हम पर निर्भर करता है। ये शुरुआत हम परिवार से करें, बच्चों में बचपन से ही हम अच्छे संस्कार दें, परिवार में अपनी भाषा, परंपराओं और त्योहार का महत्व हम बच्चों को समझाएं। अपनी मातृभाषा में बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए अगर हम बच्चों को प्रेरित करें तो यकीन मानिए भाषा संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान होती है और ये बच्चे सीख पाएंगे।
1: बिल्कुल, त्योहारों को केवल मनोरंजन का माध्यम न बनाकर उनके पीछे छिपे सांस्कृतिक और सामाजिक संदेश भी बच्चों को बताए जाने चाहिए। भारतीय कला और साहित्य से भी हमें हमारे बच्चों को परिचित करवाना चाहिए। इसके साथ ही साथ लोकगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत, साहित्य और भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी हमें हमारे बच्चों को देनी होगी, ताकि हमारे बच्चे जो हैं इसके साथ हमेशा जुड़े रहें।
0: बिल्कुल, और नैतिक मूल्यों का बच्चों में अगर विकास होता है तो बच्चे जो है वो सत्य बोलना, ईमानदारी, दया, सहयोग, अनुशासन और दूसरों का सम्मान करना जैसे गुण जो है उनमें विकसित होते हैं और ये हम उन्हें सिखाते भी हैं। आधुनिकता और संस्कृति में एक संतुलन बनाए रखने का सबसे बेहद उपाय है नैतिक मूल्यों का विकास।
1: बिल्कुल, तकनीक का उपयोग करें लेकिन अपनी परंपराओं और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही संतुलन भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो उन्हें हमें हमेशा प्रेरित करना चाहिए कि विद्यालय में आयोजित होने वाले जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनमें हमारे बच्चे जो हैं वो भाग लें और उनका महत्व समझें। तो हम अपनी बहनों से यही कहना चाहेंगे कि संस्कृति जो है वो हमारी सबसे अनमोल विरासत है। धन संपत्ति समय के साथ समाप्त हो जाते हैं लेकिन संस्कृति जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसलिए संस्कृति को संजोकर हमें रखना चाहिए।

0: लीला, हम घर के बगिया में बहुत सारे पौधे लगाते हैं और बहुत मेहनत से पौधे लगते हैं, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। और जब इनमें सब्जी, फूल या फल आने वाले होते हैं, यानी आने को होते हैं, वो जो समय होता है उस वक्त कीड़े जो हैं वो पौधों को नष्ट कर देते हैं। तो उस वक्त अगर हम रसायनों का इस्तेमाल करें तो फिर कोई फायदा नहीं है घर में लगाने का सब्जी। हम यही तो चाहते हैं ना कि हमें प्राकृतिक रूप से और फले फूले जो फल हैं या सब्जियां हैं वो प्राप्त हों, और अगर हम दवाइयां डालेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं रह गया, चाहे हम मार्केट से लेकर के आएं चाहे घर पर उगाएं। लेकिन ऐसे में एक उपाय है हमारे पास जिसको हम कर सकते हैं, कीटनाशक जो है वो अगर हम घर पे ही बनाएं तो इस तरह की परेशानी से हम बच सकते हैं।
1: बिल्कुल। और इससे इसको अगर हम पेड़ पौधों पर छिड़कते हैं, छिड़काव करते हैं, तो इससे क्या है, मच्छर है, मकड़ी है, ये सब दूर होते हैं। और बनाने के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हम बेकिंग सोडा और साबुन का एक लिक्विड घोल जो है वो तैयार हम घर पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सामग्री किसके लिए हमें चाहिएगी, 1 छोटा चम्मच वॉशिंग लिक्विड और 3 या 5 लीटर पानी, 3 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। बनाएंगे हम कैसे, इन तीनों सामग्रियों को मिला लेंगे और इस घोल को स्प्रे बोतल में भरकर कीड़ों से ग्रसित पौधों के पत्तों को दोनों ओर स्प्रे करेंगे। यदि पौधे ज्यादा खराब है तो गले सड़े पत्तों को हम हटा दें, और फफूंदी लगे पौधों के लिए ये स्प्रे जो होता है बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल लीला, अगर हम घर पे ही प्राकृतिक रूप से कीटनाशक तैयार करते हैं तो वो जो हम फल और सब्जी जो हमने उगाई है उनका भरपूर उपयोग हम ले सकते हैं। बात कर लेते हैं दूध की, तो दूध जो होता है यानी कि भगोने में जो दूध बच जाता है उसमें थोड़ा सा पानी मिला ले, स्प्रे बॉटल में भर करके फफूंदी युक्त पौधे जो होते हैं जिस पर ये जो फफूंदी लगी है वहां पर अगर हम छिड़काव करें तो इससे हम बच सकते हैं, और देखिए कुछ समय बाद में जो पौधा है वो फिर से हरा भरा हो जाएगा।
1: बिल्कुल। और बात करें हम इसकी निबोली सद की, निबोली क्या होती है बहनों, नीम के पेड़ के जो लगी हुई छोटी छोटी जो होती है उसको, उसका हम सत बना सकते हैं। और सत बनाने के लिए जैसा कि हमें पता ही है उसको भाप में करना होता है, तो निबोली सत जो होता है वो 5% घोल का अगर हम छिड़काव 15 दिनों के अंतराल पर पौधों पर करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है।
0: इसके अलावा गोमूत्र भी बहुत फायदेमंद होता है। 15 दिन पुराना जो गोमूत्र होता है वो सब्जियों को रोगों से बचाने में काफी प्रभावी होता है, तो इसका छिड़काव करके भी हम इन इसके जो फफूंदी और अलग अलग प्रकार के जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे हम बच सकते हैं।
1: इसके साथ साथ हम नीम के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं बहनों, जिसमें हम 5 मिलीलीटर नीम का तेल प्रति लीटर पानी में घोलकर 7 दिनों के अंतराल में छिड़काव अगर करते हैं तो इससे क्या

0: होता है कि एक तो जो पौधों में सड़न होती है और बैक्टीरिया होता है ये उसको बढ़ने में रोकता है।
1: बिल्कुल, बात कर लेते हैं लहसुन प्याज और मिर्च की। यानी लहसुन की अगर 7-8 कलियां ली जाए और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक प्याज पिसा हुआ और एक छोटा चम्मच जो लिक्विड सोप है वो, और 3-4 लीटर गर्म पानी। अब ये जो सारी सामग्री है ये गर्म पानी में घोल लें और 2 दिन के लिए इसे रखा रहने दें। इस घोल को अगर हम स्प्रे बॉटल में डाल करके स्प्रे करेंगे तो प्रभावित पौधे जल्दी से ठीक होने लगेंगे।
0: बिल्कुल, और इसमें हम साबुन के पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं कि एक छोटा चम्मच लिक्विड सोप और 3 या 5 लीटर पानी हम ले सकते हैं। कैसे करना है, हमें इन दोनों को अच्छे से मिलाना है और स्प्रे जो होता है स्प्रे बोतल में इसको डालकर पौधे के पत्तों के दोनों ओर हल्का हल्का स्प्रे अगर हम करते हैं तो कीड़े खुद ब खुद मर जाएंगे। और ऐसा करने से पहले इस बात पर भी हमें थोड़ा ध्यान जरूर देना चाहिए कि छिड़काव पौधों पर ही हमें करना है, गमले या क्यारी या मिट्टी पर हमें बिल्कुल नहीं करना है।

लीला, अगर हम आज के युग की बात करें तो इसमें एक चीज जो है वो अमूमन देखी जाती है, बच्चे जो हैं वो भी मोटे होते चले जा रहे हैं और युवा हैं उनमें भी मोटापा देखा जा सकता है, और कुछ जो हम ये कह सकते हैं कि वृद्ध भी हो गए हैं लेकिन फिर भी उनका मोटापा नहीं गया, और मोटापे

0: से हम परहेज क्यों करते हैं? जी हाँ, क्योंकि ये जो मोटापा है ये लेकर के आता है तरह तरह की बीमारियां, तो इस वजह से हम इससे परहेज करते हैं और हमें पता है कि ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन बहनों, एक मोटा है जो वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, वो क्या है? जी हाँ, वो है मोटा अनाज।
1: बिल्कुल। और मोटा अनाज जो होता है वो क्या है? हम अगर इसके नामों से परिचित हैं तो हम आपको आपको पता ही है, लेकिन अगर नहीं परिचित है तो हम आपको बता देते हैं। मौसम बदलता है तो बाजरे, मक्के, ज्वार की रोटी को शौक में हम खाते हैं, लेकिन इसके गुणों से हम अपरिचित हैं। इसके अलावा जई और कुटकी, रागी, समा, ये जो होते हैं ये भी मोटे अनाज के आटे ही होते हैं जो हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल लीला, ये जो मोटे अनाज हैं ये गुणों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इनमें पाया जाने वाला जो रेशा होता है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, और इसके जो रेशे होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि वो घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप में हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है उसको मजबूत करते हैं उस, और ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए एक वरदान होते हैं। और घुलनशील रेशा जो है पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को हम ये कह सकते हैं कि उसको ज़्यादा बढ़ाता है और जो नुकसान पहुंचाने वाला होता है उसको दूर करता है। वहीं पर ये जो अघुलनशील रेशा है वो पाचन तंत्र में जो मल जो होता है उसको इकट्ठा करने और आसानी से निकासी में मदद करता है, और ये पानी को भी खूब सोखता है। यानी कि व्यक्ति अगर मोटे अनाज का उपयोग करता है तो उसके बाद उसे प्यास भी खूब लगती है, इसलिए वो पानी का भी भरपूर उपयोग करता है।
1: बिल्कुल। और इसका मतलब तो यही हुआ ना कि महीन अनाज जो होते हैं वो खाने और से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, थोड़ा परहेज करना चाहिए, और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत या शरीर के फूलने जैसी जो बिना बुलाई हुई जो बीमारियां हैं वो हम अक्सर झेलते हैं। मोटा अनाज उनका सटीक उपचार है। गेहूं में मिलने वाला प्रोटीन, ग्लूटेन इन अनाजों में नहीं होता, तो इनमें पाचन जो है वो अच्छे से होता ही है।
0: बिल्कुल, कैलोरीज और प्रोटीन की अनियमितता वाले कुपोषण के बारे में हम जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की तरह का एक कुपोषण उत्पन्न करती हैं जिसका आसानी से पता नहीं चलता। इसका अर्थ है कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी जैसे पोषक तत्वों की कमी। उन वयस्कों और बच्चों में यह कमी आम बात है जो आटा या मैदे का उपयोग करते हैं। मोटे अनाज इन सूक्ष्म तत्वों के बहुत अच्छे स्रोत हैं। अगर भोजन में मोटे अनाज को शामिल करें तो अनेक लाभ मिलेंगे।
1: बिल्कुल। और इनको उगाना भी आसान है। मोटे अनाजों को घास की तरह उगने वाला अनाज भी बहनों कहा जाता है, क्योंकि ये तेजी से बढ़ जाते हैं और इसके लिए बहुत अधिक संसाधनों की भी हमें जरूरत नहीं होती है। इन पौधों में छोटे छोटे दानों के रूप में ये मिलते हैं अनाज, जिसका चाहे दानों के रूप में हम इस्तेमाल करें या आटे के रूप में, या जैसे हम तरह तरह के व्यंजन जैसे कि चीला बनाने, खीर बनाने, लड्डू बनाने का हम प्रयोग कर सकते हैं, और ये हमारी सेहत के लिए सोने जैसा काम करता है।
0: बिल्कुल लीला, लेकिन एक परेशानी जरूर होती है कि कई बार हमारे जो बच्चे होते हैं वो ना नुकर करते हैं, तो इसका आरंभ करना यानी इसकी अगर हम आदत डालना चाहते हैं तो जो हम रोजमर्रा का जो आटा यूज करते हैं शुरुआत में उसमें हम थोड़ा थोड़ा जो मोटे अनाज का जो आटा है उसको मिला करके रोटियां खाएं, और उसके बाद में उसकी मात्रा बढ़ा दें। मात्रा बढ़ने के बाद में एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारे बच्चे जो हैं वो पूर्णतया मोटे अनाज से बनी हुई जो रोटियां हैं वो खाने लगेंगे।
1: बिल्कुल। और महीन आटा जो होता है जैसे कि मैदा, ये हमारे खाद्य पदार्थों में भरपूर मात्रा में होता है, और इससे का अगर हम अधिक प्रयोग करते हैं तो हृदय रोग और मधुमेह जैसे रोग जो है वो हमारे शरीर को मिलने शुरू हो जाते हैं, और मिलते भी हैं। हम दुनिया में जितने भी देश हैं, कहाँ भी हम बात करते हैं, आजकल मधुमेह की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, हृदय की बीमारी देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कारगर जो काम करता है वो मोटा अनाज करता है, क्योंकि मोटा अनाज जो होता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर नियमित रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, कंगी आदि का हम प्रयोग करते हैं तो हृदय और पैनक्रियाज की सेहत को संभाला जा सकता है और शरीर को नुकसान होने से हम बचा सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं अनाज वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये और ये कई प्रकार की बड़ी बीमारियां जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी का बचाव भी कर सकते हैं।

0: बहनों, प्रोग्राम आपने सुना और हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद भी आया होगा। और आज के कार्यक्रम का वक्त हो चला है, इसलिए फिलहाल इस कार्यक्रम से जाने की दे अनुमति सुषमा और
1: लीला सहल को।
0: नमस्कार।

0: महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने को है कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से पहले
1: आकाशवाणी। एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द मिडडे न्यूज़।

0: The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is becoming increasingly secure and self-reliant from seas to the skies. With focus on indigenous defense production, highlights completion of maiden flight of C-295 aircraft manufactured in the country. In his Man Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi expresses gratitude to the citizens of the country for actively supporting his recent appeal to avoid buying gold, foreign travels and promoting carpooling for some time. India and Seychelles signed agreements on various subjects including health, agriculture, finance and space following delegation-level talks in Victoria. Government asked Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. Security situation in West Asia deteriorates sharply with both US and Iran launching fresh military strikes against each other. And in ICC Women's T20 World Cup, India to take on Australia in their final Group A match in London today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that India achieved major success in the aviation sector in June with the Made in India C-295 aircraft completing its maiden flight. Addressing the nation in his Man Ki Baat program on Akashvani, the Prime Minister shared that 40 such aircraft are being manufactured in India.
1: जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई. C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं. इससे एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है. आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है.
0: Mr. Modi exuded pride that India has achieved success linked to the country's security and self-reliance this month. He attended an event in Kolkata recently where INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agra were inducted into the Indian Navy's fleet. Mr. Modi noted that India is becoming increasingly secure and self-reliant from the seas to the skies.
1: कोलकाता में INS Dhunagiri, INS Sanshodhak और INS Agra को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया. इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है. इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है. इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है.
0: The Prime Minister also spoke about International Yoga Day, which saw the entire world join hands with India's efforts. He mentioned the World Yogasan Championship held in Ahmedabad, where India won a total of 114 medals in this event, including 102 gold. Prime Minister Modi stated that the power of public participation in nation building is a tremendous asset for India. He said this public participation was seen again after he urged countrymen on a few points in view of the prevailing warlike situation in West Asia.
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें. लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें. लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी. किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था. मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं.
0: Mr. Modi also cited the example of the Petkar family in Nandedh, Maharashtra, who arranged accident insurance for approximately 3,500 villagers. Each individual was provided with an insurance cover of 1 lakh rupees. The Prime Minister shared that the government is extending this protective shield to crores of families across the country.
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है. ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है. इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है.

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
1: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
0: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
1: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
0: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
1: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
1: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
0: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व

0: तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। दो मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं कयामत फिल्म का गीत। आवाज़ें हैं अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति की।

इस गीत के साथ ही अब आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब हमारी आज की पहली सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 4:58 पर दूसरी सभा

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी के साथ हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.7 FM, जहां हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहां आज आपके साथ है आपकी रेडियो साथी शालिनी। तो युववाणी से जुड़े तमाम साथियों को हमारा नमस्कार।

जी दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है युवाणी, और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है शेखावाटी की धड़कन, जहां आप ईमेल के थ्रू हमें कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ कविता जो है वो हमें भेजते हैं और हम रेडियो सेट के माध्यम से उसे आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जी हां दोस्तों, और सेगमेंट जब भी हमारा कुछ भी नया होता है युवाणी प्रोग्राम में, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं और हमें अच्छा भी लगता है जब आप ईमेल करते हैं और प्यारी सी कहानी, प्यारी सी कविता और जो भी आपकी बातें होती है वो आप हमारे साथ शेयर करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमें ईमेल मिला है सिरसिला फवारा चौक जिला चूरू राजस्थान से। संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोनगरा, सोमल सोनगरा, कार्तिक सोनगरा, सचिन चौहान, रामसरा वाले, समस्त सोनगरा परिवार की तरफ से ये ईमेल हमें मिला है। तो आइए, उन्होंने क्या ऐसी बात जो है वो हमारी रेडियो सेट के थ्रू आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए है। तो इन्होंने एक कहानी लिखी है और कहानी बड़ी ही शानदार लग रही है, तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। और कहानी का शीर्षक है असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाने के लिए एक बड़े पत्थर को तराश रहा था। जैसे ही उसने

अपनी छेनी और हथौड़े से पत्थर पर पहला वार किया। पत्थर टूटकर दो हिस्सों में गिर गया। मूर्तिकार ने उसे छोड़ दिया और दूसरे पत्थर पर काम करना शुरू कर दिया। उसने उस दूसरे पत्थर से एक बेहद ही आकर्षक और शानदार मूर्ति तैयार की। जब मूर्ति बनकर तैयार हो गई तो कुछ लोग उसे देखने आए। उन्होंने मूर्तिकार से पूछा, आपने इस मूर्ति को बनाने में बहुत मेहनत की है, क्या इस पत्थर को तराशने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई? तो मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, ये मूर्ति तो बस इस पत्थर के अंदर पहले से ही छिपी हुई थी, मैंने तो बस इसके बाहर के अनावश्यक हिस्से को हटा दिया। इससे पहले वाला पत्थर भी सुंदर बन सकता था, लेकिन जब मैंने उस पर पहला वार किया तो वह सह नहीं पाया और टूट गया। अगर वह उस पहले आघात को सहन कर लेता तो आज वह भी इस मूर्ति जितना ही खूबसूरत और मूल्यवान होता। कहानी से दोस्तों सीख हमें यही मिलती है कि हमारे जीवन में आने वाली मुश्किलें और असफलताएं, यानी कि पहला वार, हमें कमजोर करने नहीं बल्कि तराशने के लिए आता है। और ये जो कहानी है वो जीवन का बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूं कहे महत्वपूर्ण संदेश देती है, क्योंकि अक्सर जब हमारे जीवन में कोई भी कठिनाई, कोई भी असफलता या चुनौती आती है तो हम निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन वास्तव में वही कठिनाइयां हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाने का काम करती है। जैसे कहानी में पहला पत्थर मूर्तिकार के पहले ही वार को सहन नहीं कर पाया और टूट गया। परिणाम स्वरूप वह एक सुंदर मूर्ति बनने का अवसर खो बैठा। वही दूसरा पत्थर लगातार हथौड़े और छेनी के वार सहता रहा। उसने दर्द और कठिनाइयों को झेला, लेकिन अंत में वह एक आकर्षक और मूल्यवान मूर्ति बन गया। ये घटना हमारे जीवन में भी जुड़ी हुई है। जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में अनेक बाधाएं आती हैं और हम उन बाधाओं से डरकर हार मान लेते हैं तो हम अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। और यही जो एक खूबसूरत सीख है वो हमें ये कहानी के माध्यम से मिलती है कि जो असफलताएं हैं वो ही सफलता का मार्ग बन सकती है। इसीलिए हर परिस्थिति में आप धैर्य, आत्मविश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि वास्तव में ही असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। प्रोग्राम यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल ये चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर। बने रहिए 100.7 FM पर।

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है शेखावाटी की धड़कन, जिसमें कुछ कविताएं, कुछ कहानियां, कुछ किस्से आप हमारे साथ शेयर करते हैं और उस किस्से कहानियों को हम रेडियो सेट के माध्यम से सभी श्रोता साथियों तक पहुंचाते हैं। तो एक प्यारी सी कविता जो हमें लिख भेजी है कविता शर्मा, पूनम शर्मा ने झुंझुनू से, तो उनकी ये प्यारी सी कविता कुछ इस तरीके से है। पेड़ों ने कभी एक दूसरे जितना ऊंचा होने की जल्दी नहीं की, बरगद ने अमलताश बनने की कोशिश नहीं की, और गुलमोहर ने नीम जैसा होने की। हर एक ने अपने मौसम का इंतजार किया, अपने हिस्से की धूप ली और अपने वक्त पर खिला। अजीब है, प्रकृति में कोई होड़ नहीं, फिर भी सब बढ़ जाते हैं। शायद सुकून जो है वो वहीं से शुरू होता है जहाँ तुलना खत्म होती है। और इन्होंने लिखा है कि इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि तुलना छोड़कर अपने स्वभाव, अपनी गति और अपने समय पर विश्वास करना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, कविता में कहा गया है कि पेड़ों ने कभी एक दूसरे से होड़ नहीं की, बरगद ने अमलताश बनने की कोशिश नहीं की, और गुलमोहर ने नीम जैसा बनने की नहीं सोची। हर पेड़ ने, हर शाख ने अपने मौसम का इंतजार किया, अपनी पहचान बनाए रखी और सही समय आने पर खिल उठा। और इस कविता में एक गहरा अर्थ साथियों ये भी है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है, अपनी अलग विशेषता होती है, और उसी तरह हर इंसान जो है वो अपनी प्रतिभा, क्षमता और व्यक्तित्व को लिए इस संसार में जीता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे जैसा बनने की कोशिश करता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी मौलिकता जो है वो खो देता है। तो दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी खूबियों को पहचान

जानने और उन्हें विकसित करने में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अमलतास, गुलमोहर, नीम, बरगद सभी अलग अलग समय पर बढ़ते और फलते फूलते हैं, और कोई जल्दी असफलता पाता है, कोई देर से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीछे है वो असफल है। तो अपने जीवन की तुलना दूसरों की उपलब्धियों से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का जो सफ़र है इस जीवन का वो अलग होता है। कविता कहती है कि हर पेड़ ने अपने मौसम का इंतजार किया। इसका अर्थ है कि जिंदगी में कई बार मेहनत का परिणाम जो है वो हमें तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। यानी सही समय आने तक निरंतर प्रयास करते रहना वो हमारे हाथ में होता है। और आज के समय में सोशल मीडिया या समाज में दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर समझने लगते हैं हम, और यही जो तुलना है वो हमारे तनाव, ईर्ष्या और असंतोष का जो कारण है वो बनती है। क्योंकि कविता की अंतिम पंक्तियां शायद सुकून वहीं से शुरू होता है जहां तुलना खत्म हो जाती है, यही बताती है कि मन की शांति जो है वो तब मिलती है जब हम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर देते हैं। और ये कविता सिखाती है कि प्रकृति की तरह जीवन भी अलग अलग रंगों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति को अपना समय, अपनी गति, अपनी मंजिल होती है। इसलिए तुलना नहीं, आत्मविश्वास, जल्दबाजी नहीं, धैर्य और नकल नहीं, अपनी पहचान को महत्व देना चाहिए। दोस्तों, प्रोग्राम यही जारी है। फिलहाल ये चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की और बने रहिए 100.7 FM पर।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
8: दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, और जब हम बात करते हैं लोक कथाओं की तो हमारे मन में बचपन की वो सुनहरी यादें जो हैं वो दोस्तों ताज़ा हो जाती है, जब हम दादी नानी की गोद में बैठकर हम कहानियां सुना करते थे। उन कहानियों में राजा रानी होते थे, परियां होती थी, पशु पक्षी बोलते थे, वीर योद्धा होते थे और कभी कभी कोई साधारण सा इंसान अपनी बुद्धिमता से असाधारण काम कर दिखाता था। लेकिन क्या ये जो कहानियां हैं केवल मनोरंजन के लिए थी? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन कथाओं में छिपा था जीवन का अनुभव, समाज की समझ, प्रकृति का ज्ञान, नैतिकता का संदेश और पीढ़ियों की अर्जित बुद्धिमता। यही है लोक ज्ञान, जो लोक कथाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ता रहा है। और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारी संस्कृति, परंपरा, समाज और जीवन दर्शन से गहराई से जुड़ा हुआ है, यानी कि लोक कथाओं में ऐसा कौन सा लोक ज्ञान जो है वो छिपा होता है। लोक कथाएं दोस्तों किसी एक लेखक की रचना नहीं होती है, ये पूरे समाज की सामूहिक स्मृति होती है। इसका जन्म किसी पुस्तकालय में नहीं बल्कि लोगों के जीवन अनुभवों से होता है। खेतों में काम करते किसानों के बीच, चौपालों में बैठे बुजुर्गों के बीच, मेलों, त्योहारों में और परिवारों की बैठकों में ये कथाएं आकार लेती है। लोक कथाएं हमें बताती है कि हमारे पूर्वज जो है वो कैसे सोचते थे, किन समस्याओं का सामना करते थे और उन समस्याओं का

समाधान जो है वो कैसे खोजते थे। यही कारण है कि लोक कथाएं केवल साहित्य नहीं बल्कि समाज का एक जीवंत इतिहास भी कहा जाता है। दोस्तों, नैतिक जो भी ज्ञान हमें मिलता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोक कथाओं में छिपा हुआ होता है। और लोक कथाएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि वो समाज की एक सामूहिक बुद्धि, अनुभव और जीवन दर्शन का जीवंत दस्तावेज है। इसमें पीढ़ियों का संचित अनुभव, नैतिक मूल्य, प्रकृति के प्रति हमारी संवेदनशीलता और सामाजिक चेतना और व्यवहारिक जो ज्ञान है वो इसमें शामिल होता है। और लोक ज्ञान का अर्थ है दोस्तों जन सामान्य के अनुभवों से जो भी हमें व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है और जो जीवन को बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करता है वही लोक ज्ञान है। और ये जो ज्ञान है वो किसी स्कूल में या विश्वविद्यालय से नहीं बल्कि समाज के अनुभवों, संघर्षों और जीवन प्रक्रियाओं से विकसित होता है। और लोक कथाएं इसी लोक ज्ञान की वाहक होती है जिसमें हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, सामाजिक मूल्यों को समझने की जो समझ है हमारी वो विकसित होती है, पर्यावरण संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कृषि संबंधी ज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, जीवन प्रबंधन और व्यवहार कुशलता जैसे अनेक चीजें जो है वो इन लोक कथाओं में शामिल होती है। नैतिक मूल्यों का खजाना इन लोक कथाओं को क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे बड़ा योगदान जो है वो नैतिक मूल्यों का संरक्षण करने का इन लोक कथाओं को ही जाता है। बचपन में हम सभी ने ऐसी कहानियां सुनी है जिनमें सत्य की जीत और असत्य की हार दिखाई देती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि एक प्रसिद्ध लोक कथा में एक ईमानदार लकड़हारा नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरा देता है, देवता उसकी परीक्षा लेते हैं और उसे सोने तथा चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हैं, लेकिन लकड़हारा जो है वो अपनी साधारण कुल्हाड़ी की ही पहचानता है, उसकी पहचान करता है। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर देवता उसे तीनों कुल्हाड़ियां देते हैं। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी का फल जो है वो हमेशा अच्छा होता है। तो इसी प्रकार अनेक ऐसी लोक कथाएं हैं जो हमें सत्य, परिश्रम, दया, करुणा, सहयोग और सदाचार का महत्व बताती है। लोक कथाओं में केवल आदर्शवाद नहीं होता बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता भी शामिल होती है। अकबर, बीरबल और तेनालीराम की कहानियां इसका श्रेष्ठ उदाहरण मानी जाती है। इन कथाओं में कठिन परिस्थितियों का समाधान जो है वो हम किस तरीके से अपनी बुद्धि, तर्क और चतुराई से कर सकते हैं बताया जाता है। आज की प्रतिस्पर्धा युग में भी सामान्य जो समस्या है उसका समाधान भी हम अपनी क्षमता के अनुसार इसमें हम निकाल सकते हैं। और इन कथाओं से भी हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में केवल शक्ति ही नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक भी जरूरी होता है। लोक कथाएं जो होती है स्पेशली समाज को जोड़ने का काम करती है। अनेक कथाओं में हम ये भी सुनते आए हैं कि जब लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी जो समस्या होती है उसका समाधान है वो संभव हो जाता है। जैसे कि एक प्रसिद्ध कथा में कबूतरों का झुंड शिकारी के जाल में फंस जाता है और वो अलग अलग प्रयास करते तो वो बच नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने एक साथ मिलकर जो है वो जाल सहित उड़ जाने का निश्चय किया और वो बाद में मुक्त हो जाते हैं। इस चीज से हमें यही संदेश मिलता है कि जो एकता है उसमें अपार शक्ति होती है। आज जब हम समाज विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है तब ये जो संदेश है वो और भी ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि इस कथा से हमें यही पता चलता है कि एकता में जो है शक्ति होती है। इस तरीके से और भी अनेक संदेश जो है वो हमें लोक कथाओं से सुनने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये चलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की और बने रहिए 100.7 FM पर।

0: आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: खो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी और आज का हमारा खास सेगमेंट रहता है शेखावाटी की धड़कन। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि लोक कथाओं में छिपा लोक ज्ञान जो है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लोक कथाओं में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। हमारे पूर्वज प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवनदाता मानते थे। कई लोक कथाओं में पेड़ पौधों, नदियों, पशु पक्षियों और जंगलों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और भारत के अलग अलग जो अलग क्षेत्र हैं उसमें भी ऐसी कथाएं हमें सुनने को मिलती है जिनमें पेड़ों की रक्षा करने वाले पात्रों को नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन कथाओं का उद्देश्य लोगों को ये समझाना था कि प्रकृति की रक्षा ही मानव जीवन की रक्षा है। और आज जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट जैसी समस्याएँ हमारे सामने हैं, तब लोक कथाओं का ये जो संदेश है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। और ग्रामीण समाज में लोक कथाएं केवल मनोरंजन नहीं होती थी बल्कि ज्ञान का माध्यम भी होती थी। कई कथाओं में खेती बाड़ी, वर्षा, ऋतु परिवर्तन और पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती है। पुराने समय में वैज्ञानिक उपकरणों की कमी थी, तब लोग अपने अनुभवों के आधार पर मौसम का अनुमान लगाते थे। इन अनुभवों को कथाओं और कहावतों के रूप में अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता था और इस प्रकार लोक कथाएं ग्रामीण ज्ञान की जीवंत पाठशाला थी। हमने प्रकृति के बारे में, कृषि और मौसम संबंधी और सामाजिक एकता के बारे में तो बात कर ली, लेकिन बात करें लोक कथाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में, तो दादी नानी की कहानियां केवल बच्चों को सुलाने का माध्यम नहीं होती थी बल्कि वो जीवन शिक्षा का स्रोत होती थी। इन कथाओं में साहस,

धैर्य, त्याग, प्रेम और परिवार के महत्व को दर्शाया जाता था। कई लोक कथाओं में महिलाओं की बुद्धिमत्ता और संघर्षशीलता को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। इससे समाज में महिलाओं की क्या भूमिका रही है और किस तरीके से योगदान का जो सम्मान है वो बढ़ रहा है, उसके बारे में बताया गया है।

जब भी किसी बच्चे को सीधे उपदेश दिया जाता है तो वो उसे जल्दी भूल सकता है, लेकिन अगर उसे कहानी के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से समझाया जाए तो जो संदेश है वो लंबे समय तक याद रहता है। इसी कारण आज भी स्कूलों में कहानी आधारित जो शिक्षण पद्धति है उसको महत्व दिया जाता है। और राजस्थान की लोक कथाओं में, लोक ज्ञान के बारे में हम बात करें तो राजस्थान की धरती लोक साहित्य की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध रही है। यहाँ की लोक कथाओं में वीरता, त्याग, प्रेम, सामाजिक सद्भाव और प्रकृति के प्रति जो सम्मान का अद्भुत संगम है वो दिखाई देता है। ढोला मारू की कथा प्रेम और समर्पण का संदेश देती है और लोक देवताओं के जीवन से जुड़ी जो कथाएँ हैं वो साहस, लोक सेवा और जन कल्याण की प्रेरणा देती है। राजस्थान की अनेक कथाएं जल संरक्षण और पशुधन की रक्षा जैसे विषयों पर भी प्रकाश डालती हैं। ये कथाएं जो है वो हमें बताती है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी समाज ने अपने अनुभवों के आधार पर जीवन को किस तरीके से सरल बनाया है। और लोक कथाएं और सांस्कृतिक पहचान जो है वो लोक कथाओं के सुरक्षित रहने से ही होती है। और हर समाज की अपनी पहचान होती है और लोक कथाएं उस पहचान को सुरक्षित रखती है। भाषा, बोली, पहनावा, रीति रिवाज, त्यौहार और परंपराएं लोक कथाओं में जीवित रहती है। अगर लोक कथाएं समाप्त हो जाए तो हमारी संस्कृति स्मृतियों का एक बड़ा जो हिस्सा है वो खो सकता है। इसलिए लोक कथाओं का संरक्षण केवल साहित्यिक काम नहीं है बल्कि की हमारी साहित्य सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी बनती है। कुछ लोग सोचते हैं कि लोक कथाएं केवल पुराने समय की बातें हैं, लेकिन वास्तव में आज भी उनकी जो उपयोगिता है वो बनी हुई है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अकेलापन और नैतिक संकट बढ़ रहे हैं। लोक कथाएं हमें जीवन के मूलभूत मूल्यों की याद दिलाती है। वो सिखाती है कि सफलता केवल धन या पद प्राप्त करने में नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनने में है। तकनीक के इस युग में भी मानवीय संवेदनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले हुआ करती थी। आज डिजिटल मनोरंजन के बढ़ते प्रभाव के कारण लोक कथाओं की परंपरा कमजोर होती जा रही है। बच्चे मोबाइल और इंटरनेट पर अधिक समय बिताते हैं जबकि दादी नानी की कहानियां धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें लोक कथाओं के संरक्षण के लिए प्रयास भी करने चाहिए। लोक कथाओं का लेखन और प्रकाशन हो, विद्यालयों में लोक साहित्य को प्रोत्साहन मिले, लोक कथाओं से जुड़े हुए कार्यक्रम सुने जाएं, युवा पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जाए। जब हम अपनी इन सब कामों से लोक कथाओं को बचाएंगे तभी हम अपने लोक ज्ञान को भी सुरक्षित रख पाएंगे। दोस्तों, लोक कथाएं केवल कल्पना की उड़ान नहीं है बल्कि वो जीवन की सच्चाइयों का सार है। इनमें हमारे पूर्वजों की बुद्धिमता, अनुभव और जीवन दर्शन जो है वो समाहित होते हैं। लोक कथाएं हमें सिखाती है सत्य और ईमानदारी का महत्व, एकता और सहयोग की शक्ति, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता, बुद्धिमता और विवेक का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, और इसी के साथ मानवता और नैतिकता के मूल्य जो है वो क्या हो सकते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि लोक कथाएं जो है वो लोक ज्ञान की अमूल्य धरोहर है और हमें इसे सहजना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का संकल्प लेना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारा लोक ज्ञान जो है वो सदैव जीवित रहे। दोस्तों, प्रोग्राम यूं ही जारी है, फिलहाल ये चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युववाणी, और आज अगर हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करें जो सोशल मीडिया से लेकर हमारे घरों, कार्यस्थलों और व्यक्तिगत जो जीवन है उसमें गहराई से प्रभाव डालता है, और वो विषय है एस्थेटिक लाइफस्टाइल, जो है वो आज का ट्रेंड है या फिर आज की ज़रूरत। इसके बारे में तो हम बात करते रहते हैं कि एस्थेटिक शब्द जो है वो अक्सर हम सुनते हैं, एस्थेटिक रूम, एस्थेटिक फैशन, एस्थेटिक फोटोग्राफी, यहाँ तक कि एस्थेटिक मॉर्निंग रूटीन। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग अपने जीवन को सुंदर और व्यवस्थित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या एस्थेटिक लाइफस्टाइल केवल एक फैशन या ट्रेंड है, या फिर जो आधुनिक जीवन है उसकी भाग दौड़ में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने की एक आवश्यकता बन चुकी है। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एस्थेटिक का अर्थ क्या है। एस्थेटिक जो शब्द है दोस्तों, वो ग्रीक भाषा के शब्द एस्थेसिस से निकला है, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य का अनुभव करना या सुंदरता को महसूस करना। सरल शब्दों में कहें तो एस्थेटिक लाइफस्टाइल का मतलब है अपने जीवन, परिवेश और दैनिक जो गतिविधियां हैं उनको इस तरीके से व्यवस्थित करना कि वे दिखने में सुंदर होने के साथ साथ मन को भी सुकून दे। ये केवल महंगे कपड़े पहनने या घर सजाने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें स्वच्छता, सादगी,

की संतुलन, रचनात्मकता और मानसिक जो शांति है वो मिलती हो शामिल होती है। एस्थेटिक लाइफस्टाइल का बढ़ता ये जो प्रभाव है वो कुछ सालों से हम नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सभी अपने घरों, कमरों, कार्यस्थलों जो दिनचर्या की आकर्षक जो तस्वीरें होती है वो साझा करते हैं। एक सुंदर कमरा होता है, व्यवस्थित किताबें होती हैं, पौधों से सजा एक कोना, हल्का संगीत, साफ सुथरी मेज और संतुलित दिनचर्या, ये सभी एस्थेटिक जीवन शैली की पहचान बन गए हैं। और युवा वर्ग जो है वो विशेष रूप से इससे प्रभावित भी हो रहा है। वो केवल बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि एक ऐसे वातावरण की तलाश कर रहे हैं जो उन्हें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करे। और दोस्तों, सवाल अब ये आता है कि क्या ये केवल एक अस्थायी ट्रेंड है? अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि सुंदरता और व्यवस्थित जीवन की चाह जो है वो हमेशा से मानव स्वभाव का हिस्सा रही है। प्राचीन भारतीय वास्तुकला, मंदिरों की कलात्मकता, राजमहलों की सजावट और यूरोपीय जो कला है, सभी यही आते हैं कि मनुष्य सदैव सुंदरता की ओर आकर्षित रहा है। आज सोशल मीडिया ने इस रुचि को एक नया नाम और एक नया मंच दे दिया है। कुछ लोग एस्थेटिक लाइफस्टाइल को केवल दिखावे का माध्यम मानते हैं। उनके अनुसार लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के लिए अपने जीवन को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। कई बार ये बात सही भी प्रतीत होती है और लोग वास्तविकता से अधिक एक परफेक्ट तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो एस्थेटिक लाइफस्टाइल का एक हिस्सा निश्चित रूप से ट्रेंड है, लेकिन क्या ये आज की ज़रूरत है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आज का जो लाइफ है वो ज़्यादा व्यस्त हो चुका है, तनावपूर्ण हो चुका है। लंबे जो हमारे काम के घंटे हैं, पढ़ाई का दबाव है, कंपटीशन का माहौल है और डिजिटल स्क्रीन का बढ़ता उपयोग और मानसिक तनाव जो है वो लोगों को थका रहा है। ऐसी स्थिति में अगर एक स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित वातावरण मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालता है तो मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है कि हमारा परिवेश जो है सीधे हमारे मन और व्यवहार को इफेक्ट करता है। अगर हमारा कमरा बिखरा हुआ है और आसपास का वातावरण तनावपूर्ण है तो हमारा ध्यान और जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो प्रभावित होती है। इसके अपोजिट एक शांत और सुंदर वातावरण जो होता है वो मन को स्थिर करता है। इसीलिए एस्थेटिक लाइफस्टाइल केवल सुंदर दिखने की बात नहीं बल्कि एक बेहतर जो मेंटल स्वास्थ्य होता है हमारा उससे भी जुड़ी हुई होती है। आज मानसिक स्वास्थ्य जो है वो पूरी दुनिया में एक टॉपिक बना हुआ है चर्चा का, जिसमें तनाव, चिंता और अवसाद जैसी जो प्रॉब्लम्स होती है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। ऐसे में एस्थेटिक लाइफस्टाइल लोगों को वो मेंटल पीस देती है। जब हम अपने आसपास की जगह को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से रखते हैं, पौधे लगाते हैं और नेचर की जो रोशनी होती है उसका यूज़ करते हैं और साथ ही साथ सफाई बनाए रखते हैं तो हमारा जो मन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शांति महसूस करता है और एक सुंदर वातावरण जो होता है वो पॉजिटिव जो इफ़ेक्ट है वो प्रदान करता है। यही कारण है कि स्कूल्स में, ऑफिसेज में भी अब डिज़ाइन और वातावरण पर विशेष ध्यान दिए जाने लगा है। इसी के साथ अगर हम बात करें मिनिमलिज्म और एस्थेटिक लाइफस्टाइल के बारे में तो मिनिमलिज्म का अर्थ है कम चीज़ों में संतुष्टि और अनावश्यक वस्तुओं से दूरी। और आज बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं कि अगर अधिक सामान हमेशा अधिक खुशी नहीं देता है, इसके बजाय कम लेकिन उपयोगी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी लाइफ को और ज़्यादा सिंपल और ज़्यादा व्यवस्थित बनाती है। जब हम बहुत सारी चीज़ों को हटाते हैं तो हमारा जो मन है वो भी हल्का महसूस करता है। इसीलिए एस्थेटिक लाइफस्टाइल केवल सजावट नहीं बल्कि जीवन को सरल बनाने का माध्यम भी सोचा जा रहा है। अगर देखें हम कि सोशल मीडिया पर आलोचना की जाती है इस चीज़ की, लेकिन एक सकारात्मक पक्ष भी है इसका, क्योंकि इनमें लोगों को रचनात्मक बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। लोग अपने घरों को सजाते हैं, कला सीखते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, पौधे लगाते हैं, नई नई रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो कई युवा अब अपने जीवन को और ज़्यादा व्यवस्थित और संतुलित बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक तरीके का सकारात्मक परिवर्तन ये माना जा रहा है। लेकिन इसी के साथ नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। एस्थेटिक लाइफस्टाइल का जो कुछ चीज़ें हैं उससे समस्याएं भी पैदा कर सकता है। जब लोग दूसरों के जीवन में अपनी तुलना करने लगते हैं तो उनमें हीन भावना उत्पन्न

हो सकती है। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला जीवन हमेशा वास्तविक नहीं होता और अक्सर लोग केवल अपने जीवन के अच्छे जो पल होते हैं उनको साझा करते हैं, और इसे देखकर कई लोगों को लगता है कि उनका जीवन इतना सुंदर, इतना सफल जो है वो क्यों नहीं है। तो यही सोच जो है वो तनाव और असंतोष को जन्म दे सकती है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर आकर्षक दिखने तक ये जो चीज़ें हैं वो सीमित रह जाए, लेकिन एक तब तक ये ट्रेंड बन जाती है, लेकिन जब ये मानसिक शांति, स्वच्छता, संतुलन और रचनात्मकता और बेहतर जीवन की दिशा में अगर हम काम करें, तब ये जो चीज़ें हैं वो आधुनिक जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाती है। सुंदरता जो है वो केवल दीवारों, कपड़ों या तस्वीरों में नहीं होती, असली सुंदरता अपने विचारों, व्यवहार, संबंधों और जीवन जीने के तरीकों में होती है।

युवा श्रोता अभी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ देर बाद शाम 6 आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। FM चूरू के स्टूडियो से आप सुन सकते हैं देशभक्ति फिल्मी गीत। समय रहेगा शाम 6:10 का। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले के जाएंगे संस्कृत में समाचार शाम 6:20 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेगा आकाशवाणी केंद्र जयपुर से शाम 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। समय रहेगा शाम 7 का। रात्रि 8 सुनेगा फिल्म संगीत

का कार्यक्रम गुलदस्ता, समाचार संध्या और न्यूज 8:09 रिले किए जाएंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9:00। राजस्थानी लोक संगीत आप लुत्फ उठा सकते हैं फ्रॉम चूरू से रात्रि 9:15 पर। फिल्म संगीत सुनेगा FM चूरू से रात्रि 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा रिले की जाएगी रात्रि 10:00। इसे हम आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले करेंगे। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से ही आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार रात्रि 11:00 और अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपने जाना हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु कार्रवाई उचित, उत्तरदायित्वपूर्ण और समान होनी चाहिए। सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करते हुए आज प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जलवायु न्याय का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि सेशल्स और भारत दोनों ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां विकास समग्रता में हो और जहां अंतर्राष्ट्रीय संस्थान समसामयिक वास्तविकताओं को परिलक्षित करें। श्री मोदी ने कहा कि भारत के विजन महासागर में सेशल्स का विशेष स्थान और ये प्रतिबद्धता पहले से कहीं अधिक ज्यादा मजबूत हुई है।
1: I came here because I believe that Seychelles occupied a special place in India's vision for the Indian Ocean. Today, as I return here after a decade, that conviction is stronger than ever. And I'm delighted to join you as you celebrate 50 years of your independence. Congratulations to you and the people of Seychelles on this special occasion.
0: श्री मोदी ने कहा कि मानचित्र में सेशल्स हिंद महासागर में द्वीपों के समूह के रूप में दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि भारत इसे ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी सीमाओं से परे है। श्री मोदी ने कहा कि ये विशेष सम्मान है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री पहली बार सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित कर रहा है।
1: President Armini and the people of Seychelles for honoring me with the Guardian of the Blue Horizon earlier today. It will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation. I bring with me the warm greetings and best wishes of 1.4 billion people of India.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध सभी देशों को समर्पित किया। गृह मंत्री अमित

0: शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत में गांव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। श्री चौहान ने आश्वस्त किया कि ग्रामीण समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पंचायतों को ठोस वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। अमरीका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ये कार्रवाई शुक्रवार को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एक तेल टैंकर पर हुई ड्रोन हमले के जवाब में की गई। भारत ने एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप का कांस्य पदक जीत लिया है। अहमदाबाद में कांस्य पदक के लिए खेले गए मुकाबले में भारत ने बहरीन को 3-1 से हराया। ये भारत का इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहला पदक है। भारत ने आयरलैंड के साथ 2 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के दूसरे और अंतिम मैच में बेलफास्ट में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत आज अपने ग्रुप मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया पर जीत हासिल करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today stated that climate action must be guided by fairness, responsibility and equity. In his special address to the National Assembly of Seychelles, Prime Minister said this is the essence of climate justice. He emphasized that Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive and where international institutions reflect contemporary realities.
2: Seychelles and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly.
1: Mr. Modi said Seychelles occupies a special place in India's vision for the Indian Ocean and that conviction is stronger than ever. He said the Indian Ocean does not separate India and Seychelles but connects the two countries. He addressed that it will encourage all those who are making sustained efforts for environment conservation.
2: Our vision is captured in the idea of Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar. This vision recognizes that our futures are interconnected and interdependent, and we will continue to work together for a safer and more secure Indian Ocean region.
1: Prime Minister said it is a special honor to stand before everyone as the first Indian Prime Minister to address the National Assembly. He also thanked President and the people of Seychelles for honoring him with the Seychelles' highest distinction, the Guardian of the Blue Horizon, earlier in the day. Union Ministers Amit Shah, S. Jaishankar, Rajnath Singh, Piyush Goyal, Manohar Lal and Jitendra Singh congratulated Prime Minister Narendra Modi on being conferred with Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. Prime Minister, Modi has said that the power of public participation in nation building is one of India's greatest strengths. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today, Mr. Modi said this spirit was once again evident after he appealed to citizens to adopt certain measures in view of the prevailing warlike situation in West Asia. Mr.

0: में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदिना गदितं यत् देशे अन्ये केचन महत्वपूर्णाः प्रयासाः विधीयन्ते। अस्मिन्नेव क्रमे देहल्यां स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डेटा साइंस इत्यादिषु आधुनिक विषयेषु बीटेक पाठ्यक्रमस्य शुभारंभं विदधाति।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी सहर्षं न्यगादीत् यत् अद्य भारतीय संस्कृतिः विश्वस्मिन् हि विश्वे प्रसरति। श्री मोदी गौरवान्वितः अस्ति यत् भारतेन अस्मिन् मासे देशस्य सुरक्षायाः आत्मनिर्भरतायाः च क्षेत्रे महती सफलता समर्जिता। सः कोलकाता नगरे आयोजितम् एकं नौसेना संबंधी कार्यक्रमं संबोधितवान्, यत्र INS दुनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रयश्च भारतीय नौसेनायाः क्षेत्रे समाविष्टाः। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारतं समुद्रतः आकाशपर्यन्तं उत्तरोत्तरं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति।
0: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
1: मोदिना अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य अपि उल्लेखो विहितः। तेन अहमदाबाद नगरे आयोजितायाः विश्व योगासन प्रतियोगितायाः विषये कथितं यत् अस्यां भारतेन 2,100 स्वर्ण पदकैः सह आहत्य 14,100 पदकानि विजितानि। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यत् राष्ट्रनिर्माणे जनसहभागितायाः शक्तिः भारतस्य कृते एका महती सम्पत्तिः वर्तते।
0: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: अनेन सहैव श्री मोदिना प्रोदीरितं यत् आगामी गणेशोत्सवाय गणपति बप्पा भगवतः प्रतिमा अनिवार्य रूपेण अस्यैव देशस्य मृत्तिकायाः भवेत्, सा च स्थानीय कुम्भकारैः शिल्पीभिः विनिर्मिता स्यात्। तेन मूर्ति निर्मातारः अपि अनुरुद्धाः यत् ते मृण्मय मूर्तीणां निर्माणाय एव प्राथमिकतां दद्युः। स्वीय सम्बोधनस्य चरमे सोपाने प्रधानमन्त्रिणा जलसंरक्षणस्य विषये च बलं प्रदत्तम्। तेन कथितं यत् वर्षाजलस्य एकैकोऽपि बिन्दुः संरक्षणीयः वर्तते। श्रीमोदिना विशेषरूपेण गदितं यत् जलसंरक्षणार्थं कैच द रेन अभियानस्य वेगः मन्दो न भवेत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेशेल्स देशस्य राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी च अद्य अपराह्णे विक्टोरिया नगरे

0: द्विपक्षीय वार्ताम् अकुरुताम्। उभौ नेतारौ द्विपक्षीय सहयोगस्य सम्पूर्ण क्षेत्राणां समीक्षां कृतवन्तौ। सहैव पारस्परिकहितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च स्वस्व मनोगतं विनिमयी कृतवन्तौ। तस्मात् पूर्वं सेशेल्स् देशेन प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने पर्यावरण नेतृत्वस्य सर्वोच्च सम्मान गार्ड्स् आफ् दि ब्लू होरिजन् प्रदत्त। संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अयं गार्डियन आफ् दि ब्लू होरिजन् सम्मानः मम कृते अथ भारतस्य नागरिकाणां कृते परम गौरवस्य विषयो वर्तते। प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् द्वयोर देशयोर दूरत्वं न्यूनीकर्तुं डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रभावपूर्णं माध्यमं वर्तते। तेन एतदर्थं प्रसन्नता प्रदर्शिता यत् अद्य सेशेल्स् देशे भारतस्य UPI तन्त्रस्य प्रवर्तनाय एकस्मिन् सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं क्रियमाणमस्ति। विदेशमन्त्रालयेन भारतीय नागरिकाः परामृष्टाः यत् सम्पूर्णयात्रायाः कृते आवश्यकानि सर्वाणि यात्रापत्राणि विना कैलाशमानसरोवरयात्रा न क्रियन्ताम्। केचन भारतीय तीर्थयात्रिणः नेपाले अवरुद्धाः अभवन्, सहैव साहाय्यार्थं प्रार्थितवन्तः। एतां घटनामुद्दिश्य विदेशमन्त्रालयेन एषः परामर्शः प्रख्यापितः। पश्चिमेशिया क्षेत्रे सुरक्षा स्थितिः पुनरपि गभीरा जाता। अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये विद्यमानः युद्धविरामः खण्डितः। गतकतिपय होरासु च उभय पक्षाभ्यां परस्परं नूतनानि सैन्याक्रमणानि कृतानि। तेहरानेन वाणिज्यिक तैलवाहकपोतस्य उपरि ड्रोणाक्रमणं विहितमिति आरोपं विधाय अमेरिकया होर्मुज जलसन्धेः समीपे स्थितेषु दशसु ईरानी सैन्यस्थानकेषु वायुप्रहाराः कृताः। अद्य महिला विंशति प्रतिविंशति विश्वकप क्रिकेट स्पर्धायाः समूह ए इत्यस्य चरम स्पर्धायां भारतं ऑस्ट्रेलिया दलेन सह स्पर्धिशिष्ट। एषा स्पर्धा लण्डन् नगरस्य लॉर्ड्स क्रिकेट क्रीडाङ्गणे भविष्यति। स्पर्धा भारतीय समयानुगुणं सायं 7:30 आरभ्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि आज देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मजबूत हो रहा है।
2: C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि योग दिवस को दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगह

0: समारोहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने पिछले दिनों पश्चिम एशिया में बने युद्ध के हालात के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति बीमा का उल्लेख करते हुए योजनाओं की प्रगति और इनके लाभों की जानकारी दूसरे लोगों तक साझा करने की अपील की। श्री मोदी ने एआई टूल्स को देश की संस्कृति और भारतीय ज्ञान तथा भाषाओं के संरक्षण के काम में लिए जाने पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के कई भागों में गांवों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने आगामी महीनों में गणेश उत्सव की तैयारियों में लगे मूर्तिकारों से मिट्टी से बनी मूर्तियां बनाने और खरीदारों से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां नहीं खरीदने की अपील भी की। मन की बात कार्यक्रम सुनने को लेकर प्रदेश भर में लोगों में खासा उत्साह रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपने निवास पर सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ ये कार्यक्रम सुना। वहीं पाली, बाड़मेर और जैसलमेर सहित विभिन्न स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। इस दौरान जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रूपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: उन्होंने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को और मजबूत करने और गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों से सुझाव और नए विचार आमंत्रित किए। इस अवसर पर श्री चौहान ने ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया। ये पोर्टल जोखिम आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षाओं सहित आंतरिक लेखा परीक्षाओं के संपूर्ण प्रबंधन के लिए एकीकृत डिजिटल मंच है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा के पचपदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर आज रिफाइनरी का अवलोकन किया। श्री शर्मा कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जोधपुर में एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल का मुआयना भी किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी आगामी 4 जुलाई को इस नए टर्मिनल का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ इस दौरान जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई को प्रस्तावित दौरे की तैयारियों के तहत बालोतरा जिले में 7 दिन का विशेष स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन आज प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और विधायक अरुण चौधरी सहित जनप्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरिस्का बाघ परियोजना आज दुनिया की सफल बाघ पुनर्स्थापन कार्यक्रमों में गिनी जाती है। वर्तमान में यहां बाघों की संख्या बढ़कर 56 हो चुकी है। आज अलवर के

यूनेस्को में बाघ पुनर्स्थापन अवसर और चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ये कार्यशाला ऐसे समय आयोजित हुई है जब सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापन

0: उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लक्ष्य सरकारी प्रयासों के साथ जन भागीदारी से संभव है। श्री बिरला आज कोटा के दादाबाड़ी क्षेत्र में रेंडल पार्क में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक नागरिक अपने घर, गली, पार्क और मोहल्ले को स्वच्छ रखने के साथ पौधरोपण और उनके संरक्षण का संकल्प ले तो कोटा सबसे स्वच्छ और हरित शहरों में अपनी अलग पहचान बना सकता है। उन्होंने लोगों से पर्यावरण के अनुकूल जीवनचर्या अपनाने और पौधरोपण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया।
1: पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली लोगों की हो और इसको हम जन आंदोलन बनाएं। मुझे आशा है कि कोटा बूंदी की जनता अपनी दिनचर्या के अंदर भी पर्यावरण के अनुकूल दिनचर्या करेगी और सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाकर उस पेड़ को संरक्षण भी करेंगे, उसको बड़ा भी करेंगे और अपने शहर, गली, गांव को स्वच्छ रखने के लिए संकल्प भी करेंगे।
0: लोकसभा अध्यक्ष ने रेंडल पार्क में उपलब्ध खेल सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोटा में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए युवाओं में जागरूकता बढ़ रही है। इसी कड़ी में पाली जिले के सुमेरपुर में मॉनसून के आगमन से पहले युवाओं ने बड़ी संख्या में सीड बॉल्स तैयार की है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: इन सीड बॉल्स को मानसून के दौरान अरावली की पहाड़ियों और जंगलों में डाला जाएगा। बारिश के बाद सीड पौधों का रूप लेंगे। सीड बॉल्स में अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली देशी प्रजातियों जामुन, अमलातस, उमटा, खेर, देसी बबुल, गुंदा और जाल के बीजों का उपयोग किया गया है। साथ ही उपजाऊ मिट्टी और देसी खाद के मिश्रण का उपयोग किया गया है, जिससे बीजों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। युवाओं की यह पहल जंगलों के विस्तार के साथ साथ पक्षियों, वन्य जीवियों और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: प्रदेश सहित देशभर में आज से 3 दिन के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई जा रही है। प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। प्रदेश भर में 59,000 से अधिक बूथों पर पहले दिन ये दवा पिलाई गई। अगले 2 दिन अब स्वास्थ्यकर्मी आज पोलियो की दवा से वंचित रहे बच्चों को घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। गौरतलब है कि भारत में साल 1995 में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। बीते 15 वर्षों में देशभर में कोई भी पोलियो का नया केस सामने नहीं आया है। 27 मार्च 2014 को भारत को पल्स पोलियो मुक्त प्रमाण पत्र मिल चुका है। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियों में फिर से कुछ कमी आई है। इस बीच तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। उधर चूरू में दिनभर की तेज गर्मी के बाद आज शाम को बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं सिरोही और आबूराज में दिनभर बादल छाए रहे। मौसम केंद्र जयपुर ने जुलाई के पहले सप्ताह में प्रदेश के कुछ स्थानों पर प्री मॉनसून की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सरिस्का में बाघ पुनर्स्थापना के 18 साल पूरे हुए। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, बाघ संरक्षण में राज्यों के अनुभवों का आदान प्रदान भविष्य की संरक्षण रणनीतियों को मजबूत करेगा। और प्रदेश में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन आज 59,000 से अधिक बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। जिले भर में आज पल्स पोलियो राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। 3 दिन के इस अभियान में सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर भी

0: ट्रांजिट बूथ स्थापित किए गए। आज दवा पीने से छूटे बच्चों को अगले दो दिन घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिले भर में उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय मुख्य आयोजन मान क्लब फुटबॉल मैदान में रखा गया, जहां प्रभारी सचिव पीसी किशन और जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन ने योगाभ्यास किया। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित योगाभ्यास तथा ध्यान शिविर में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं के साथ स्टेट बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों ने योगासन किए। इसी तरह केंद्रीय कारागार श्यालावास में भी योगाभ्यास तथा ध्यान सत्र रखा गया, जिसमें बंदियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं का 3 दिन तक मुख्यालय के प्रभारियों के दलों द्वारा सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान दवाइयों, उपकरणों की उपलब्धता और प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिले की स्वास्थ्य सेवाओं का फीडबैक लिया गया। नशा मुक्ति दिवस पर जिले में जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पुनर्वास के जरिए नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जिले भर में इन दिनों शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए लोगों को विभिन्न योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिविरों को लेकर आमजन में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इन शिविरों में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जन प्रतिनिधि भी निगरानी और निरीक्षण कर रहे हैं। रामगढ़ पचवारा नगर पालिका में आयोजित शिविर में बरसों से मुख्य बाजार की समस्या का हाथों हाथ समाधान होने से लोगों ने राहत की सांस ली। इसी तरह बांदीकुई, बसवा, सिकराय, महवा, मंडावर और लालसोट ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में भी शिविर आयोजित किए गए। कृषि विज्ञान केंद्र दौसा में पिछले दिनों जैविक खाद से समृद्ध मृदा, आय वृद्धि और पर्यावरण संतुलन विषय पर किसान गोष्ठी रखी गई। संगोष्ठी में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को संरक्षित और उर्वरक खेती की जानकारी प्रदान की। किसानों को मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। जिले में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की पिछले दिनों लॉटरी निकाली गई। योजना के तहत दौसा जिले के 1300 वरिष्ठ नागरिक विभिन्न तीर्थ स्थलों की निशुल्क यात्रा करेंगे। इनमें से 1150 से अधिक को रेल और 142 को हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण कर सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्मिकों से किसी भी आपात स्थिति में हर समय तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति के चेक वितरित किए गए। रीनीट यूजी परीक्षा 21 जून को जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 4000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को सुचारू और सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए। जिला कलेक्टर ने नीट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में मुहर्रम पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पारंपरिक आयोजन हुए। कई जगह जुलूस की शक्ल में ताजिए निकाले गए। शाम को मातमी माहौल के बीच ताजियों को करबला में सुपुर्द खाक किया गया। निर्जला एकादशी पर जिला मुख्यालय सहित जगह जगह धार्मिक गतिविधियां देखी गईं। दान पुण्य के आयोजन हुए। लोगों ने पानी, शरबत और पेय पदार्थों के साथ भंडारे लगाकर पुण्य कमाया। ज्येष्ठ महीने में जिले में मौसम ने कई रंग दिखाए। कभी बरसात तो कभी तेज गर्मी ने जिलेवासियों को प्रभावित किया। इस दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों से कई जगह नुकसान भी देखा गया। इसी के साथ दौसा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कयो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय गांवाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा नजरिया ने साकार करण माए गांवारी भूमिका ने महत्व बताया है। सरिस्का माए भाग पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा विया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव कयो बाघ संरक्षण में राज्यारे अनुभव ने साझा करणु भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने

0: मजबूत करेला। और प्रदेश में तीन दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रे पहले दिन आज 59,032 बूथा मा थे 5 साल तहरा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जी। समाचार रे साथे मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत समुद्रों लेर आकाश ताई बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। आज आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी कहो कि जून महीना में स्वदेशी C-295 विमान री पहली उड़ान रे साथ ही भारत विमानन हल्का में एक मोटी कामयाबी हासिल करी है। वर्णा कहो के आज देश में रोजगार रा मौका बद रिया है और आत्मनिर्भर भारत रो संकल्प मजबूत वे रियो है।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करता कहो कि योग दिवस दुनिया भर में मनाई जियो। इ बार वो आयोजन 2,832 ठोड़ा माथे वियो। भारत में करोड़ों लोग योग दिवस में भागीदारी करी। श्री मोदी लाडला दिना आथूणी एशिया में बनिया युद्ध रा हालात रे दौरान वारी अर्ज माथे देशवासियों रा समर्थन और सहयोग सारू आभारी जतायो।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: श्री मोदी हमारी सरकार का न्यू शुरू करी जी नवी सामाजिक हिफाजती योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और PM जीवन ज्योति बीमा योजना रो जिक्रो करता योजना री प्रगति और इनरा फायदा री जानकारी दूजा लोगों तय साझा करने री अर्ज करी। श्री मोदी AI टूल्स ने देश री संस्कृति और भारतीय ज्ञान और भाषाओं रा संरक्षण रा काम में लिया जावण माथे न्यारी नारी शैक्षणिक संस्थावां ने शुभकामना दी। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान रे तहत देश रा कई हल्का में गांवां ने साफ सुथरा बनाया राखण सारू करी जा रही कोशिशां रो जिक्रो करियो। वणा आवता महीना में गणेश उत्सव री तैयारियां में लाग्या मूर्तिकारों माटियों बनी मूर्तियां बनावण और खरीददारों प्लास्टरों पेरिसों बनी मूर्तियां नी खरीदण री अरज करी। मन की बात कार्यक्रम सुनण ने लेर प्रदेश में लोगों में खासो उमाव नजर आयो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में आपरा रहवास माथे सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा में चुनी जा उम्मीदवारों रे साथे ओ कार्यक्रम सुनियो। श्री शर्मा कहो कि प्रधानमंत्री रा संबोधनों आमजन ने देश में वेरिया सामाजिक सरोकारों जुड़िया नवाचारों री जानकारी और उनने अपनावण री सीख मिले है। पाली बाड़मेर जैसलमेर समेत न्यारा न्यारा ठोडा माथे मन की बात कार्यक्रम ने भेड़ा सुनी जा। इस दौरान जन नुमाइंदा और आम लोग मौजूद रिया। गांव वाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा नजरिया ने साकार करण में गांवारी महत्व भूमिका बताई है। वे आज नई दिल्ली में VR राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में बोल रहा है। श्री चौहान कहो कि गांव वाई विकास में तेजी लावण सारू विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत राज्यों रा योगदान समेत 1,51,000 करोड़ रुपयों बत्ती रो बंदोबस्त करी जो है।
2: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बालोतरा रा पचपदरा माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा तय दौरा ने लेर रिफाइनरी ने देखा। श्री शर्मा कार्यक्रम री तैयारियां ने लेर एहलकारा ने लेर मीटिंग कर रिया है। इनो पहला मुख्यमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट रा नुआ टर्मिनल भवन रोही जाए जो लियो। ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਵਣਾ

राजमाए आखे दिन बादल छाई जा रिया। मौसम केंद्र जयपुर जुलाई रा पहला हफ्ता माए प्रदेश रा कुछ थोड़ा प्री मानसूनरी गतिविधियां माए बढ़ोतरी री घनी आस जताई है। पहली रा प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव री जयंती माथे राष्ट्र आज वाने श्रद्धांजलि अर्पण करे। नरसिम्हा राव 90 रा दशक माए दुनिया माए संकट और मंदी रा दौर माए भारत ने हिफाजती बारे राखण सारू कुशल प्रशासक रा तौर माथे याद करिया जावे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया रा संदेश माए कहो है कि देश रा एक महताऊ दौर माए श्री राव भारत री प्रगति माए अमूल योगदान दियो। मैं अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो स्वदेशी रक्षा उत्पाद माथे ध्यान देवता भारत बत्ती हिफाजती और आत्मनिर्भर बन रियो है। केंद्रीय गांवाई विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान विकसित भारत 2047 रा निजरिया ने साकार करण माए गांवारी भूमिका ने महताऊ बताया है। सरिस्का माए बाघ पुनर्स्थापना रा 18 साल पूरा विया। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव कहो बाघ संरक्षण माए राज्य रा अनुभव ने साझा करणु भविष्य री संरक्षण रणनीतियां ने मजबूत करेला। और प्रदेश माए 3 दिन रा राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान रे पहले दिन आज 59,032 बूथा माथे 5 साल तई रा टावरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जी। इन साथ ही प्रादेशिक समाचार और उपदेश ने पूरो यो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवार 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करो जायला। नमस्कार। We'll be right back.

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: बाप मोवे, और वे सारा कष्ट झेल के वो परिवार ने हमेशा है जी को आगे बढ़ावे। बिक बाद में आवे भाई को नंबर, भाई है हर मुसीबत का मायने भाई काम आवे, जिसो पड़ोसी बिल्कुल भी काम को नहीं आवे। तो ए विश्वास की नींव ने अपन मजबूत राखनी है। और जब भाण की बात आवे मोहन भाई, तो भाण है बा खुशियां को अनमोल खजानो है, और ई खजाने ने अपन जन्म से लेके और आखिरी तक अपन ने निभाने की कोशिश है बा पूरी करा। बिक बाद आवे के जीवन साथी, अब जीवन साथी की जब बात चले, भी थारे भी है जीवन साथी, मारे भी है जीवन साथी, अपने सामने बैठे है अपना अनाउंसर महोदय, बांके भी है जीवन साथी, तो बा है दिन के जद उठने की बात आवे तो बस सब पहला उठ की आपको काम बाद में, पहला आपके टाबरा की, चाहे बा स्कूल हो, चाहे कोई काम करनी हो, चाहे ऑफिस जानी हो, या और कोई कोई जॉब है वो कर रहे है, तो शुरुआत भी की काम से हुए, और रात में जब तक सारे घर का खानो नहीं खावे, जब तक भी क्या जिम्मेदारी रहे कि मेरे परिवार का सारा सदस्य बढ़िया खानो खावे, बढ़िया सुकून मिले, और सद बढ़िया खानो खा कि परिवार के मायने जब विश्वास की नींव मजबूत होवे, तो बा दिन भर को काम सारो जिको करेड़े काम की थकान न बा भूल कर एकदम यू सुकून की जिंदगी है बा जीव है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखो बहुत बढ़िया बात बताई। और देखो कार्यक्रम भी आपनों खेती और गृहस्थी है, खेती का सागर सागर गृहस्थी भी बहुत जरूरी है, परिवार को इकट्ठो रहना भी जरूरी है। बात गृहस्थी की करियर, बात अब आप करा खेती की, खेती का नहीं बढ़ना, तो आ दिनांक में देखो देखने में आयो कि जलवायु परिवर्तन है जो बहुत तेजी के साग हो रही है, जो को मौसम आज सा अपने कई वर्षा पहली रहा कर तो भी बहुत सारो परिवर्तन आ गयो। आज अगले देखने में आओ कि जो हर कदी मे छांटा जा, हर कदी आंधी उल्डो आ रही है, मौसम में बहुत सारो परिवर्तन हुए, सर्दी गर्मी के महीने भी परिवर्तन हो गयो, पहले के जिसा कौन रहा। तो ई मौसम परिवर्तन की जो की प्रभाव है वो आपने पर तो पड़े, अपन सागर सागर फसलों पर भी पड़ रही।
0: बिल्कुल,
1: फसलों के मायने जो पूरी प्रभावित हो रही है, फसल उत्पादन है बीमा कमी आ रही है, रोग कीट है, अचानक मौसम परिवर्तन हो तो बे तो होना ही है। जी टाइम गर्मी की जरूरत हो भी टाइम गर्मी पड़े जोर की, जी टाइम में छांट की जरूरत हो जी टाइम में छांट आवे, और अगर टाइम से नहीं हो रहा है तो बाद में रोग कीट ये सारी चीजा तो देखो फसल के मायने दिक्कत आ रही है, समस्या तो सामने आ रही है। तो आ समस्या ने देखते हुए आजकल भाई आपा मौसम पर तो आपनो बस कौन चले, बिंदु कौन बदल सका, पण आपा जगी खेती करन लाग रहे हैं, जगी तकनीकी है, जगी विधि है, बिंदु बदल सका, खेती के तरीके में थोड़ा बहुत बदलाव कर सका, और जगह बहुत सारा किसान भाई है जगी ए नई विधिया नई तकनीक आ रही ने अपनान लाग रहे है, तो मौसम तो आपा नियंत्रित कौन कर पा रहा, पण आपा खेती के मायने एक संरक्षित खेती को जो मॉडल है बिन अपना लिया, संरक्षित खेती खेती को एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीको है। ई मॉडल के तहत अगर आप जब खेती कर रहे हैं तो आप मौसम ने अनुकूल वातावरण तैयार करा, यानी बात कर रही हूं मैं ग्रीन हाउस जगह पोली हाउस आप तैयार करा, तो बांक मायने जो वातावरण है वो तो आप नियंत्रण कर सका, आपने जो फसल है भी अनुकूल भी हिसाब से डाल सका, तो वो अगर आप करांगा तो फसलों के मायने बीमारियां कम लगेगी, वातावरण जो नियंत्रण रखू, उत्पादन है वो ज्यादा होगा, खरपतवार है वो कम होगो, रोग और कीट है बस आप बच पावांगा, तो ये सारी चीजा आप अपनावांगा जद संरक्षित खेती, जद आपने आ सारी चीज को लाभ मिलेगो। तो पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की बात कर रही हूं मैं, और अपनी सरकार है बा भी देखो आपने बहुत सारे इनमें सहायता करे, अगर कोई किसान भाई ने करना चाहो तो भी मायने सब्सिडी भी मिला आपने, राजस्थान के मायने जहाँ ग्रीन हाउस आप योजना है कृषि विभाग है जो इन्हें संचालित करे, ग्रीन हाउस के मायने जगह ए सेड नेट हाउस है बनाया जावे, एक मायने सब्सिडी भी मिले। सब्सिडी की बात करूं तो सब्सिडी इस हाउ मिले कि जिया सामान्य श्रेणी को आपनों कोई किसान है तो बिन कुल लागत का 50% तक सब्सिडी मिल जाए, यानी छूट मिल जाए, सहायता मिल जाए। छोटो या सीमांत किसान है या SC/ST श्रेणी को किसान है तो बिना 70% तक एक मायने

0: छूट मिला है। और ग्रीन हाउस पर सब्सिडी को लाभ अधिकतम 4000 वर्ग मीटर के क्षेत्र तक ही मिलेगा, यानी आप इस ज्यादा क्षेत्रफल काम में ले रहे हैं तो बित्तो को मिलर कम ले रहे हैं तो वो भी हिसाब से जितो है बित्तो मिलना ही है, पर 4000 वर्ग मीटर तक ही मायने लाभ मिल सके। तो आपने किसान भाई के लिए देखो बहुत बढ़िया योजना है।
1: देखो कार्यक्रम में थे जल परिवर्तन की बात करी, मौसम परिवर्तन की बात करी, परिवर्तित मौसम का मायने कदे बिरखा आगी, कदे बहुत तेज धूप होगी, कदे आंधी आगी, कदे ओला पड़ गया, कदे बिरखा ही कोनी हुई। तो पॉली हाउस में देखो मोहन भाई बहुत फायदो है कि अगर सिंचित क्षेत्र का मायने आप पॉली हाउस को प्रयोग कर रहा तो आप अत्यधिक पानी को दोहन कर रहा बीस आप रुक जावा, क्योंकि पॉली हाउस जब आप लगा दियो तो नमी भी मायने कई दिन तक बरकरार रहेगी। जब नमी कई दिन तक बरकरार रहेगी तो अपनी फसल को उत्पादन है वो अपन बढ़ के मिलोगो बिक सागे सागे पॉली हाउस को। दूसरा फायदा होगा कि बेमौसम की जिकी आप सब्जियां ले रहा हूं, बेमौसम का आप फल ले रहा हूं, बेमौसम का आप फूल ले रहा हूं, तो बाकी कीमत अपन बाजार का मायने सीजन का ने छोड़ के थोड़ा सा आप आगे चला तो बिक अपन लागत है बिस तीन गुना अपन ज्यादा मुनाफो है बा देवे, क्योंकि जब बाजार के मायने नई सब्जी बिना मौसम की सब्जी जब आसी तो हर एक ग्राहक को मन चालसी का आज तो आ सब्जी है ये आ तो सीजन में आया करती आ बिना मौसम की सब्जी है तो क्यों ना आप आए की खरीदारी कर ले। जब वो खरीद सी तो वो ओणा पोणा भाव में खरीद की आपके देखिए जीभ के स्वाद के खातर वो खरीद सी, तो पॉली हाउस को वो भी है जी को बड़ो फायदो है। पॉली हाउस के मायने जी आते कार्यक्रम में बात करी के खरपतवार, खरपतवार देखो बिल्कुल नए के बराबर होगो, क्योंकि खरपतवार ने पोषण को मिलेगो, पोषण नहीं मिलेगो तो खरपतवार है जी को भटे है जी को नष्ट हो जाओगो। दूसरो फायदो हो गयो के एक तो नमी कई दिन तक बरकरार रहोगी, खरपतवार पर नियंत्रण हो जाओगो। तीसरो फायदो आपने बिना मौसम की कोई भी आप सब्जी फल फूल उत्पादन लिए है तो भी का भाव आपने चोखा मिल जाओगे। तो एक सागे सागे सरकार किसान आगे सागे खड़ी कार्यक्रम में बात करी कि सब्सिडी की कभी 50% तो 70% की सब्सिडी है बा सरकार है बा देवे लाग रही है, 50% तो सामान्य किसान ने और 70% है वो एस सी एस टी के किसान ने, तो वो भी एक सरकार को बड़ो बड़ी योजना है। सरकार बहुत सारी किसानों के लिए कल्याणकारी योजना शुरू कर रखी है, बिग माइन आ एक योजना भी शामिल है, तो क्यों ना आपा सरकार के सागे खड़े हो कि जलवायु परिवर्तन में होने आ रहा जी का नुकसान है भी की भरपाई आपा है जी का कर सका।
0: बिल्कुल देखो आपा योजना के बारे में बता दी, सब्सिडी के बारे में बता दियो और के लाभ अपना किसान भाई ले सके बिना मौसम की जगह सब्जी है फल है फूल है इसी चीजों को उत्पादन करके और लाभ आपको दो गुना तीन गुना तक कमा सके, ऐसी सारी बात करी आपा। पर किसान भाई पात्र कौन है के लिए और किया भी आवेदन कर सके बा बता दू। तो पात्रता के लिए जो भी किसान भाई ई योजना से जुड़ना चाह रही है आपके खेत में पॉली हाउस या ग्रीन हाउस लगा रही है तो सबसे पहले तो बिगन सिंचाई को साधन हो और किसान के करना खुद की जमीन हो यानी जमीन को मालिक खुद हो वो, फिर आवश्यक कागज जगह पे आवेदन करने के लिए चाहिए तो जमाबंदी चाहिएगी, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड चाहिए, खेत की माटी और सिंचाई के लिए जो पानी वो काम में ले दोनों की जांच चाहिएगी, जांच रिपोर्ट चाहिएगी, तो माटी की भी जांच करा ले और पानी की भी जांच करवा ले। सब्सिडी के तहत जकी अनुमोदित फर्म है यानी सब्सिडी लेने के लिए जकी फर्म है भी को कोटेशन चाहिए, सिंचाई को प्रमाण पत्र चाहिए सिंचाई कर रहे अभी को, और किसान की श्रेणी को प्रमाण पत्र चाहिए यानी किस श्रेणी को किसान है, सामान्य वर्ग को एक छोटो किसान सीमांत किसान या एस सी एस टी वर्ग को, तो ये सारी चीज चाहिएगी। बी के बाद में आवेदन को तरीको यू है कि किसान भाई ई मित्र से या सीएससी सेंटर है बैंक माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सके। ई योजना के तहत आवेदन करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी है वह भी चाहिए, क्योंकि आप जब ग्रीन हाउस लगा रहे हैं तो बी के लिए मंजूरी चाहिएगी निर्माण शुरू करवाने के लिए। वे सारा काम होने के बाद में जब आप ग्रीन हाउस निर्माण करवा लेंगा तो एक समिति बने जगह बी की जाँच करेगी सत्यापन करेगी बाद में ही अपन जो सब्सिडी को सहायता राशि सारी प्रक्रिया है बैंक अपन ध्यान रखना आप प्रक्रिया से ओके गुजरेगा यो सारो काम। तो योजना तो देखो बहुत सारी चल है अपने किसान भाइयों के लिए, चाहे फसलों संबंधित हो चाहे पशुपालन संबंधित हो चाहे खुद के लिए हो।

0: पण बाम देखो थोड़ी कागजी कार्रवाई, थोड़ो बहुत फॉर्मेलिटी होवे तो बां के लिए तैयार रहे। आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, जन आधार कार्ड है, तो आ सारी जगह, एक तो आपकी जगह जन्म तारीख है बा सारी जगह एक सी होनी चाहिए, नाम खुद को, पिताजी को, आपको पतो है, बे सारी जगह एक सा होना चाहिए। तो थोड़ो आपका कागज है बा ना थोड़ा दुरुस्त करा लेवे, और बी के बाद में देखो कोई भी योजना है बी के मायने अपने किसान भाई जुड़ भी सके, बी को लाभ भी उठा सके, छोटा मोटा आवेदन करना है, आजकल ऑनलाइन हो लगा तो बे साबो आवेदन कर दे, और वो देखो बढ़िया ही है अपने लिए, क्योंकि प्रक्रिया जो भी है बी में सुधार होता जा रही है दिन प्रतिदिन, और पारदर्शिता भी आती जा रही है, खाता में सीधा पैसा आने लग रहा है किसान के, बीम ज्यादा बढ़िया और बीम ज्यादा पारदर्शिता और क्यों उसके।
1: बिल्कुल। देखो पढ़े लिखे समाज में रह रहे यार, पढ़े लिखे आपा मोहन भाई किसान हाँ, तो कागजां की पूर्ति है वो आपा जरूर करा। और अब देखो थारो में इशारो भी समझ रही हूं कि अब देखो आथन को बखत है, जब आखिर आथन के बखत खेत काम करके घरा बावड़ा, तो मोहन भाई थकान है वह दूर होवे। तो सुनाओ अपने इतालवा ने एक मीठो सो लोकगीत, सूरज ढल्यो दिन छिप्यो, सूरज ढल्यो दिन छिप्यो, दिवलो लियो जगाए, मारा प्रीतम कद आवे, नैन रहा पथराए।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: किसान भाई, आज संदेश पाछा आप कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है। इस संदेश में पहला है मोहन भाई, आप एक मीठी सी लोक रचना सुनी और इस लोक रचना के बाद में आप अपना कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और फिर आप बात करा अपनी खेती बाड़ी की।
2: बिल्कुल भाई, खेती बाड़ी की बात करो तो जी आप नवाचार की बात करा बार, तो अभी जी आप बात कर रहे हैं पोली हाउस ग्रीन हाउस की, खेती बाड़ी में बहुत सारा परिवर्तन आए हुए। तो एक अलावा अगर कृषि यंत्र की बात करा तो वे भी नित नया दिन नया आधुनिक कृषि यंत्र आ रहा है, जिसका सप्ताह में जो काम हो तो वो घंटा में निपटा रहा है, महीना में जो काम हो तो वो एक दिन का में निपटा रहा है। और विषय फायदो ये हो रही है कि अपनी खेती की लागत भी में कमी आ रही है, उत्पादन ज्यादा हो रही है, फसल ने साग सुरक्षा मिल रही है। लंबा टाइम तक आप कटाई को काम कर रहे हैं तो भी कितना टाइम तक अपनी फसल बढ़ी रहे खेत में, कद भी कोई अचानक तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, नुकसान हो उसके। और मशीनीकरण में जो नयोपन आयो है, जो कि नई नई मशीन आई है जिससे जल्दी काम हो जाए, तो जल्दी आप अनाज भी काट के ले जाओ। तो आज की आधुनिक कृषि है बे आधुनिक खेती है भी की मांग है का आप इन नवाचार के कारण बढ़ता रहो। और आ मशीनों को जो प्रयोग है निराई गुड़ाई खातर कटाई खातर इशा कामा खातर करियो जावे, जी आधुनिक कृषि यंत्र की बात करा तो रोटावेटर आवे एक पावर वीडर, तो वो क्यों है माटी की जुताई करने में काम आवे, माटी ने भुरभुरी बनाने में काम आवे, और फसल के बीच जो को खरपतवार है जो को निराई गुड़ाई को काम है वो इसे हो जावे। तो एक ही मशीन है देखो तीन काम हो जाए, आपने जो निनाना रो काम है सब मोटो काम है सब ज्यादा टाइम लगे, पर आ मशीन आपने को न हो तो देखो वो काम भी हो रही है, जुताई को काम भी हो जाए, माटी ने भुरभुरी करना यानी पहली आप जब तैयार करा तो वो काम भी हो जाए और जल्दी हो जाए, बहुत ज्यादा टाइम कौन लगा अपन काम करने में। ई एक और मशीन को नाम बताऊं जी है लेजर लैंड लेवलर, यानी यहाँ लेवल करने का काम आवे। तो आ मशीन की वजह के जो खेत है वो एकदम समतल कर दे, जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो सारी फसल न पानी लागे और पानी में कमी भी आवे, यानी एक तो उबड़ खाबड़ जमीन हो पर आप सिंचाई को काम कर रहे हैं और एक इसे समतल या लेवल करके कर रहे हैं तो 30% तक की पानी की बचत भी हो और फसल का मायने उत्पादन है जो बढ़ है, क्योंकि सही से पानी खाद ला कौन पाओ ऊंचो उबड़ खाबड़ हो तो। और एक एकदम समतल मैदान हो, खेत ने एकदम समतल करके भी कमाई ने बुआई कर रहा तो ई मशीन ने काम में ले इसका। दूसरी बात करूं तो सीडकम फर्टिलाइजर ड्रिल हो एक, बी की मदद से आप बुआई करा बी कमाई ने आपनो बीज जो को निश्चित कितनी गहराई तक जानो चाहिए, चाहे खाद हो।

0: बीज हो तो एक बार भी मायने माप करके आप तैयार कर दियो गए आपने कितना सेंटीमीटर तक गहराई में देना है, 5, 3, 2 जो भी इंच भी हिसाब से, तो एक बार भी ने तैयार करके आप फिट कर दियो बीग मायने नाप, तो अपना आप भी नाप के मायने बीती दूरी के मायने बीती गहराई के मायने एकदम तरीका से बुआई होगी। तो इसी मशीन इसी चीजा आएगी कि खेती बाड़ी के मायने आप गलती होगी भाई एकदम तरीके से कर रहा। एक और थाने बताऊं, कंबाइन आवे हार्वेस्ट आवे या एक मशीन है जो कटाई के लिए मंडाई के लिए थ्रेसिंग के लिए या अपनी फसल है वह तैयार होने के बाद में भी हम दानों काटने के लिए इस चीजा का मायने काम आवे। ये जो कृषि ड्रोन है बी की बात करा तो ड्रोन आज आधुनिक खेती के मायने बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो लगो। शुरू में जब आयो आपने समझो नहीं आरियो कि क्या खेती बाड़ी में काम मिलिया, पर धीरे धीरे इका जितना लाभ अपन मिलन लाग रहा है कि अपन पानी छिड़काव हो ची दवाई कोई मतलब आप यूरिया को छिड़काव हो खेत की निगरानी करनी हुई कीटनाशक या रोग से संबंधित कोई जानकारी लेनी हुई तो उस सारा डेटा भी मायने एकत्रित कर लिया, यानी सारी जानकारी फसल की सारी जानकारी का मायने कंप्यूटर की तरह काम करे सारी जानकारी हो आपने जिस हिसाब से चाहिए भी हिसाब से वो सारी जानकारी अपन उपलब्ध करा देगा। फसल के हिसाब की आपने हो रही है कठक कम है कठक बेसी है घरा बैठे बैठे पूरी पर निगरानी कर सका आप कठक फसल है जी कमजोर पड़ रही है कठा आपने दवाई पानी की जरूरत है तो बस सारी चीजा की आपन जानकारी मिल जाए तो आधुनिक जगह ये कृषि यंत्र ये आपने किसान भाई देखो अपनाना भी चाहिए और सारा किसान भाई देखो खरीद कौन पावे क्योंकि ये जगह कृषि यंत्र है उसका महंगा भी हो तो खरीद नहीं पावे। तो गांव के मायने पंचायत के मायने सीएससी सेंटर कस्टम हार्विंग सेंटर खोले डाल रहा सरकार द्वारा कोई भी योजना के द्वारा उसके जिया कृषि मंत्रालय के द्वारा उसके जो को आजकल राजीविका योजना चल रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बी के तहत भी ये जगह सीएससी सेंटर है जगह लगाया जा रहा है क्लस्टर लेवल के ऊपर। तो सरकार की बहुत सारी योजना चल रहा कोई भी योजना के माध्यम से जगह सीएससी सेंटर लगा लिए बी के मायने सरकार को पिसो लागे और ये जगह कृषि यंत्र है ट्रैक्टर है या थ्रेसर है या ट्रॉली है या और भी जगह उपकरण आप बात करी ये उपकरण भी मैं खरीद के रख दियो ठीक है। बी के बाद में अगर कोई किसान भाई का नहीं है जगह का उपलब्ध है तो आपका काम मिले नहीं है जगह अनक किराए के ऊपर ले जा सके और किराए पर ले जाए कि आपका कन्ना खेत में काम ले सके। ड्रोन भी उपलब्ध हो जाए ये पंचायत लेवल के ऊपर ड्रोन दीदी नाम से जो राजीविका अभी जी योजना की बात करी तो भी ड्रोन दीदी नाम से भी योजना चल रहा तो गाँव में एक जन ड्रोन मिल रहा है तो वो सह खेता का मायने किराए पर ले जा सकर भी वो उपयोग भी कर सके।
1: बिल्कुल
0: तो सीएससी सेंटर वो और ही बढ़िया चीज है कस्टम हार्विंग सेंटर तो सारा किसान भाई का अगर ये यंत्र उपलब्ध नहीं हो सके तो बट से किराए पर ले जाके आपके खेत में काम में ले सके।
1: बिल्कुल देखो मोहन भाई खेती बाड़ी के मायने जो मशीनीकरण को युग आए है वो क्यों आए है कभी आप पुराने जमाने से आप पारंपरिक खेती बाड़ी करता आ रहा था परिवार में जिसका जनसंख्या कम होया करती जिया जिया जनसंख्या बढ़ी भैया भैया अनाज की ज्यादा जरूरत पड़ी और भाई बंटवारा में अपना खेत छोटा होता गया अब बांको पेट भरने के लिए अब खेती बाड़ी के मायने मशीनीकरण को युग आयो कभी खेत छोटा हो गया कम समय के मायने ज्यादा आप उत्पादन लेवा कम समय के मायने ज्यादा उत्पादन लेवा जब जाके जन को पेट भरे और कम समय में ज्यादा उत्पादन लेने में मशीनीकरण को बहुत बड़ा योगदान है। एक तो वह मीना की बिजाई है बा घंटा में ही हो जाया करती फिर जब मशीनीकरण में आप बिजाई कर दी भी कि 3 महीना का मायने आप लगभग 60 से 90 दिन का मायने आप अपने खेत में लाट लेवा लाट की जरूरत के अनुसार आप बेच देवा जरूरत को आप रख लेवा जरूरत के अनुसार बेचने के बाद में अपनी गृहस्थी की गाड़ी चल जावे और घर में जो बचेड़ो धान है वो अपना जिका सारा मिलजुल के परिवार का सदस्य है खा लेवा। तो पारंपरिक पद्धति ने छोड़ के आप मशीनीकरण के युग में आया निश्चित रूप से सरकार को एक मायने बहुत बड़ो योगदान रहे है। मशीनीकरण का योगदान में खेती बाड़ी है बा आज 2 से 3 फसल आप साल की लेवल आ गया पारंपरिक तौर तरीका अपना कि आप मिना ही तो उनटा से बिजाई करता फिर मिना ही आपने निनाड़ में लाग जाता फिर मिना ही आपने पाड़ने तोड़ने में लाग जाता फिर मिना ही आप जी को काटने में लाग जाता तो अपना समय है वो यूं ही बर्बाद हो तो और सिर्फ आप बरानी क्षेत्र के ऊपर निर्भर होया करता अब बरानी क्षेत्र से आप सिंचित क्षेत्र के ऊपर आ गया सिंचित क्षेत्र में भी साल में आप 2 तो फसल कम से

कम लेवा सागे सागा आजकल आप तीन फसला को उत्पादन भी है वो लेवल आ गया। तो तीन फसला को उत्पादन अगर आप अपने खेत से लेवल आ गया तो बिग मायने मशीन को बहुत बड़ो योगदान रहेगा। अगर मशीनीकरण अगर नहीं है अपना गने तो आप दो ही फसल लेनो अपने लिए बड़ो भारी काम हो जावे। तो मशीनीकरण होनो किसान के हित को रहे हो। अब थे कार्यक्रम में बात करी ड्रोन की। अब ड्रोन आ कौन कह सका आप पढ़िया लिखा को नहीं हर घर का मायने जिका जवान आपा 50 साल तक के किसान की आपा बात करा निश्चित रूप से वो किसान पढ़े लिखे है क्योंकि 50 साल की उम्र से पहला पहला लगभग है जिका अपना अभिभावक जागरूक हो गया कि क्यों ना टाबरा ना आपा शिक्षा है बात देवा। तो शिक्षा को जब महत्व समझा कोई नौकरी की तरफ चले गए कोई व्यापार की तरफ चले गए कोई खेती बाड़ी की तरफ चले गए कोई पशुपालन की तरफ चले गए तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए हर इंसान ने काम करना पड़े चाहे वह नौकरी हो चाहे खेतीबाड़ी हो चाहे पशुपालन हो चाहे खुद को व्यापार हो चाहे खुद को कोई और कोई काम हो। तो एक सागे सागे बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी की तरफ बढ़िया तो खेतीबाड़ी के मैंने नया तौर तरीका अपना की उत्पादन लेनो शुरू करो ज्या ज्या बनाने लालच आयो ज्या ज्या बनाने ज्ञान हो मशीनीकरण को मशीनीकरण अपनी खेतीबाड़ी के मायने आप इस्तेमाल कर लेवा तो एक तो समय की बचत पैसे की बचत और साल में 2 से 3 फसलां है बापा लेवल आ जावा। तो मशीनीकरण हमेशा ई टाइम किसान का हित को रहे और एको ज्यादा से ज्यादा आने वाले समय के मायने भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है वो खेतीबाड़ी में आपा ने अपने जीवन का मायने देखने मिले वो। अब आगे तो आज के वक्त का मायने आपा तो बाबी खेती बाड़ी देखी एक लोग महीना ही खेत में चला जाया करता आपा तो बाबी खेती बाड़ी देख रहे हैं कभी साल में 3-3 फसला लेनो शुरू कर दियो और आने वाली जी की जनरेशन है हो सके 5 फसला को समय है वो देख ले। तो मशीनीकरण ज्या ज्या बढ़ेगो खेती बाड़ी में निश्चित रूप से देखो नया नया प्रयोग हो कि नई नई फसलों का उत्पादन है वो अपना किसान भाई है लेनो शुरू कर देगा। मुन भाई बातचीत तो आप अपने इतालवा से और भी करेंगे एक बार फिर ले चलना गीत संगीत की ओर सुनावा एक मीठी सी लोक रचना।

0: किसान भाई, अभी आपने मीठी सी लोक रचना सुनी। इन लोक रचना के बाद में मोहन भाई अपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा। देखो फिर आप खेती बाड़ी की बात करा कि भाई अपने अंचल के मायने ज्यादातर अपना किसान भाई बरानी क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र भी है लेकिन बरानी क्षेत्र पर आप है जी का ज्यादा निर्भर हाँ। तो अब बरानी क्षेत्र की आप बात करा तो अपना ज्यादातर ग्वार, मूंग, मोठ, चूड़ा, तिल आंको उत्पादन है वो आप ले। अब अपन जरूरत है कि देखो अपने बिरखा हो भी गिर कोनी भी हुई, कट तो सड़को लागे और कटे है जी का रह गया, तो सड़को लागे बढ़ तो बह गया, अब रह गया जी का रह गया। अब उड़ीक करे कि कद मानसून की बारिश हुए और मानसून की बारिश के साथ ही आप है जी को हल लेके अपने खेत में चलना। अब आगे मन में विचार चले के अब आप क्या की बिजाई करा, जेठ निकल गयो बाजरो आप बीज कौन सका, गुआर बीजा, मूंग बीजा, मोठ बीजा, चूड़ा बीजा, तिल बीजा, यहां ऐसे मंजिस में है। अब ऐसे मंजिस दूर किया करा बापा कि भाई आपा ने अपने खेत की माटी की जांच करवानी चाहिए थी, बखत सारू आप करवा लेते तो अपने खेत में कौन सा उर्वरक की कमी और कौन सा उत्पादन आप है जी को ज्यादा ले सका, बस अपन पतो लग जाए तो करवा ली जी का। तो कह भी अपन तो मूंग गेरना, अपन तो चूड़ा गेरना है, अपन तो गुआर गेरनो है, अब बाजरे को रुझान तो कम हो गयो और कम है जी का लोग बीजे है। अब अपन उन्नत किस्म को चयन करना है, चाहे वह मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे चूड़ा हो, चाहे तिल हो, चाहे गुआर हो, उन्नत किस्म को चयन करके आप अपन खेत के मायने बिरखा प्रश्न के साथ गई है जी को बीजनो है। अब भेड़ चाल अपन चालनी को नहीं है कि सगड़ा क्या आप मूंग मूंग बाज दिया, सगड़ा आप मोठ मोठ बाज दिया, सगड़ा आप गुआर गुआर बाज दिया। थोड़ो सो आप खेती बाड़ी में परिवर्तन करा तो जी का खेत बिजाई कर ली, चाहे मूंग की कर ली तो भी को अवशेष अपने खेत के मायने पड़ सी, पड़कर वो समय के अनुसार वो गरजे सी तो अपने खेत की उर्वरा शक्ति है वह बढ़ सी, तो अगली जो भी आप फसल ले सिया तो उत्पादन है वो अपन बढ़ के मिल सी। तो इस बार अपन जो भी आप फसल ले रहे हैं पिग महीना अपन है उन्नत बीज और उन्नत खेती अपना की है जी को अपन बिजाई करनी है।
1: बिल्कुल, देखो बढ़िया बात बताई। और बात थे चौड़ा की करा, तो चौड़ा की खेती के बारे में बताऊं, चौड़ा की खेती के मायने भी आपने उन्नत खेती के जरिए से कम लागत में आपने किसान भाई है जो कि शानदार मुनाफा है जो को कमा सके बढ़िया उत्पादन से। बिया तो चौड़ा की फसल की आप बात करा तो प्रोटीन से एकदम भरपूर हो और दलहनी फसल हो। जलवायु की बात करा तो आपनों जो को वातावरण है वो के लिए
0: बहुत बढ़िया है,
1: अनुकूल है। बिया तो देखो सारी प्रकार की माटी के मायने एक बुआई हो सके, पर सबसे बढ़िया अगर माटी की बात करा तो दोमट जो की मिट्टी हो बाई के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहे। और आप जब खेत के पीएच मान की बात करा तो 6 से 7 के बीच में इके लिए एकदम बढ़िया रहे। मौसम की बात करिए आप तो गर्म और आद्र जलवायु के मायने की जरूरत रही है, यानी आपनों जो वातावरण वो एक अनुकूल है एक बुआई हो सके। बुआई के सही समय की बात करा तो खरीफ के मायने जी अभी थे बात कर रहे तो जून के प्रथम सप्ताह से लेके और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक की बुआई हो सके जब बारिश चालू हो जाए। और जायद की फसल की बात करा तो फरवरी से मार्च के बीच में लेगी बुआई कर सका। और रवि का महीना आपने का तो होगा को नहीं, दक्षिण भारत का महीना करे तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में बुआई कर सके है ना। तो भी तो तीनों सीजन में हो सके, पर आपने दो ही सीजन के महीने की बुआई ज्यादा हो। उन्नत किस्म की थी बात करी तो एक मैंने उन्नत किस्म बता दियो था ना, पूसा कोमल नाम से एक उन्नत किस्म आएगी जो कि लगभग 50 से 55 दिन का मायने तैयार हो जाए।

0: अरी फली की उन्नत किस्म आ जकी रोग प्रतिरोधक है। एक मैं जगह सामान्य रूप से जगह रोग लाग जावे तो आ रोग प्रतिरोधक है। अगर आ किस्म आप अपनाओ पुसा कोमल तो एक मायने रोग लागने की संभावना बहुत कम है, पहले से उपचारित हो गया। ठीक है, दूसरी जकी किस्म है भी की बात बतावा तो बा है पुसा दो फसली। आ किस्म 45 से 50 दिन के मायने तैयार हो जावे। आ तीनों मौसम के लिए उपयुक्त है। जकी आप तीन बात करी की तीन मौसम में बुआई हो सके तीन सीजन में, तो तीनों के लिए उपयुक्त है। और तीसरी किस्म बताऊं पुसा ऋतुराज, जकी आपने अठे की दो जकी होवे, एक तो खरीफ आरी एक जायदारी, बा दोनों टाइम के मायने आप की बुआई कर सकें भी के लिए उपयुक्त है। तो ये तीनों जगी किस्म है एकदम उन्नत किस्म है जकी फसल का मायने रोग और कीट नियंत्रित है, यानी लागने की संभावना बहुत कम है। तो अपना किसान भाई अगर बुआई करना चाहो तो हम कोई भी किस्म की लेक्स उन्नत किस्म का बीज जगह ले सके और बुआई कर सके। खेत की तैयारी की बात करी तो तैयारी देखो आपने जब भयंकर गर्मी है बार पट रिबी टेम करी जावे, मिट्टी ने जो को पलटन आरो हल है एक बार गहरी जुताई करा दिया। एक बाद में जगह कल्टीवेटर है या कोई देसी हल है जिसे दोबर जुताई करा के और पाटो लगा दिया चौकी तरिया से, ताकि माटी है जगी भूरभुरी हो जाए समतल हो जाओ। बीग बाद में अपा बीज की बुआई कर सका, तो बीज की बुआई की बात करूं तो प्रति हेक्टर का मायने 15 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़े, उसके हिसाब से बुआई।
1: दूरी की आप मोहन भाई बात करा तो है की आप 45 से 50 सेंटीमीटर की बीज का मायने अपने दूरी है बारह की 15 सेंटीमीटर की दूरी अपन जरूर रखनी है। बिग बाद में को बिजाई पहला अपन बीज को उपचार है वो जरूर करना है। आप बार बार में भी बताता रहा कि भी बीज को आप उपचार कर लेवा तो बहुत से रोगा से उपचारित होता ही जिको आप नियंत्रण है वो कर लेवा। बीज की उपचार करने के लिए 2 ग्राम थिरम और 2 ग्राम कार्बेंडेजियम दोनों में से कोई एक, 2 ग्राम थिरम या 2 ग्राम कार्बेंडेजियम प्रति किलो के हिसाब से ने उपचारित है वो करना है। दोनों में से कोई एक दवाई है बीज उपचारित है वो करना है। अब की खाद और उर्वरक की पूर्ति किया करना बी के लिए अपन बुआई के समय खेत के में अपन 10 से 12 टन गलेड़ी सलेड़ी गोबर की खाद है वह आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी छिड़क की और गहरी जुताई वो आप कर ही चुका। बिकॉज सिंचाई और खरपतवार की जब आप बात करा देखो सिंचित क्षेत्र तो आज को नहीं आपा तो बरानी क्षेत्र पर आप ज्यादातर है जी का निर्भर रहे हुआ। तो खरपतवार हटाने के लिए आपने रसायन को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। कशियो ले लो, कशियो लेने से एक तो आपने खेत का मायने बरानी क्षेत्र है बिरखा होवे तो होवे नहीं कोनी भी होवे, एक बार बिरखा होड़ी है बार नमी ने जिको कई दिन तक कशिये से जिकी निराई गुड़ाई करेड़ी है बा कई दिन तक नमी है बा बरकरार रखेगी। तो अपने चूल्हे की फसल खड़ी है बा प्यास को करे तो वो अपन विशेष रूप से ध्यान रखना है। और इसके अलावा अपा लगभग है जिके खरीफ के मायने है जिकी उत्पादन है वो लेवे ही लाग रहे हैं। और अब मोहन भाई खरीफ की अपा बात ही कर ली तो अब अपा चालता चालता एक बार फिर अपने ताड़वा ने ले चला गीत संगीत की और सुनावा एक बार फिर मीठी सी लोक रचना।
0: बिल्कुल सुनाओ।

0: किसान भाई आपने एक मीठी सी लोक कथा सुनी। देखो मन भाई आप बातचीत तो आपने टाड़वा ऐसा और भी करना चाह रहा था, बखत आपने आगे जाने की इजाजत है बा नहीं दे रहे तो आज को कार्यक्रम बस अठाई तक। अयुब खान गोड़
1: और मोहन भाई ने
0: सीख दो करा आपसे।
1: राम राम, राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

श्रोताओं, आपके रेडियो सेट पर आप सुनेंगे साहिर लुधियानवी के शब्दों को रवि के संगीत निर्देशन में। इस गीत के लिए आवाज दी है महेंद्र कपूर ने। आप सुन रहे हैं हमराज फिल्म का नगमा।

एफएम चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आई श्रोताओं सुनते हैं निखिल विनय का संगीत और गुलशन कुमार, माफ कीजिएगा, निखिल विनय के शब्दों के साथ योगेश का।

एफएम चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। श्रोता अभी सुन रहे थे भरत व्यास के शब्दों को एसएन त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में। आवाज थी मुकेश की।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: ब्रेक से पहले श्रोता सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म दोस्ती में। संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत मजरू सुल्तानपुरी के। आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोडवाल को। इस गीत के लिए संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द रचना

यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले समाचार संध्या। न्यूज 8:09 का प्रसारण होगा रात्रि 9:00। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल्स में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे

0: अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: Cecil and India both seek a world where development is more inclusive. We both seek a world where international institutions reflect contemporary realities. We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively and fairly.
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे।

0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, 1 पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
2: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इलेडी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान

सीमा मिश्रा की आवाज़ के साथ ही आज का राजस्थानी लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं।

0: अपने रेडियो सेट पर श्रोता सुन रहे हैं सुखविंदर सिंह, अलका याग्निक और आनंद बख्शी की आवाजें।
1: ओए रत्ता जोगी

श्रोता भी सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज फिल्म नागमणि में। आइए सुनते हैं अलका याग्निक को फिल्म कुदरत का कानून में। श्रोताओं, इस गीत के लिए शब्द हैं समीर के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोता इस वक्त एफएम चूरू से सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगली आवाज आपकी रेडियो सेट पर कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की। मिस्टर इंडिया के इस गीत के लिए दिए हैं शब्द जावेद अख्तर ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। FM 110.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। श्रोता सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: अखिल भारतीय संगीत सभा में प्रस्तुत है पंडित सुधीर पांडे का एकल तबला वादन। पंडित सुधीर पांडे का नाम देश के अग्रिम पंक्ति के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में लिया जाता है। आपने तबले की शिक्षा अपने पिता सहगुरु स्वर्गीय पंडित अर्जुन पांडे और दादा गुरु पंडित भागवत सिंह जी से बनारस, दिल्ली और अजराड़ा घरानों में प्राप्त की। तीनों घरानों का खूबसूरत गुलदस्ता सजाकर एक नई शैली गुरु द्वारा प्रदान की गई, जिसे लडंत का बाज नाम दिया गया। आप इस शैली के प्रमुख प्रतिनिधि वादक हैं। दाएं बाएं की सघन भूमिका, बोलों की शुद्धता, रचनाओं में लय का सुंदर विन्यास, प्रयोग धर्मिता और विरासत में मिले पुराने दुर्लभ बोलों की पांडित्यपूर्ण प्रस्तुति आपके वादन में सहज रूप से मिलती है।
1: This is Akashwani. In tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we bring you a tabla recital by Pandit Sudhir Pandey. Pandit Sudhir Pandey is recognized as one of India's foremost tabla virtuoso. He received his rigorous training from his revered father and guru, late Pandit Arjun Pandey, and his dada guru, Pandit Bhagwat Singh. Inheriting the rich traditions of the Banaras, Delhi and Ajrada gharanas. Drawing upon the finest elements of these three illustrious traditions, his gurus evolved a unique style of tabla playing known as Ladant Ka Baj, of which Panditji is among the leading exponents today. His artistry is characterized by the balanced and powerful use of both hands, crystal clear articulation of bowls, intricate rhythmic architecture, innovative presentation, and the scholarly rendering of rare traditional compositions preserved through the sacred Guru Shishya Parampara. Through his performances at prestigious festivals and concerts, he has earned immense admiration from musicians, connoisseurs and music lovers alike.
0: आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे हैं घनश्याम सिसोदिया। पंडित सुधीर पांडे अपने कार्यक्रम का आरंभ तीन ताल से कर रहे हैं।
1: In tonight's program, he is accompanied on sarangi by Ghanshyam Sisodia. He is presenting tabla recital in taal, teen taal.

धातुन्न कतेट्टे धादिन्त कान्दटिदा कान्दटिदा कान्दटिदा धातुन्न कतेट्टे धादिन्त कान्दटिदा कान्दटिदा कान्दटिदा धातुन्न कतेट्टे धादिन्त कान्दटिदा कान्दटिदा कान्दटिदा धातुन्न कतेट्टे धादिन्त कान्दटिदा कान्दटिदा कान्दटिदा।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सुधीर पांडे का तबला वादन। अभी आप सुन रहे थे ताल तीन ताल। आपके साथ सारंगी पर संगत कर रहे थे घनश्याम सिसोदिया। और इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: यू जस्ट हर्ड ताल तीन ताल प्लेड ऑन तबला बाय सुधीर पांडे। ही वॉज अकम्पनीड ऑन सारंगी बाय घनश्याम सिसोदिया। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। This program was earlier recorded in the studios of Akashwani Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: आकाशवाणी।
1: यह आकाशवाणी है। आज रात की रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा मृदंगम पर लय विन्यासम।
2: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's Ravivasariya Akila Bharatiya Sangeeta Sabha, we present Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanaraman.
1: Paramparik Sangeet Parivar mein janme, Sri N.S. Kalyanaraman, Andhra Pradesh ke suprasiddh Mridanga Vadak hai. Unhone balyavastha se hi Mridanga Vadan par gahri ruchi dikhai aur apna prarambhik prasikshan Sri M.K.R. Prasad se prapt kiya. Baad mein, unhone vikhyat Mridanga Vidwan श्री दंडमुड़ी राममोहन राव और श्री के वीरभद्र राव से उच्च प्रशिक्षण पाया।
2: श्री एनएस कल्याण रामन इज अ रेनाउंड मृदंगम आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश बिलोंगिंग टू अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल फैमिली। ही शोड कीन इंटरेस्ट इन मृदंगम फ्रॉम अ वेरी यंग एज एंड रिसीव्ड हिज इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्री M.K.R. प्रसाद। ही लेटर अंडरवेंट एडवांस्ड ट्रेनिंग अंडर द रेनाउंड गुरुस श्री दंडमुड़ी राममोहन राव एंड श्री के वीरभद्र राव।
1: श्री एनएस कल्याण रामन ने डॉक्टर एम बालमुरली कृष्णा, श्री टीवी शंकर नारायण, श्री टीएन शेषगोपालन, हैदराबाद ब्रदर्स और हैदराबाद सिस्टर्स जैसे अनेक प्रख्यात संगीतज्ञों के साथ संगत किया। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित मंच जैसे मद्रास म्यूजिक एकेडमी में कई प्रदर्शन दिया।
2: श्री एन एस कल्याण रामन हैज एकम्पनीड सेवरल एमिनेंट म्यूजिशियंस इंक्लूडिंग डॉक्टर एम बालमुरली कृष्णा, श्री टीवी शंकर नारायण, Sri T.N. Seshagopalan, Hyderabad Sisters and Hyderabad Brothers. He has performed in prestigious sabhas across the country including Madras Music Academy.
1: Sri N.S. Kalyanaraman Akashwani ke top grade kalakar raha. Aapne Chennai aur Vijayawada Akashwani kendra mein 36 varsh ki visisht seva pradan kiya. Aapne Akashwani aur Doordarshan ke kai rashtriya sangeet karyakram mein bhag liya. आप कंची कामकोटी पीठम का आस्थान विद्वान रहा और आपको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित उगादि पुरस्कार भी प्राप्त हुई।
2: He is a top grade artist of Akashwani and has also participated in national programs of music and Doordarshan programs. He rendered 36 years of distinguished service to Akashwani at Chennai and Vijayawada. He was honored as Asthana Vidwan of Kanchi Kamakoti Peetam and also received the prestigious Ugadi Puraskar from the government of Andhra Pradesh.
3: आज के कार्यक्रम में श्री एम एस कल्याण रामन मृदंगम पर अपने लय विन्यास का प्रारंभ मिश्र जाति झंपे ताल के साथ कर रहा है।
2: Tonight, Sri N.S. Kalyanaraman begins his Laya Vinyasam on Mridangam with Mishra Jati Jampetalam.

0: NS कल्याणरामन अपना मृदंगम लाइव विन्यासम का समापन संकीर्ण चापु ताल से कर रहा है।
1: श्री NS कल्याणरामन कंक्लूड्स हिज लाइव विन्यासम ऑन मृदंगम विद संकीर्ण चापु तालम।

0: आप रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा में श्री एनएस कल्याण रामन द्वारा प्रस्तुत मृदंगम पर लाइव विन्यासम सुना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी विजयवाड़ा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था और आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है। अगले कार्यक्रम के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: You have been listening to Laya Vinyasam on Mridangam by Sri N.S. Kalyanuraman in the Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha. This program was recorded in the studios of Akashvani Vijayawada, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.

श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी चुरू के कार्यक्रम।

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगी रात्रि 11:05 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मीनी के साथ

0: प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
1: मेरी सेशन की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।